0: तो ये हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल कंट्रोलर है। ये जरूरी है स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, मसल्स के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, हमारे अच्छे मूड के लिए। तो विटामिन डी का कोई विकल्प नहीं है। अगर विटामिन डी कम हो जाए हमारी बॉडी में तो बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर दे डायरेक्टली, वही थकान होना जो मैंने हमने शुरुआत में बात करी,
1: जी
0: कमर दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी को सीढ़ी चढ़ने में कमजोरी हो रही है, या मूड अप डाउन हो रहा है, लो हो रहा है, या बार बार बीमार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी कम है उसकी। लोग इन साइंस को इग्नोर कर देते हैं। दर्द हो रहा है तो कोई कॉम्बी फ्लेम खा ली या कुछ इधर उधर दाएं बाएं हो गए और सोचा कि ठीक हो जाएगा। बॉडी हमेशा सिग्नल्स देती है। हम हमेशा बात यही करते हैं, बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल्स देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस हम उसको पिकअप नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप हमारा रेडियो नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपना रेडियो बंद कर दीजिए, वैसे अगर अपनी बॉडी की आपकी बात नहीं सुननी है तो उसके सिग्नल्स को इग्नोर कर दीजिए। दोनों एक सी बातें हैं,
1: लेकिन प्रसारण होता रहता है
0: लेकिन प्रसारण होता
1: जी
0: रहेगा। तो इंडिया में इतनी डेफिशिएंसी क्यों है? अब सवाल आता है कि भाई इंडिया में इतनी डेफिशिएंसी क्यों है? सिंपल रीजन है इसका, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। हमें अब धूप में बहुत गर्मी लगती है। पहले भी होती थी, सेम धूप थी, लेकिन अब आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आप सुबह उठते ही मोबाइल पे लग जाते हैं, फिर सुबह होते ही नहाए धोए सीधे ऑफिस चले गए। पहले लोग पानी चढ़ाते थे सूर्य भगवान को, एसी रूम में बैठे हैं, बाहर निकलना ही नहीं है, है ना? कार में भी मतलब अब चलना तो है ही नहीं, वॉक कार में ही जा रहे हैं, फिर वापस इंडोर लाइफ, सब अंदर ही अंदर हो रहा है सारा काम। तो यानी बॉडी को सनलाइट मिल ही नहीं रही है। और आज की जनरेशन क्या है, धूप कम देख रही है और क्या देख रही है, आता स्क्रीन, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है अननेसेसरली। सनलाइट का सही सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं, डॉक्टर साहब हम विंडो के पास बैठते हैं, लेकिन दोस्तों ग्लास के पीछे बैठने से विटामिन डी नहीं बनेगा। विंडो से आती सनलाइट हमारा मूड तो अच्छा कर देती है, ब्राइट कर देती है, सन खिड़की खुली हुई है ऑफिस की तो बाहर से सनलाइट आ रही है तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको उससे विटामिन डी नहीं मिल रहा है। विटामिन डी के लिए जरूरी है डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, आपकी डायरेक्ट त्वचा पे, आपकी स्किन पे सनलाइट पड़े,
2: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी आपने बिल्कुल सही कहा, तभी धूप का फायदा मिलेगा।
0: तभी विटामिन डी बनेगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक या शाम की हल्की सी धूप, मतलब हल्की हल्की धूप, मैं आपसे ये नहीं कह रहा 12 से आप 3 के बीच में जो जबरदस्त धूप है उसमें आप धूप में घूमिए, लेकिन जो सुबह वाली धूप है जो 8-9 बजे तक की होती है, 10 बजे तक की होती है, शाम की जो 4-5 बजे के बाद वाली होती है, वो उस धूप को लीजिए। वो आपको इतनी हार्म भी नहीं करती है, चुभती भी नहीं है। कम से कम बस ज्यादा नहीं 15-20 मिनट बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ज्यादा धूप लग रही है तो धूप पीट करके बैठ जाइए, कुछ उसमें कुछ अपना खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, यार कुछ भी कर लीजिए, मतलब और अपना कुछ मोबाइल पे बात कर लीजिए, कुछ जरूरी काम है वो निपटा लीजिए, लेकिन धूप में बैठिए।
2: डॉक्टर साहब ये तो पुरुषों के लिए बात थी, अब आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: महिलाओं में विटामिन डी डिफिशियंसी और भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक तो यही रीजंस है कि इंडोर रहना, और दूसरा क्या होता है कि घर के ज्यादातर काम कर रही हैं उसमें हो रहा है, डाइट इम्बेलेंस हो रही है, और फिर जैसे जब हमारी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज आ जाता है, उसके बाद भी थोड़े विटामिन डी डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है कंपेटिवली, और फिर शुरू होती है प्रॉब्लम्स। क्या? बोन वीकनेस, हड्डी में कमजोरियां, है ना, ज्वाइंट्स में पेन होना, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। लोग जब भी मैं किसी से कुछ इस तरीके की बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं यार पहले के लोग ना, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई भी बीमारी नहीं होती थी, अब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है या हम चेंज हो गए। भैया ये दुनिया हजारों करोड़ों साल पुरानी है, 100-150 साल में कुछ भी नहीं बदलता जल्दी। आपका लाइफस्टाइल से बदला है,
1: जी।
0: प्रकृति वैसे ही है, धूप वैसे ही आ रही है, वैसे ही बारिश हो रही है, वैसे ही सारे मौसम है, 100-150 साल में कोई प्रकृति नहीं बदली, आप बदल गए हैं बिल्कुल, आपका लाइफस्टाइल भी तो बदल गया है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी नहीं बदली है, 100-150 साल में कोई इवोल्यूशन नहीं हो जाता, बहुत टाइम लगता है होने में। आप बिल्कुल इंडोर आ गए हैं आउटडोर से, तो इसको बदलना है आपको। वीक बोन्स उम्र का नहीं सिर्फ, आपके निग्लेक्शन का रीजन है। बच्चों में भी डिफिशियंसी तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो आउटडोर गेम्स कम खेल रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनको मिल रहा है पूरा, है ना, और जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूंगा, ट्यूशन जरूरी है, ऑफकोर्स बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भी जाएंगे, ट्यूशन भी जाएंगे, लेकिन सनशाइन भी बहुत जरूरी है। सनशाइन वो करेंगे तो एक उनके अंदर अलग सी चमक रहेगी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है हमेशा से, कि आप डाइट में क्या लीजिए। दूध लीजिए, पनीर लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, अंडे खाते हैं तो वो लीजिए, फिश खाते हैं तो वो लीजिए, है ना। ये सब चीज लेंगे तो आपकी, अगर वैसे नहीं मिल पा रहा है कैल्शियम और आपको बाकी चीजें, तो इस तरीके से मिलेंगी जो कि बोन को आपकी स्ट्रांग रखेंगी। और साथ में एक्सरसाइज करनी करनी है, क्योंकि स्ट्रांग बोन सिर्फ खाने से नहीं, मूवमेंट से ही बनती है।
2: जी डॉक्टर साहब।

0: सनलाइट फ्री है, सबसे बड़ी बात फ्री है ना भैया, कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे ना, है ना, हर के घर में आ रही है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है,
1: कोई बिल नहीं आएगा
0: और कोई बिल भी नहीं आ रहा उसका, है ना। अगर आप घर में सोलर पैनल लगा लोगे तो और वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी भी दे देगी, है ना, सनलाइट तो फ्री है हर एक के लिए, तो डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है, है ना। आपको डेफिशिएंसी बहुत महंगी भी पड़ती है, याद रखिए, फिर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे।
2: विटामिन डी की कमी के कारण जो लक्षण होते हैं वो हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
0: आपको थकान रह रही है, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, लो एनर्जी लगता है आपको, अपनी बॉडी रहती है, तो विटामिन डी टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। और विटामिन डी कम आए तो सप्लीमेंट्स ये नहीं कि केमिस्ट से खरीद के शुरू कर दिए, डॉक्टर को दिखाइए। देखिए मैं आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए कम से कम ही कहता हूँ, आप मेरे कितने भी आपने सुना होगा, तो मैं ये नहीं कहता कि हर चीज में डॉक्टर को दिखा ली, लेकिन देखिए कोई दवाई लेना है तो उसको ऐसे नहीं कि बस केमिस्ट के पास गए और बोला भैया ये मेरी रिपोर्ट आई है और मेरे को दवाई दे दो, वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको देखो किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए और उसके बाद आप शुरू करिए। पहले तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो ही ना आपको, मेरा तो यही मानना है ना, आप धूप लीजिए जो फ्री में मिल रही है, लेकिन अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी आ रही है किसी टेस्ट में तो फिर आप डॉक्टर को दिखा के ही सप्लीमेंट लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए मतलब दवाई शुरू करिए उसकी, तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये विटामिन डी हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और उसको अब ज्यादा भी लेने से हमें नुकसान हो सकता है, तो डॉक्टर बताएंगे किस तरीके से लेना है। मैं आपको ये जरूर अभी मैं आपको एक लाइन बता सकता हूँ किस तरीके से लेना है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप उस तरीके से लेना शुरू कर देंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको जाना ही चाहिए, है ना, क्योंकि आपका उससे बुरा हो सकता है, ज्यादा अमाउंट ले लेंगे तो विटामिन डी एक्सेस में हो जाएगा, वो भी हार्म करेगा आपको।
2: डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने आप से मेडिकल पर दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, ये नुकसान दे सकती है, डॉक्टर की सलाह से दवाई खाना चाहिए, है ना डॉक्टर साहब।
0: ठीक है, तो दोस्तों आज की मॉडर्न लाइफ में हम टेक्नोलॉजी के करीब आ गए हैं, चूंकि अच्छी बात है, लेकिन नेचर से दूर क्यों जा रहे हैं हम, बात ये। आप टेक्नोलॉजी को रखिए साथ में, लेकिन नेचर को भी पास रखिए, अपने
1: प्रकृति के पास रहना चाहिए।
0: हाँ, नेचर के पास, प्रकृति के पास रहिए। कभी कभी हेल्दी रहने के लिए महंगी चीजों की नहीं, बस थोड़ी सी धूप की जरूरत होती है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जीवन में धूप की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: 15 मिनट 20 मिनट धूप से बचते बचते, हैट लगाते लगाते या एसी कमरों में बैठते बैठते हम हेल्थ से दूर हो गए। बॉडी को सप्लीमेंट से नहीं, सनलाइट चाहिए। देखिए मैं एक चीज एक बहुत और मानता हूं, अभी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं ना, और बहुत और भी जैसे बहुत सारी रिसर्च हो रही है दुनिया में। अब डॉक्टर्स को पता लग गया सनलाइट की वजह से विटामिन डी बॉडी में बनता है जब स्किन पे डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी ना जो सनलाइट हमें देती होगी और हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाए होंगे अभी
1: जी।
0: और भी कोई विटामिन होते होंगे जो अभी हम नहीं जानते हैं। सनलाइट का तो तोड़ ही नहीं है, सनलाइट तो आपको नेचुरल फॉर्म में जो मिल रही है वो अच्छी है। अब हमें पता लग गया कि विटामिन डी कम होता है तो हम विटामिन डी अब सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर गोली लेते हो तो आपको सनलाइट नहीं लेनी है। सनलाइट का तोड़ नहीं है, सनलाइट तो आपको लेनी लेनी है 15-20 मिनट दिन में,
1: वो तो सार्वभौम हो जाए बिल्कुल।
0: हाँ, लेनी चाहिए। तो मेरा बस आप लोगों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, या कोई इल्तिजा समझ लीजिए किसी भी तरीके से, कि आज के बाद धूप को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जहां धूप की कमी है, आपके देश में धूप बहुत है, आपका देश धूप वाला देश है, उस 15-20 मिनट अपने अपनी बॉडी को जरूर दीजिए जो कि धूप में रहे।
2: डॉक्टर साहब ने बताया कि धूप की बहुत बड़ी महिमा है, मन की खिड़की के साथ साथ घर की खिड़की भी खुली रखिए।
0: कुछ श्रोता जो अभी अभी जुड़े होंगे हमारे साथ, उनके लिए मैं संक्षेप में हम जो बात करी वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विंडो वाली सनलाइट मूड ब्राइट करती है, लेकिन उससे विटामिन डी नहीं बनता। विटामिन डी तभी बनेगा जब डायरेक्ट सनलाइट हमारी स्किन पे, त्वचा पे पड़ेगी। कितनी सनलाइट जरूरी है हमारे लिए? कम, बस 15-20 मिनट सनलाइट, वो भी आपको बिल्कुल कड़कती धूप में नहीं लेनी है। आप मॉर्निंग वाली सनलाइट ले लीजिए जो कि 8-9 बजे 10 बजे तक जो होती है, या इवनिंग वाली ले लीजिए 4 बजे के आसपास की है। डाइट में हमको क्या लेना है?
2: जी डॉक्टर साहब, डाइट में क्या लेना है,
0: क्या इंक्लूड करना है? दूध को, दही को, छाछ को, पनीर को, अंडे ले सकते हैं अगर अंडे खाते हैं तो, अगर फिश खाते हैं तो फिश इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डाइट इज ओनली, डाइट से अकेले कुछ नहीं होगा। फिर स्ट्रांग बोन सिर्फ कैल्शियम से नहीं, लाइफस्टाइल से बनती हैं, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टेंटली हमेशा फटीग रह रहा है, मतलब कमजोरी सी रह रही है, बॉडी में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो आपको विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्स खुद से स्टार्ट नहीं करने हैं, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करने हैं। दोस्तों हेल्दी लाइफ के लिए कभी कभी बस थोड़ी धूप ही काफी होती है। आपने देखा होगा कभी आप धूप में रहते हैं या कभी घूमने जाते हैं तो आपको धूप में रहते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, मतलब ज्यादा देर के लिए हैंगे, अगर 1 घंटे के लिए तब तो आप परेशान हो जाओगे।

0: मतलब आपका सोच के जाओगे यहाँ मुझे सुबह की धूप है या रात शाम की धूप है, और आप रहोगे 15-20 मिनट तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका अच्छा लगता है ना, खिड़की खिड़की खुली हुई हो उसमें हल्की हल्की धूप आ रही हो छनके, तो अच्छा लगता है ना, आपका मूड मूड इन्हेंसर है बहुत अच्छा। सनलाइट फ्री है, सूरज की किरणें फ्री हैं, सबके लिए फ्री हैं, है ना। डेफिशिएंसी महंगी पड़ती है क्योंकि आपको दवाई खानी पड़ेगी। धूप से दोस्ती कीजिए, हेल्थ आपकी बेटर होगी। मॉडर्न लाइफ कंफर्टेबल हो गई है, हेल्दी नहीं। कंफर्ट जरूरी नहीं है कि हेल्दी हो, है ना। मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, आप सबको हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ की शुभकामनाएं देता हूं। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।
1: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने गूगल और डॉक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। सजग रहें। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए रविंद्र कुमार मिश्र को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुलाब के फूल की तरह। श्रोताओं, चलते चलते एक शेर याद आता है, निकलो अपने घर से तो निकलो दुनिया में, कुछ कर दिखाओ तो निकलो दुनिया में।

जान है तो जहान है। अभी आपने सुना ये फोकस नेत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को

काल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी, दिल धड़कने दो। जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा।

जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई, उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में रेडियो श्रोता शिवपाल गौड़ को।
1: तो नमस्कार मित्रों, मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं रेडियो सुनता आया हूँ, और दोस्तों रेडियो में जो गाने बजते हैं वो मधुर गाने और वो आवाज, आज भी उसमें दम है, उसमें जादू है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप ऐसे सुनते रहिए और ऐसे आनंद लेते रहिए, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों संगीत सुनने से मन मधुर हो जाता है, तन मधुर हो जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं आपकी पसंद। रफू चक्कर, इस फिल्म में आप सुनेंगे कंचन और शैलेंद्र सिंह के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं गुलशन बावरा और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार ढिंगिया।

नाद रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मैं जबी निसार अंसारी, बेटी नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। आपने शार्दुल सैल राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री यादव। गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। गांव लोहडडा जिला बागपत से आप हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ा राजस्थान से आप हैं अनूप सिंह नाथावत। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करबला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। आप हैं हमारे पुराने श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से आप हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। तो आइए सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म का ये गीत।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
4: कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म चलते चलते से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, गीतकार हैं अमित खन्ना और संगीतकार हैं बप्पी लहरी, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ये फरमाइश हमें भेजी है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा ने। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नेति कुमारी। ज्योतिनगर नुख राजस्थान से पुखराट बटकुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहे पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू ढब्बू। राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सैमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। जिला बदायूं कस्बा उगहती उत्तर प्रदेश से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी, सादिक सिद्दीकी। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शिव प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। दनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। ये कमेंट हमें भेजा है राजकमल रेडियो श्रोता संघ। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद उमान, रणवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे पुराने श्रोता मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी।

थी लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली, जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से आप है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषु वर्मा, रमेशन वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, गोडसरा नैला छत्तीसगढ़ से आप है प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वन्ना कुमार।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: धरती, इस फिल्म में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। मौला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से आप है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। आप है हमारे पुराने श्रोता टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इंद्रा कॉटेज तलिताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। मेरठ कैंट से बाबूदीन। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। रामपुर बिलासपुर से मोहित सागर, मोहन स्वरूप, दीपक कुमार, कपिल, रोहित, विजय। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन। पंचकुला चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। शनि बाजार कस्बा उगहती से प्रभाकर गुप्ता, अवदेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायर गुप्ता। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। ये कमेंट में भेजा है शेरवानी स्कूल गंजडुन द्वारा। उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। यूपी कन्नौज से हैं रमन राज कुशवाहा, गांव नवलपुरवा के रहने वाले हैं ये। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा,

अल कुर्सी रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र ऋषि और राहुल। शुक्लपुरा बनारस से परवेज अहमद।

थाने के सामने अलगन शहजहांपुर से डॉक्टर अरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव। गांव खोर खड़ा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास बारसा, रोशनी बारसा और शगुन बारसा। तो सुनते हैं धरती फिल्म का ये गीत।

रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लूबना और यश मंसूरी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घट्टे, संगीता घट्टे, साक्षी घट्टे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुल, पीबी कुलथे। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हसनिका, हंसिका जोशी, कुमारी अकिता जोशी। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राय नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत की फरमाइश आई है गाड़ी खाना चायबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति की। कटराचात का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराण शहर बरेली से अनोखे लाल वर्मा, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। शनि मार्केट सेवरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफत अदीब और कादिर चौधरी।

शिकारी। इस फिल्म में आप सुनेंगे कुमार सानू के स्वर में ये गीत। गीतकार है समीर, संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। भोपालगढ़ राजस्थान से धमेन चिप्पा, कपिल चिप्पा, ईशान चिप्पा, पूजा परिहार। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिला गंज आलोट।

हिना। इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी।

राजपुर मध्य प्रदेश से आप हैं घिशु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरीम सोनाली, भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत नेहा जैन दीपक मयंक मूनत चेतन नाहटा। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज पिंकी वंश व भूपेश कुमार कंबोज। वटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब हसन। ग्राम

कुर्राबांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाश। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। आप हैं हमारे पुराने श्रोता रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। चंडीगढ़ से सतीश हरेजा, विमला अनेजा। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानेले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी। आप हैं राकेश कुमार सप्लियाल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो सुनते हैं फिल्म हिना का ये गीत।

मुगले आजम। इस फिल्म में आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीतकार हैं नौशाद। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। ग्राम पंचायत भटेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा। गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण अनीता और राहुल भाविस्टे। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। इसी गीत को सुनना चाह है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द एवं समस्त मालवीय परिवार ने। बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजनी अंजलि, रोशनी सारवा। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार। ग्राम ढकिया केसरपुर पोस्ट करीनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आप हैं ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास राजपूत, मदन लाल राजपूत, संतोषी खुशी, रवनीत वर्मा, रवि वर्मा, प्रिया और छोटी सी गुड़िया, चंचल कुमारी और सभी मित्रगण। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुन्नी शर्मा, राहुल शर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नवीन निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, मैंडी शर्मा। इसी गीत की फरमाइश भेजिए सतलर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना। मोदाला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल कनी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म दामिनी से, आवाजें हैं अलका याग्निक कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी।

ग्राम दिगास, तहसील पूना, महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात, रंजीत थोरात। गांव बांडी वाली फजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कुणाल मेहरा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आप हैं गुरमीत सिंह मीता। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। गांव जाखोत से शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक। आप हैं हरजिंदर छिंदा जी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ग्राम लोहे डी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गुहर, सुनील पाठक। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे,

सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं सुखविंदर सिंह चौड़ा। जिला भिंड मध्य प्रदेश से अनामदर्शी विश्वामित्र राजकुमारी सिद्धार्थ कुमार एंजेल, ये सब थे बुद्ध रेडियो लिसनर क्लब जिला भिंड मध्य प्रदेश से। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवलकर, निर्मला नवलकर, विशाल नवलकर, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। तो आइए सुनते हैं फिल्म दामिनी का ये गीत।

आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं सब रंग। सब रंग में पहली प्रस्तुति है फागुनी पाठक के स्वर में ये गीत।

अब आप सुनेंगे कैसर आजाद बदायूं के स्वर में ये कव्वाली, कैसर आजाद बदायूनी और उनके साथियों के स्वर में।

सब रंग की अंतिम प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी और साथियों के स्वर में ये कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे सब रंग, यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं लोक रंग में कुछ लोग।

क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं

आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत, आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण

निर्माण का संकल्प है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में

किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान

इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं, जो पहले

0: पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा, जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं एफएम रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी नव नियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। हाल ही में की गई 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं जो भारत के युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगे। लखनऊ में आयोजित इस रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। अमरोहा में भी जनगणना के प्रथम चरण के तहत घर घर जाकर मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ ने लोगों से अपील की है कि जनगणना कर्मियों का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा है कि जनगणना आंकड़ों का उपयोग देशवासियों के लिए बनने वाली कल्याणकारी नीतियां बनाने में किया जाएगा। यूपीएसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा में कर्मचारी चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 50 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल, राउटर और अभ्यर्थियों की सूची बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी एसएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ और एसएसएफ कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया है जो इस गिरोह के जरिए नकल करने की तैयारी में थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की फीस वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने शुल्क वापसी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के बैंक खाते की जानकारी दर्ज कराने के लिए नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर एक समर्पित सुविधा उपलब्ध कराई है। उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पंजीकरण पोर्टल पर लॉग इन कर जानकारी भर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

12:04 हो गए हैं और इस समय आज आपके साथ आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई है और आज सेगमेंट है फैमिली फन का। और ये फैमिली फन ना आपके साथ मुझे भी एक अलग तरीके का फन कराता है। और जब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में, एक अलग तरीके की जो डोर होती है ना वो जुड़ जाती है। ऐसा लगता है हम अपनी फैमिली के साथ जैसा करना चाहते हैं और जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मतलब दिलों के तार आपके हमारे आपस में जुड़े हुए ऐसे लगते हैं। नमस्कार है आपको।

0: गरम चिलचिलाती हुई दोपहरी है, लेकिन दिल दिमाग में अगर ठंडक हो तो भयंकर भयंकर गर्मी से भी छुटकारा पाया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। और ये खूबसूरत सा गाना मैं सोच रही हूँ आपके लिए प्ले कर दें। और ये गाना प्ले करने के साथ साथ आगाज होता है आज सेगमेंट फैमिली फन का। उसके बाद मैं वापस आती हूँ और बात करने वाली हूँ ठंडी ठंडी जगहों के बारे में। नहीं, ठंडी जगह नहीं, ठंडी बातें होंगी हमारी, जिससे आराम मिलेगा आपको भी हमको भी। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। अभी आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ।
1: जब मांगते हैं परसों दुआ, तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

12:11 हो गए हैं और फैमिली फन की बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए. फैमिली की बन, मुझे बन याद आ रहा है. कभी भी कुछ भी याद आ जाता है और ऐसा होते रहता है कभी कभी ना, खासकर गर्मियों में जब दिमाग एकदम गर्म हो जाए ना, तो तब ऐसी चीज़ें होते रहती हैं. तो दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत है ही. तो कहते हैं कि परिवार के साथ बिताया हर समय सिर्फ यादें नहीं बनाता है बल्कि रिश्तों को और गहरा भी बनाता है. और जब बात हो गर्मियों की छुट्टियों की, तो ठंडी वादियों, पहाड़ की हवाओं, परिवार के साथ बिताए खूबसूरत पलों से बेहतर और क्या हो सकता है. और जब पहाड़ों की वादियों की बात करते हैं, कितने रिच हैं हम लोग भाई, क्या क्या मतलब क्या है, क्या हो गया. अगर हमारे नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है तो क्या हो गया, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो ठंडी है, क्या हो गया इधर तराई क्षेत्रों में बहुत गर्मी हो रही है. हमारे पास एकदम बर्फ वाले पहाड़ी क्षेत्र भी तो हैं. भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने ही लोगों के साथ खुलकर जीना भूल सा जाते हैं, है ना. ऐसे में एक फैमिली ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं होती है बल्कि एक दूसरे को समझने की, करीब आने की और दिलों को मजबूत, जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनको मजबूत बनाने की एक एक खूबसूरत प्रोसेस बन जाती है. और आज के इस खास फैमिली फन प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उन बेहतरीन ठंडी खूबसूरत जगहों की सैर पर, जहाँ आप इस गर्मी अपने परिवार के साथ सुकून, मस्ती और यादगार भरे पल बना बिता सकते हैं. तैयार होइए. लेकिन साथ में आपको ये भी बोलूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ट्रिप पे चल दिया जाए, प्लानिंग भी की जा सकती है और अगर प्लान नहीं बना है तो बन भी सकती है. जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो कुछ अच्छा हो ही जाता है.

बिल्कुल। और ये गाना सुनने के बाद क्या खूबसूरत वाइब आई ना, मतलब एकदम दिल करता है कि यही गाना सुनते जाएं। और कितना कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी वाइब है इस गाने की, और जितनी बार सुनती हूँ उतना ही मज़ा आता जाता है। और ये जो वाइब है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस वाइब को बरकरार रखने के लिए हम आज वैसे बात भी तो कर रहे हैं, कुछ ठंडी ठंडी सी, कितनी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे हैं हम ना। और फैमिली फन का मतलब पता है क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, अप्स एंड डाउन, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते सुनते, बहुत सारी चीज़ें आते जाते रहती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव जो चढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, उसके बावजूद एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। अच्छा क्या होता है, अक्सर हमने देखा है बाहर के कोई लोग हमारे सर्कल में अगर लगता है कि टॉक्सिक हैं, अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, तो पता है क्या होता है, हम उनको साइड कर देते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते, हम सोचते हैं हमारे टाइप है ही नहीं। लेकिन अगर फैमिली में कोई ऐसा लगता है कि कितना टॉक्सिक है यार ये, उसके बावजूद हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके मूड के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और आज आपके इस बॉन्ड को मजबूत करने के लिए ठंडी हवाओं, खूबसूरत नज़ारों और प्यार भरे सफ़र का सिलसिला लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं बाय चांस, तो मैं आपको कुछ अपने देश के अंदर बेहतरीन खूबसूरत और ठंडी ठंडी जगहों को आपको बताने आई हूँ। जागेश्वर है उत्तराखंड में, जागेश्वर उत्तराखंड अल्मोड़ा में है, आप आसानी से यहाँ पहुँच भी सकते हैं। और ये खूबसूरत जो जगह है ना, देवताओं की घाटी भी कहते हैं इसको। और अल्मोड़ा ज़िले में गंगा नदी घाटी के किनारे और एक बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह है, और बहुत पुरानी है ये। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, सप्तऋषि, इन लोगों ने यहाँ तपस्या की थी, और शैव धर्म का एक प्रमुख केंद्र है यहाँ। और आपको पता है कि यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और बहुत अच्छी स्थापत्य कला को देख पाएंगे, उसे छुएंगे, देखेंगे और देखते रह जाएंगे। खूबसूरत घने ऊंचे देवदार के पेड़ आप देखेंगे, देखते ही आपकी आंखों में एकदम चमक आ जाएगी। और बहुत ही आसान सी आपको बात बताऊं, यहाँ जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो

गोदाम है, वहां तक आप जा सकते हैं ट्रेन से। फिर वहां से टैक्सी या बस से हल्द्वानी और अल्मोड़ा होते हुए आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं बाय रोड। और इसके अलावा अल्मोड़ा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे ये खूबसूरत सी जगह है, और ये खूबसूरत सी जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आप तक एक और खूबसूरत गाना भेजा जाए। जब आप पहाड़ों की सड़कों पर यह गाना सुनते हुए जाएंगे तो आप कैसा फील कर पाएंगे?

सुन साहिबा सुन, ये तो आप अपने साहब को कह सकते हैं कि सुनिए जरा, चलें क्या ट्रिप की तरफ को, और प्लान बनाएं क्या बाहर निकलने का, और ये जो खूबसूरत वादियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या चला जाए क्या इस तरफ? और सोचते सोचते बात करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि भाई जागेश्वर अगर आप जाएंगे, मैं फिर से आपको बताऊँ, जागेश्वर इतनी खूबसूरत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ जाने का, ठंडी प्लस सुकून भरी और प्लस मतलब इतनी शांत, इतनी शांत, आपको लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए क्या। और आपको पता है बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन टाइप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ भी नहीं रहती वहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊं, एक और मंदिर है, बैजनाथ मंदिर, कुमाऊं क्षेत्र की गोमती के किनारे, मतलब बागेश्वर में बसा हुआ बैजनाथ मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी का है, मतलब बहुत ही पुराना शिव मंदिर का एक समूह है। यहाँ भी जागेश्वर की तरह ही लगभग आपको शांत, ठंडा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर माहौल मिलेगा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं, बहती नदी और पत्थरों से बने पुराण मंदिर इसकी खूबसूरती को खास बनाते हैं। यहां भी मेरे जाने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूं, अगर आप यहां जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकती हूं कि आप आकर कहेंगे कि भाई वाकई में पैसा वसूल, सारी गर्मी की ठंडक तो दिमाग में, मतलब गर्मी की जगह जो लखनऊ में आप गर्मी सह रहे हैं, अपने शहरों में गर्मी सह रहे हैं, वहां जाकर सारी ठंडक वापस आ जाएगी। खैर इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि गोमती का खास शांत किनारा है, प्राचीन कत्यूरी जो एक शैली है उसकी वास्तुकला है, पत्थरों में डिजाइन बना हुआ है, सूर्योदय है, बहुत ही अच्छा सनराइज होता है और शाम को बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। आसपास चाय के बागान हैं, पहाड़ी गांव हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आपका फिर से वही नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, वहां से टैक्सी से लगभग 150 से 180 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं दोस्तों, और टैक्सी आराम से पहुंच सकती है। और बाय चांस अगर आप बहुत दूर हैं एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है और वहां से फिर से आप टैक्सी से यहां तक पहुंच सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि क्या हर्ज है प्लान करने में, और अगर बाय चांस इस बार आपका जाने का प्लान नहीं बन पा रहा है घूमने का, तो पैसे बचाइए भाई, रुपया बचाइए, सेविंग कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बाहर निकलिए। और मैं बताऊँ आपको, सिर्फ रुपया ही नहीं बचाइए, आज जो ये मैं बात आपसे कर रही हूँ, इस बात का जो गहन चिंतन मनन है अपने बच्चों के साथ बैठ के करिए, यहाँ जाया जाए, एक ही जीवन है, कब जाएंगे हम घूमने। और फैमिली फन का तो मतलब यही है कि बच्चे भी मिलके सेविंग करें, पति भी मिलके सेविंग करें, पत्नी भी करें, और सभी लोग सेविंग करें, और सेविंग के साथ साथ जो हो ना वो जीवन सुधर जाए। इतनी खूबसूरत जगह जाने का मतलब मिले अगर सेविंग से, तो क्या क्या मतलब, बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर मैं तो आपको पॉजिटिव वाइब देते रहूंगी, मोटिवेट करते रहूंगी, और अच्छी अच्छी बात बोलते रहूंगी कि आप यहाँ जाने का सोचें। मैं प्रमोट नहीं कर रही आपको, गर्मियों के मौसम में फैमिली फन ठंडक भरे अंदाज में करने का एक आइडिया दे रही हूँ। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, सेगमेंट फैमिली फन चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ।

भाई ऐसे ही अगर आप पहाड़ी सड़कों पर चलते जाएंगे और वो जो खूबसूरत वाइब होगी पहाड़ों की, और इतनी खूबसूरत वाइब में आप अगर सोचिए इसी गाने को, मतलब इलाही को एंजॉय करते हुए चलिए, तो कैसा कैसा महसूस करेंगे, कितना मज़ा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से इमेजिन करके मैं कुछ अलग सा फील कर पा रही हूँ। और बात हम जागेश्वर की कर रहे थे, बात हम इस तरफ आए थे बैजनाथ टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे, और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा दूर आपको जाने की और सोचने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला जो लोकेशन है हमारा जिसके बारे में हमें बात करनी है, सोचना है, वो है कटारमल सन टेम्पल, इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये भी अल्मोड़ा में ही है, भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में गिना जाता है। अच्छा ये है कि यहाँ पे धूप थोड़ी मिलेगी आपको, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको मिलेगी, आपको छूकर निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यही जिंदगी है। और यही जिंदगी है, और ऐसा महसूस करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों के बीच में बसा, लेकिन थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैकिंग है, और परिवार के साथ ट्रैकिंग करने का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी आफत तो आ सकती है, जो परिवार में थोड़ा कमजोर प्राणी होता है ना, उसका बोझा भी उठाना पड़ता है, लेकिन यही फन है, उस समय पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, महसूस तो होता है कम से कम। अच्छा ऐसे एक ही घर में पड़े पड़े रहे, बैठे रहे, कई दिनों से कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बाहर भी नहीं गए, मतलब कई दिन नहीं कई महीने कई साल हो गए, तो मुझे लगता है ना उस समय बड़ी बड़ी

बड़ी दिमाग में ये चीजें हो जाती हैं। बच्चों को तो खासकर लगने लगता है कि मम्मी पापा ही मेरे असली दुश्मन हैं और मेरे भाई बहन ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन अगर ऐसे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा ट्रैक कर लिया जाए तो उसमें उसकी आंखों में इमोशंस के आंसू भर आते हैं और वो सोचता है कि नहीं नहीं यही तो मेरे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी मेरा बोझा उठा लेता। खैर, ये जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा में है, पहाड़ों के बीच बसा है, बहुत ठंडा सुकून देने वाला है। और यहाँ की जो खूबसूरती है, देवदार और चीड़ के जंगल, दूर दूर तक हिमालय की चोटियों का दृश्य, सूर्योदय का जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पाएंगे यहाँ, आप यहाँ बहुत बेहतरीन फोटोज ले सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए बहुत शानदार जगह है। अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर आपको यहाँ जाना पड़ेगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और टैक्सीज यहाँ तक पहुँचती हैं। सड़क मार्ग बहुत सुंदर और पहाड़ी दृश्यों से भरा हुआ है दोस्तों। घूम घूम कर सड़क जाएगी और आपको दूर से कोसी घाटी दिखाई देगी। समझ रहे हैं आप, मैं तो सोच रही हूँ कि मतलब कब दोबारा मौका मिले, यहाँ भी मैं जाकर आ गई हूँ। खैर, आपके लिए खूबसूरत सा गाना चलाना पड़ेगा मुझे। अब मैं सोच रही हूँ कि एक बेहतरीन सा गाना चलाया जाए, क्योंकि लोकेशन ऐसी है ना, वहाँ जाकर आप मना नहीं कर पाएंगे और कहते रहेंगे और बार बार हर किसी से कहते रहेंगे कि मेरी फ़ोटो खींच दो, प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दो, कब आना होगा यहाँ वापस। ऐसी जगह कहीं होती है क्या?

बिल्कुल, और इसी तरीके से आपको ना खींच मेरी फोटो कहना ही पड़ेगा अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पे जाएंगे तो। 12:42 हो गए हैं और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। हम कर रहे हैं फन सेगमेंट फैमिली फन के साथ, और बात करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम आपको बताएं कि अगर आपको उत्तराखंड की तरफ जाने का दिल नहीं है तो आप हिमाचल की तरफ जा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना, तो क्या हुआ अगर हम यहाँ गर्मी में हैं। छुट्टियाँ हैं अपने पास तो ठंडी जगह भी तो हैं अपने पास। ऐसे ही थोड़ी हम जो है धरती पुत्र हैं, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है। खैर, मजाक की बात दूसरी तरफ है, मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं तो बहुत सीरियसली कह रही हूँ। हिमाचल की तरफ अगर जाए ना आप, तो आपको मिलेगा टैबो मोनेस्ट्री। हाँ, इसको टैबो मोनेस्ट्री भी कहते हैं, और स्पीति वैली में ये टैबो मठ भी कहते हैं, जिसको टैबो मठ भी कह सकते हो आप। हिमालय का अजंता कहा जाता है इसको। लगभग 1000 साल पुराना बौद्ध मठ है। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी ठंडा और बहुत शांत रहता है। और यहाँ की खासियत यह है कि मिट्टी से बने बहुत प्राचीन प्राचीन मठ आपको मिलेंगे, बौद्ध भित्ति चित्र मिलेंगे बड़े बड़े से, और मेडिटेशन के लिए बड़ी बड़ी लोकेशंस आपको मिलेंगी। मेडिटेशन के लिए आपको जगह जगह वैरायटी वैरायटी मिलती रहेगी। और इसके साथ आपको पता है, सूखी खूबसूरत पहाड़ियाँ, नीला आसमान, रात में तारों से भरा हुआ एकदम साफ सुथरा आकाश, ऐसा जैसे आपने ड्राइंग बुक में नीला आसमान बनाया हो और उसमें खुद अपने हाथों से तारे जड़े हों। ऐसा ही है बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शिमला या मनाली से रोड से पहुँचना है, और सबसे आसान रास्ता पता क्या है, शिमला किन्नौर स्पीति होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचा जा सकता है आसानी से। और जो नज़दीकी एयरपोर्ट है, भुंतर है, कुल्लू है, लेकिन वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क जो मार्ग है वही बहुत ही अच्छा है यहाँ के लिए। ट्यून इन करके रखिए मेरे साथ, मैं आपको गाने भी सुनाऊंगी और साथ में सैर तो करा ही रही हूँ मैं। और मैंने आपसे कहा है कि जाना इसी बार है जरूरी नहीं, डिस्कशन तो किया जा सकता है, प्लानिंग तो की जा सकती है।

देखिए, एकदम से वक्त और जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगता है ना। एकदम से गाना चला गया, मैं तो उसके एकदम ही अलग ही खुमारी में खोई हुई थी। और जो गाना गया उसका कहने का मतलब ये था कि मालिक जल्दी चलो, समय हो रहा है, और भी तो जगह जाना है। मैंने आपसे कहा था कि अगर उत्तराखंड, और देखिए मैं आपको बताऊं, अल्मोड़ा तो नियरेस्ट है, यहाँ से बहुत पास है, मतलब बहुत दूर नहीं, आपको कई दिन नहीं लगेंगे। आज रात में आप निकलेंगे, कल दोपहर तक आप अल्मोड़ा, जागेश्वर या कटारमल पहुंच जाएंगे। खैर, लेकिन हिमाचल पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा तो चलना पड़ेगा। हिमाचल चलने के लिए आपको मूड, दिमाग, एनर्जी सब कुछ चाहिए, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है भाई, बाय रोड आप आराम से जा सकते हैं। देखिए, फन करने के वैसे तो कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप घूमने ही जाएं, जरूरी नहीं है कि आप लंबी ट्रिप ही बनाएं, लेकिन आपस में मिलके, हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है इस बार जाना, अगर तो आपस में मिलके बैठ के डिस्कस करना, प्लान करना, या फिर उस ट्रैक के वीडियोस को देखना, उस लोकेशन के बारे में जानना, आपस में मिलजुल के प्लानिंग बनाना, ये भी फन है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ख्वाब बुनते हैं या किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशंस बनाते हैं, करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है ना। आप कभी नहीं सोचते कि कुछ बुरा हो मेरे साथ, जब हम इमेजिन करते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि आह मेरे पास तो इतना अच्छा कुछ होगा, या वहां जाऊंगी, यहां जाऊंगी। तो समझ रहे हैं आप, वो जो इमेजिनेशन है आपकी वो जरूर सफल होगी, किसी ना किसी रूप में आप तक वहां पहुंचते ही हैं, आप वहां तक पहुंचते ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि एक दूसरी आपको मठ या मोनेस्ट्री के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कुंगरी मोनेस्ट्री है, और ये पिन वैली के बीच कुंगरी मठ, नेचर और एक अलग ही, जिसको कहेंगे आध्यात्म हो, पीस हो, खूबसूरती हो, सबका एक संगम है ये। और यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं, और ठंडक वित्तो है यहाँ पर। शांति चाहने वाले, सुकून चाहने वाले लोगों के लिए, नज़ारा देखने वाले, पहाड़ देखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेडिटेशन करना है आपको, ठंडी ताज़ी हवा, कोई नेल करना है, उफ़ मुझे तो यही सब पसंद है, तो मैं आपके लिए वो चुन करके लाई हूँ। अगर आपको चाहिए ऐसा कि जाए एकदम मन, मस्तिष्क और क्या, और सबको ठंडक मिल जाए, तो तब तो आपको यहाँ पहुँचना है। कैसे आपको पहुँचना है मैं आपको बताऊँ, काजा से लगभग 45 किलोमीटर तक आप यहाँ तक है, और आप आराम से टैक्सी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोकल जो टैक्सीज हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, लोकल टैक्सीज बहुत सारी हैं यहाँ पर।

एक जगह और है मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ, वो जगह है कांगड़ा फोर्ट। भारत के सबसे पुराने और सबसे विशाल किलों में है वह कांगड़ा फोर्ट, और यहाँ इतिहास, पहाड़, हरियाली, शानदार मेलजोल आपको सबका देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती, बाण गंगा नदी का जो व्यू है, उफ क्या खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे खास बात पता है यहाँ का क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और विशाल किला है, सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और उसके साथ ही जो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए तो स्वर्ग जैसी जगह है। कैसे पहुंचना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, धर्मशाला से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और पठानकोट रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी है। आप ट्रेन से जाइए और उसके बाद धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ऐसी खूबसूरत बातों के बारे में, लोकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं ना, तो फिर कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग जोन हो जाता है भाई हमारा। तो चलिए खूबसूरत सा गाना सुना जाए, इंजॉय किया जाए। आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त चंद्रकला के साथ।

12:56 हो गए हैं और ये खूबसूरत सा गाना जो है ना हम सुन रहे थे आप साथ में, और ये खूबसूरत गाना सुनते सुनते हम कर रहे थे इमेजिन और एक खूबसूरत जगह, ठंडी जगह, शांत जगह पहुंचने की कल्पना। भाई प्लान तो कभी भी बन सकता है, और अगर प्लान और बजट दोनों ही नहीं बन रहे तो डिस्कशन तो किया जा सकता है। जानना तो चाहिए कि इस धरती पे जहां पे इस समय हम हैं तप रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश में कितनी खूबसूरत जगह है, ठंडी ठंडी जगह। एक और मोनेस्ट्री है, ये जो खूबसूरत मोनेस्ट्री है पेमांगस्टे मोनेस्ट्री, पेलिंग के पास सिक्किम में है आपको बता दूं, और सबसे फेमस बौद्ध मठों में से एक है। बादलों के बीच हिमालय का खूबसूरत सा व्यू, ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत बातें, कंचनजंघा पर्वत का शानदार दृश्य है यहाँ पर, बादलों से ढकी घाटियां हैं और खूबसूरत चैंटिंग्स, ठंडी हवा। यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट जो है बागडोगरा है, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, और वहाँ से पेलिंग तक टैक्सी आराम से आपको मिल जाती है। भाई अगर आपका घूमने का प्लान बन रहा है तो मैं आपसे कहूँगी ऑल द बेस्ट, और अगर नहीं बन रहा है तो मैंने आपसे कहा है ना अगली बार के लिए बनाइए, और अगर वो भी नहीं बन रहा है तो डिस्कशन तो कीजिए, जानिए तो सही। शुक्रिया, और यहीं पर आज प्रोग्राम फैमिली फन का सेगमेंट यहीं वाइंड अप करने का समय है। अगला जो प्रोग्राम है होंठों पे तेरी बात, उसके लिए मैं ही हूँ आपके साथ, और ट्यूनिंग करके रखिए, तुरंत न्यूज़ ब्रेक के उस पार मिलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं अनुरोध गीत। अनुरोध गीत में पहला गीत है

फिल्म आईना से आवाजें हैं लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आप हैं राम कुमार रेवाड़। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेना जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। ये खत हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानीपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चडोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गा राम साहू, मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अबचाल भाई, बाबू फौजी, पीएसी नकटिया से ताराचंद बबली, मेहरनगर उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवाणकर, राही सरता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, सुखी विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, परी।

0: बाजीगर।
1: इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और विनोद राठौर के युगल सरों में ये गीत। शब्द रचना है गौर कानपुरी की और धुन बनाई है अनु मलिक ने। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बिलारी से रजा अहमद, इसरत जहां, जमाल कमाल और आयत जहां। आंवला मोहल्ला बजरिया, अंसारी चौक से मोहम्मद हसनैन अंसारी, अदनान अंसारी, अजहान अंसारी, अब्दुल हामिद अंसारी, सद्दाम हुसैन अंसारी, जाहिद हुसैन अंसारी, शावेक अंसारी। साथ में हैं इनके मोहम्मद तारिक अंसारी। गड़ैया बरेली से ये खत हमें भेजा है कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवे शमसी, रजिया शमसी बेबी। ये फरमाइश हमें भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री। आप हैं फूलबाग किला छावनी बरेली से बिशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और साथ में हैं आपके प्रदीप पाल नमन और श्री राम राठौर।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म में आप सुनेंगे कुमार सानू के स्वर में ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम शेवड़। सुनना चाहा है आप सबने

सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से आप हैं पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार।

भलपुरी। गांव चौहलदा बागपत से आप हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। सिमंदर पार्क विरमगांव गुजरात से अजीत प्रमिला, भावेश सन्नी भावसार, हेतल कृष्णा, जयमीन भावसार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। दुर्गाई सेलू से ये खाता में भेजा है चंदू कुलकर्णी, हेमलता परमणि से सी आर कुलकर्णी ने।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत देवेंद्र रावत के साथ। दिल का क्या कसूर, इस फिल्म में आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में गीत। गीतकार हैं अनवर सागर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। बिलराम गेट कासगंज से आप हैं एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। भटेणा से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। तो सुनते हैं दिल का क्या कसूर का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म इतिहास से, आवाजें हैं अनुराधा पटवाल और के पप्पू की, गीतकार है समीर और संगीतकार है दिलीप सेन, समीर सेन, और सुनने की फरमाइशें हैं आप सबकी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा और रविंद्र सिंह छाबड़ा। आप हैं खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। पाकीजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसीर अंसारी, समा अंसारी, आमिर भाई अंसारी। वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, कासिम अंसारी, असलम अकरम, इर्तिका कौसर, आयरा कौसर, मोहम्मद दानियाल अंसारी।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म मोहरा का। आवाजें हैं साधना सरगम और पंकज उदास की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं विजू शाह, और सुनने के लिए ये खत हमें भेजे हैं आप सबने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, अलीगंज रोड ग्राम महेलिया से असमत खां, हशमत खां, अजमत खां और डालमिया, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से, रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश कनिष्का ने। मोहल्ला किशोर बाजार बिहारीपुर सिविल लाइन बरेली से आप है कुंदनलाल सागर, ब्रजेश कुमार सागर, विपिन कुमार सागर, कल्पना सागर, पूजा सागर, बेटी नैना सागर, समस्त सागर परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

इश्क विश्क इस फिल्म में आप सुनेंगे अलीशा चनाया और कुमार सानू के युगल स्वरों में ये गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई अनु मलिक ने और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। बहेड़ी से आप हैं अंजुम भाई, खालदा बेगम, काकाशाह, दानिश आदिल और शफक। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। परी महल कासगंज से आबाद खान, अल्ताफ नबील, असलम सैफी, शमसुल कमर, असमान अंसारी। बरेली कैंट पश्चिम केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव। दौलत

पुलिस और मुजरिम। इस फिल्म में आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के युगल स्वरों में गीत। गीतकार हैं दिलीप ताहिर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी। और सुनने की फरमाइश है आप सबकी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। महाराष्ट्र चिंगोली से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश।

राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, आदर्श नगर भटिंडा से आप हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर।

बॉर्डर, इस फिल्म में आप सुनेंगे रूप कुमार राठौर के स्वर में ये गीत। सुनने की फरमाइश आप सबकी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इरफान, आमिर, इकबाल अफजाल, साजिदा बी, समाया, सहरीन, सबनूर, फैजल, अमान और मम्मी पापा। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश शुभबंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्य भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। नाज रेडियो क्लब करेली बरेली से निसार अहमद अंसारी, मैजबी निसार, बेटी नुजत फातमा, अबरार अहमद, इकबाल, इसरार, तस्लीम रजा।

इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए और आगे कार्यक्रम में आपके साथ होंगी शिप्रा मिश्रा।

तो श्रोताओं, बॉर्डर फिल्म के इसी गीत के साथ अब हम लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम रस रंग, कार्यक्रम रस रंग जो कि सफर है कव्वाली गजलों का।

0: मैं आपके जगह श्रोताओं हम लेकर अब उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम जनमंच, जिसमें आज के प्रतिभागी हैं स्पर्श पटेल और अर्जुन सैनी।
1: मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव और कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, ये कार्यक्रम जो जनमंच है, ये आप सभी श्रोताओं में से ही, आप सभी जो आम जनता है उनमें से ही किसी के लिए एक मंच है। आप में से कुछ लोगों को हम बुलाते हैं।

0: स्टूडियो में और एक विषय पे हम लोग परिचर्चा करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो विषय है बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय है जिंदगी एक रंगमंच। जी हाँ, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं, पात्र हैं। अपने भूमिकाएं हम लोग यहाँ व्यक्त करते हैं, जीते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ है ये रंगमंच, जिंदगी और रंगमंच का तालमेल कैसा है, इसको कैसे हम और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, कैसे जिंदगी के तमाम रंगों को हम कैनवास पे उकेर सकते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। एक थिएटर से जुड़े हैं और एक स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स वो भी बेहद खास है, योग। जी हाँ, योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये किसी से छुपा नहीं है। और जो रंगमंच है थिएटर, वो कितना रंगीन है, जिंदगी के तमाम रंग किस कदर उसमें उकेरे जाते हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो रंगमंच से हमारे साथ हैं स्पर्श पटेल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और योग प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ हैं अर्जुन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
1: धन्यवाद सर।
0: तो पहले तो जैसा कि रंगमंच से आप जुड़े हैं स्पर्श, आप कुछ बताइए, जिंदगी एक रंगमंच है कैसे?
1: नमस्कार सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर लाइन है कि जिंदगी एक रंगमंच है, और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि रंगमंच में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, हर किरदारों के अलग अलग काम होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे ही जिंदगी में भी हम सबके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं। तो रंगमंच और जिंदगी एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं।
0: बहुत जुड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी में आपने कैसे फील किया इसको?
1: मेरे जिंदगी में सर, जैसे मैं थिएटर करता हूँ, तो थिएटर में मैं एज अ स्पर्श कई सारे किरदार निभाता हूँ, कई सारे पात्र करता हूँ। ऐसे ही जीवन में मैं स्पर्श एज अ बेटा भी हूँ, एज अ स्टूडेंट भी हूँ, एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैं भाई भी हूँ।
0: भाई
1: तो
0: भी
1: ये
0: हैं।
1: मैं एक इंसान होने के साथ साथ कई सारे व्यक्तित्व, कई सारे किरदार निभा रहा हूँ।
0: कैसे निभा लेते हैं,
1: निभ जाते सर, यही जीवन है
0: निभ जाते
1: जी।
0: हैं। उनके लिए कोशिश कुछ करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एक बेटे के रूप में जो आपके दायित्व हैं वो निभाने के लिए दूसरे बेटों को देखते हैं। जैसे आप कोई थिएटर पे कोई एक नाटक करना होता है, जैसे मान लीजिए बावर्ची का है, मान लीजिए तो दूसरे किसी बावर्ची से आप मिलते होंगे, वो कैसे एक्ट करते हैं, वैसे आप एक एनालिसिस करते होंगे। तो क्या बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप दूसरों को देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि सर आपने कहा कि अगर मैं बावर्ची का किरदार करता हूँ, तो क्योंकि मैं बावर्ची नहीं हूँ, तो उसको सच्चाई से निभाने के लिए मैं एक असली बावर्ची से समझूंगा कि वो किस
0: हाँ,
1: तरह से करता
0: किस
1: है।
0: तरह से करता है।
1: ऐसे मैंने सर अपने जीवन में बेटे होने की चीज़ें हैं बहुत सारी, अपने पिता से भी सीखी हैं, अपने बड़े भाई से भी सीखी हैं, तो वो धीरे धीरे सीख सीख के और करते करते वो चीज़ें आ जाती हैं
0: क्या सीखी है?
1: सर। जैसे कि बेटे होने का सबसे बड़ा दायित्व मुझे लगता है वो है पिता के प्रति सम्मान, और उनके किए हुए चीज़ों को, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पिता मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो करते ही ना रहे, वो उन चीज़ों को शुरुआत कर दी उन्होंने, वो ठीक है, उसके बाद उनको मैं आगे ले जाऊँ, उनको बढ़ाऊँ। इस घर में जैसी जिम्मेदारी उनकी है, एक घर के चलाने वाले की, वो जिम्मेदारी मैं भी निभाऊँ, तो बस यही सारी चीज़ें हैं सर
0: बिल्कुल, ये अपने आसपास से ही आदमी सीखता
1: जी।
0: है ना। अर्जुन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो जिंदगी एक रंगमंच है, इस पे आपका क्या कहना है, क्या सोच है, क्या अनुभव है आपका?
1: हाँ सर, मेरा अनुभव यही रहेगा कि जैसे स्पर्श जी ने बताया था कि आज का जो समय है वो इसमें एक व्यक्ति बहुत से किरदार निभा रहा है। प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने हमें इस दुनिया भेजा है, तो वो एक नाटक के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे, क्योंकि हमें वहाँ ये चीज़ निभानी पड़ती है कि एक बेटे का किरदार कैसे निभाना है, एक हस्बैंड का कैसे निभाना है, एक भाई से कैसे निभाना है। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। और आज का यूथ और ये जो चल रहा है, ये देख समय चल रहा है उसके रिगार्डिंग।
0: और आप तो सिखाते भी हैं,
1: जी,
0: मतलब जैसा कि आपका तो प्रोफेशन ही है स्पर्श, कि हाँ रंगमंच है, आपको एक थिएटर करना है, एक्ट करना है,

0: और आपके पास अर्जुन जी ये है कि जो बेटे के रूप में या भाई के रूप में जो रोल आपको मिला है, उसके अलावा एक अहम रोल मिला है गुरु का।
1: जी
0: आप सिखाते हैं,
1: जी
0: योग
1: सर,
0: सिखाते हैं, तो इस रोल को कैसे अदा करते हैं आप?
1: मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं अपने जीवन से। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप अपने मुकाम तक ना पहुंचे हैं। तो हर व्यक्ति का एक मुकाम होता है, तो मैं अपनी शुरुआत अपने आप से करता हूँ, फिर मैं ये चीज़ अपने परिवार में करता हूँ। ऐसे मैं मैरिड,
0: काम क्या है
1: मुकाम एक ही है,
0: आपने?
1: अच्छा
0: हाँ,
1: इंसान बनना।
0: अच्छा इंसान
1: जी,
0: बनना। तो अब सवाल आएगा, अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते?
1: अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा करना, समाज को लेके चलना, परिवार को भी देखना, इन चीज़ों को लेके सबसे तालमेल बैठाना,
0: तालमेल
1: कि जो
0: बैठाना।
1: रंगमंच है उसमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको ऐसे बेटे का किरदार कैसे निभाना है, पति का
0: इस
1: कैसे निभाना है,
0: जी,
1: एक फादर का कैसे निभाना है।
0: तो आप कैसे निभाते हैं?
1: मैं अपनी दिनचर्या को ऐसे शुरुआत करता हूँ कि एक बेटे के रूप में कि मम्मी पापा की हेल्प करना, वाइफ की हेल्प करना, अपनी बेटी को लेके चलना, ऐसे योगा खुद करना, योगा बच्चों को भी कराना, घर में परिवार में कराना, और जो क्लासेस स्कूल में उनको लेके ये सारी
0: इसमें
1: चीज़ें करे
0: इसमें ये
1: जाना।
0: जो रोल अदा कर रहा है, इसमें योग कैसे भूमिका निभाता है, कितना
1: योग
0: अहम है?
1: ये हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत जरूरी है, ये
0: पहले तो
1: स्वस्थ
0: योग है
1: शरीर।
0: क्या यही बताइए। बहुत सारे लोगों को लगता है योग है बस वो अनुलोम विलोम, है ना?
1: जी,
0: योग के बारे में एक बार फिर बता दीजिए।
1: योग व्यक्ति को एक स्वस्थ रखने का तरीका है।
0: स्वस्थ रखने का
1: जी,
0: तरीका है
1: आज
0: तो।
1: के टाइम में जो व्यक्ति है बहुत सी चीज़ों से घिरता चला जा रहा है, ओबेसिटी है हमारी, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो पनप रही शरीर के अंदर, उल्टा उल्टा खा रहे हैं, सही डाइट नहीं रख रहे हैं, खान पीन उनका बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। तो मैं तो यही सभी श्रोताओं से यही बोलूँगा कि अपने खाने पीने को बहुत अच्छे से विशेष ध्यान दें, योग करें और स्वस्थ रहें,
0: योग करें और स्वस्थ
1: स्वस्थ
0: रहें। अब योग, वही हम कह रहे हैं कि योग आखिर कैसे किया है, क्या कि क्या जिंदगी को मैनेज करना भी एक योग है?
1: जी। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हमारे पास आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं कि अपने खुद के लिए कि आधे घंटे एक घंटे हम योगा कर सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें।
0: अपने आप को स्वस्थ रखने का
1: हाँ
0: खुद के लिए समय नहीं निकाल
1: जी
0: पाते।
1: जी
0: स्पर्श जी, आप क्या कहेंगे, खुद के लिए समय निकाल पाते हैं?
1: हाँ सर, मैं तो निकाल पाता हूँ और मैं मानता हूँ कि खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका सवाल बहुत सुंदर था सर कि क्या जीवन को मैनेज करना योग है। तो बिल्कुल है सर, इस भाग दौड़ भरे जीवन में जैसे भैया ने कहा कि अगर हम खुद के लिए समय निकाल पाए, हम परिवार के साथ समय बिता पाए, हम खुद को समझ पाए कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी क्या चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का योग है।
0: तो कैसे करते हैं आप मैनेज, कैसे अपने फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं, अच्छा समय?
1: जी सर, मेरे परिवार में एक रूल है कि हम अगर घर पे सारे लोग हैं तो हम शाम का जो खाना होता है वो एक साथ ही खाएंगे,
0: अच्छा।
1: चाहे हम लोग कहीं हों। वो अगर ऐसा होता है थिएटर में, मुझे कभी बहुत लेट हो जाता है तो बात अलग होती है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कि हम डिनर हमेशा साथ करते हैं। जब परिवार साथ बैठता है उसके बाद हम लोग साथ खाना खाते हैं, बात होती है। और एक बहुत सुंदर चीज़ मेरे पिताजी ने शुरू करी मेरे परिवार में, जैसे गर्मियों का समय सर होता है ना, तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद, मान लीजिए कि गर्मियों में तरबूज बहुत खाया जाता है, तो तरबूज काट लिया गया है, रख दिया गया है, और ऐसा नहीं किया कि आपको अलग बांटा है मुझे अलग, नहीं, एक
0: एक
1: जगह एक
0: थाली।
1: साथ काट के सब लोग इस थाली में खा रहे हैं, बातचीत हो
0: अच्छा।
1: रही है, कैसे दिनचर्या रहा, थिएटर में क्या रहा। तो इस तरह से सर मुझे तो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट और समय मिलता है जिसमें मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, और ये बहुत मेरे परिवार की तरफ से बहुत अच्छा है कि वो मेरी चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं। और इंसान को, जब इंसान अपने को समझा पाता है तो बहुत हल्का महसूस करता है, तो बस इस तरह से।
0: बिल्कुल, हम अपने आप को जब समझा पाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हम खुद को समझ पाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे अर्जुन जी, क्या हम खुद समझ पाए हैं?
1: नहीं, आज का टाइम ऐसा है कि इंसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है लेकिन दूसरों को समझा रहा है। मैं तो शुरुआत यही करता हूँ कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए इस वातावरण को लेके कि जो चल रहा है टाइम में, कि इंसान अपने आप को टाइम नहीं दे रहा है, समय निकाल नहीं पा रहा है, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है।

0: तो मैं चाहूंगा कि परिवार में, जैसे रंगमंच हमारा प्रोग्राम है ये, तो रंगमंच का एक ही उसमें एक पात्र होते हैं, एक पात्र हो के भी कई कलाकार होते हैं उसमें निभाए जाते हैं, कहीं भी कोई चीज भूल होती है, गलती होती है, तो ये नहीं चीज वहां से खत्म हो जाती है, वहीं से चीज स्टार्ट होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को देंगे टाइम तो आप घर परिवार समाज को दे पाएंगे।
1: इसमें एक बात आती है कि जिंदगी एक रंगमंच है, जैसा कि हमारा इस आज के प्रोग्राम का विषय है, और जिंदगी रंगमंच है। हमें एक न एक रोल मिला हुआ है। क्या हमें पता है कि हमें रोल मिला क्या है?
0: नहीं मैं
1: कभी
0: तो
1: हम
0: नहीं,
1: लोग, हाँ, कभी आपने सोचा है?
0: अभी
1: हम
0: तो
1: जिसे हम लोग अपने आप से सवाल करें कि हमें ये जिंदगी क्यों मिली है? ये अगर एक रंगमंच है तो हमारी भूमिका क्या है? क्या हम बेटे के रूप में ही हमारी भूमिका है, या फिर एक पति के रूप में ही भूमिका है? वास्तव में हमारी भूमिका क्या है आपकी नजर में, स्पर्श? हाँ, पहले आप बताइए
0: मैं
1: अर्जुन जी।
0: बताना चाहूंगा सर
1: जी।
0: कि हमें ईश्वर ने जब इस दुनिया पे भेजा है तो यही धर्म हमारा ये नहीं कहता कि आप अपने पिता का रोल अदा करिएगा या भाई का करिएगा। हमें एक समाज में, एक हम मनुष्य प्राणी हैं तो हमें एक समाज को भी लेके चलना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात आती है इंसानियत।
1: इंसान की।
0: अगर हम अपने घर तक ही सीमित हैं तो हम एक इंसान कहलाने लायक नहीं है। हमें अपने वातावरण में सभी को लेके चलना पड़ता है, सभी को देखना पड़ता है, तभी हम एक रोल अदा कर पाएंगे, ना कि हम एक घर का ही रोल अदा कर पाए। हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए, दूसरे के प्रति होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, ये चीज।
1: जी हाँ, स्पर्श, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: सर, एक थिएटर में बहुत सुंदर चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है सर कि जो परिस्थिति घट जाए या जो इन द मोमेंट चीज़ हो जाए उसको लेके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। तो सर, मुझे तो लगता है कि हमारा जो किरदार इस जीवन में है वो डिफाइन नहीं है,
1: डिफाइन नहीं है,
2: वो बदलता रहता है। हम
1: बिल्कुल।
2: बढ़ते रहते हैं, नई नई परतें आती रहती हैं, तो उस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। बस ये है कि रुकना नहीं है, चलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी किरदार हो, चाहे जीवन में कुछ भी ऊंचा नीचा जो भी हो।
1: अभी तक आपको जो किरदार अभी आप निभाते आए हैं रंगमंच पे, थिएटर में कई सारे आपने प्लेस किए होंगे, कौन से किरदार के सबसे निकट पाते हैं अपने आप को?
2: सर, एक किरदार था,
1: हाँ
2: एक कहानी है राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की,
1: हाँ हाँ
2: जसमा ओढ़न,
1: अच्छा
2: एक जाती है ओढ़न,
1: हाँ
2: उड़
1: हाँ
2: जाती है, उसकी कहानी है। उसमें एक उनका सलाहकार होता है राजा का,
1: अच्छा
2: जो कि एक यूनिक होता है, ट्रांसजेंडर।
1: अच्छा अच्छा
2: जी, ट्रांसजेंडर होता है। तो उसकी भूमिका थी, उसका नाम बारोट होता है। उसके भीतर ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं। उसकी जो भावना ये है कि वो दूसरों से, वो अपने अंदर जो है उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं करता,
1: अच्छा
2: बल्कि जो सामने देख लेता है, जो दूसरे में अच्छी चीज़ खूबी देख लेता है, बस उसको वैसा बनना चाहता है,
1: अच्छा अच्छा
2: वैसा होना चाहता है,
1: अपनी खूबी नहीं देखता है,
2: नहीं देखता।
1: अपनी अच्छाई नहीं दिखती,
2: नहीं
1: सामने वाले की दिखती,
2: जी,
1: अच्छाई दिखती।
2: अच्छा है।
1: ये
2: जी
1: तो बहुत अच्छी बात है उस करेक्टर की, है ना,
2: जी
1: क्योंकि आज के समय में हर कोई दूसरों की बुराई देखता है।
2: जी
1: अच्छा फिर आगे।
2: फिर सर, जब क्योंकि मैं इस सोशल मीडिया के सबसे हाईएस्ट दौर में बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि सोशली हम लोग ज़्यादातर वो करते हैं जो हम नहीं हैं, हम प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। तो मुझे उस करेक्टर की सबसे सुंदर बात ये लगी कि वो पॉजिटिव होने के बाद भी वो लोगों की अच्छाई या लोगों से सीख सीख के वो एक ऐसा बन गया कि वो खुद को भूल गया, वो खुद को नहीं रहा। तो जीवन में अच्छा सीखना, अच्छा मतलब बुरा सीखना जो भी है, बट उसने खुद की संवेदनाएं, खुद की सच्चाई उसको भुला दिया। तो वो करेक्टर सर मेरे साथ बहुत रहा, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मुझे भी एहसास हुआ कि हम खुद को नहीं जानते, हम समाज से या समाज हमसे क्या चाहता है हम वैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो वो करेक्टर सर मेरे बहुत करीब रहा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि खुद को जानना कितना जरूरी है, कितना अहम है।
1: खुद को जानना कितना जरूरी है, बहुत अहम है। आपके क्या विचार हैं अर्जुन जी, आपके जीवन में जैसे योग है, ये कितना आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है अभी भी?
0: मेरे ही जीवन में नहीं, ये मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति के अंदर प्रभाव डालना चाहिए, और मेरे अंदर तो डालता ही ये कि इससे दिनचर्या जो होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, कि अगर हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। आप योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे अपने जीवन में। ऐसे टीचर, जब मैं बच्चों के करीब आता हूँ तो बच्चे मेरे से बड़े खुश रहते हैं, वो इसी रिगार्डिंग खुश रहते हैं कि मैं उन्हें समझा पाता हूँ, उन्हें करा पाता हूँ अच्छे से, कि जिससे मेरा उनसे तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर मैं ना भी जाता हूँ तो हमेशा याद

0: करते हैं कि सर आप क्यों नहीं आए, कि सर आप छुट्टी ना किया करिएगा। हाँ
1: सही बात है। और कुछ ऐसे अगर आप योग बताना चाहें, कुछ ऐसे योग के मतलब आसन या फिर तरीके अगर आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को, जिसके जरिए वो अपनी दिनचर्या बेहतर कर सकें, जिंदगी और अच्छे से मैनेज कर सकें।
0: जैसे आपने बताया कि अच्छी दिनचर्या कर सके, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा

0: या कर सके, तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हर ये जो जिंदगी है वो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तो इंसान को मैं चाहता हूँ कि उसमें अपना थोड़ा सा टाइम निकाले मॉर्निंग का, और उसमें सबसे पहले अपने आप को कि अपने होने के नाते उसी पे आप वर्क करें और योग को अपनाएं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अपनी फैमिली के साथ रहें, बैठें, छत पे जाएं, सुबह मॉर्निंग में आसन की बात करें, पद्मासन है, चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, मयूरासन है। तो अगर ये आसन करते हैं तो यही नहीं, हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, डाइजेशन होता है वो भी अच्छा रहता है, किडनी लंग्स ये भी स्वस्थ रहेंगे। और यही कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में इंसान अपने आप से बहुत दूर जाता रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंसान जो जा रहा है वो सोशल मीडिया में घुस गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक आभासी दुनिया में हम लगातार जी रहे हैं, और जो एक्चुअल हमारी लाइफ है, हम अपने परिवार में भी, जैसा कि आपने बताया स्पर्श, कि डिनर टाइम पे आप लोग साथ बैठते हैं, और लेकिन कई सारे घरों में, परिवारों में ये आलम है कि डिनर टाइम पे साथ बैठे उन्हें कई दिन, कई महीने हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है, या कहें स्मार्टफोन, इसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है?
2: बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सच में बात तो यही है कि हम क्या है ये डिफाइन होता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, और यही सबसे जो बेसिक चीज़ है वो सोशल मीडिया ने छीन ली है। मैं क्या हूँ अब ये डिफाइन हो रहा है कि मुझसे सोशल मीडिया क्या चाहता है। तो इस वजह से हम जो अपनी भीतर की जो सच्चाई है, अपनी संवेदनाएं हैं, एम्पथी है, काइंडनेस है, इनको छोड़ के कुछ और होते जा रहे हैं, और कुछ और होना सर हमें हमेशा अपनों से दूर कर देता है। क्योंकि और मैं तो चाहता हूँ कि इंसान हमेशा अपनी अपने आप को सुने सर, जैसे हमने पहले बात की, बेसिक यही है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतनी छोटी उम्र में ये सीख मुझे मेरे गुरुओं ने या मेरे परिवार से मिली कि खुद को सुनना बहुत ज़रूरी है, खुद की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, उससे आप अपने और अपनों के करीब रहते हैं।
1: जी, और इसमें योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
2: बिल्कुल
1: है, खासतौर पे जो ध्यान मेडिटेशन है ना, तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं अर्जुन जी, मेडिटेशन के बारे में।
0: मेडिटेशन एक वह क्रिया है जिसमें आप बैठ के शांत मन से आप एकांत में कहीं बैठ के कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हमारी जो भी बेकार की चीजें होती हैं वो माइंड से स्किप हो जाती हैं और अच्छे विचार आते हैं उससे। हम कुछ भी नया कर सकते हैं, नई चीजें आती हैं हमारे माइंड में, और ये सीख हमारे घर परिवार, हमारे छोटे लोगों को जाती हैं, क्योंकि पहले के लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ थे। आज के टाइम वो आ गया कि उनका जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा बेकार होता जा रहा है, और टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, योग व्यायाम ये सारी चीज छूटती जा रही है।
1: छूटती जा रही है।
0: तो उन्हें ये चाहता हूँ कि अपने छोटों के साथ, बड़ों के साथ उन्हें बैठ के ये चीज करनी चाहिए, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो हमारे स्मार्टफोन सोशल मीडिया ये भी दूर रहेगी।
1: ये भी दूर रहेंगी,
0: जी
1: क्योंकि इनके जरिए पहले तो जो रेडिएशंस हैं वो
0: जी
1: नुकसान
0: जी
1: करते हैं, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं कम उम्र में ही उनको स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है, तो और उससे रेडिएशन जाते हैं, उससे तो नुकसान पहुंचता ही है।
0: जी जी
1: बाकी अब वो एक, कई सारे साइंटिफिक चीजें हैं, कई सारे कुछ हार्मोन, डोपामाइन रिलीज होता है, इससे उन्हें खुशी बहुत ज्यादा मिलती है, महसूस होता है, मिलती नहीं है, और फिर उन्हें कहा जाता है खेलो तो उन्हें बुरा लगता है, स्मार्टफोन छीन लिया जाए तो बुरा लगता है। और जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिंदगी एक रंगमंच है, इसके बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है, वो उन्हीं वर्चुअल फील्ड में घूमता रहता है उनका दिमाग। तो ऐसे में क्या स्मार्टफोन को बैन कर देना चाहिए, एक लिमिट कर देना चाहिए कि
0: जी जी सर
1: हाँ आप 6 बजे के बाद स्मार्टफोन नहीं यूज करना है, बताइए आप अर्जुन जी।
0: जी सर बिल्कुल आपने सही कहा
1: हाँ,
0: कि हर चीज की एक लिमिट होती
1: लिमिट
0: है,
1: होती है।
0: चाहे कोई भी हुआ, बच्चे हुए या बड़े हुए। आज का टाइम है कि फोन की कुछ चीजें ऐसी हैं हम उसके आदी बनते जा रहे हैं, हमें आदी नहीं बनना है, हमें जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। हमें जरूरत है कोई संदेश भेजना है या कोई वीडियो कॉलिंग भी हो रही है, जो चीज अच्छी है वो बुरी भी है, तो मैं चाहूंगा
1: लिमिट
0: होनी
1: कर
0: चाहिए,
1: दिया जाए।
0: चाहे
1: हाँ भाई
0: बच्चों के साथ हो या खुद
1: हाँ,
0: के साथ,
1: खुद के साथ
0: हमें खुद टाइम देना चाहिए, मैं ऐसे स्पोर्ट टीचर हूँ, योगा टीचर भी, तो मैं जानता हूँ कि मैं भी यही करता

0: रहा हूँ कि अपने भतीजों को, अपनी बच्ची को फोन को दूर रख के मैं उसे फील्ड में ले जाता हूँ, मॉर्निंग में, सुबह में, शाम को भी। उससे उनके साथ खुद खेलता हूँ, उन्हें खिलाता भी हूँ। ये कहता हूँ कि बच्चों दूर रहो फोन से। कहने को मैं सच्ची कड़वी सच्चाई बताऊं कि मेरी जो बच्ची है वो भी फोन की जिद करती है, तो उसे कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ चीजों को लेके, तो मैं उसे स्किप करा दे रहा बहुत सी
1: चिड़चिड़े
0: चीजों
1: हो
0: को।
1: जाते हैं
0: हाँ
1: बच्चे,
0: हाँ
1: कई बार ये देखा गया है कि चिड़चिड़े हो
0: जिद
1: जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: वो खाना खाते समय फोन चाहिए,
0: जी
1: या
0: जी
1: फोन नहीं तो टीवी चाहिए, तो
0: जी
1: ये तो वाकई।
0: हाँ
1: और क्या कुछ और करते
0: हाँ
1: हैं आप?
0: हाँ जी। जब मैं स्पोर्ट्स में गेम कराता हूँ बच्चों को, तो उनका मैंने देखा है, उन्हें मैं चीजें समझाता हूँ, उन्हें डाइट के बारे में बताता हूँ कि आप ये गलत चीजें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो फास्ट फूड को जब आप स्किप करेंगे, मैं कहता हूँ जूस पीजिएगा, ड्राई फ्रूट लीजिएगा, फ्रूट लीजिए, अच्छे फल खाइएगा, ताजी सब्जियां खाइएगा। जो आप फोन में लगे रहते हो वो ये सबसे बेकार की चीजें हैं, आपकी गलत आदतें हैं और जो कभी नहीं जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे योगा करें, गेम खेलें, इसमें फील्ड भी अच्छी मिलेगी आपको, अच्छे लेवल पे भी जाएंगे, फोन आपको कुछ नहीं देगा, गलत चीजें भी सिखाता है थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, और स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, योगा से जुड़े रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या होगी बहुत अच्छी रहेगी और रंगमंच में वो एक अच्छी भूमिका भी निभा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। स्पर्श, आप क्या कहेंगे रंगमंच में, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए हमें क्या करना होगा?
2: सर, जिंदगी के रंगमंच में अच्छी भूमिका निभाने के लिए पहले तो हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो बात आई सर, आपने बात की डोपामिन की, आपने स्मार्टफोन की बात की, तो सर वो एक स्टिमुलेशन होता है जो बहुत जल्दी सोशल मीडिया से दिमाग को मिल जाता है। जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था सर, तो अब भी होता है, तो उसमें लोग रातों रातों भर टेस्ट क्रिकेट देखते थे, उसका एंजॉय करते थे, मजा लेते थे। बट वो धीरे धीरे कम होते होते अब 20 ओवर पे आ गया है, 20 ओवर से 10 ओवर पे आ गया
1: दस
2: है,
1: ओवर
2: क्योंकि
1: पे।
2: वो जल्दी से वो चाहिए मजा। फील्ड में खेलते समय, भागते समय, जैसे अर्जुन भाई ने कहा, जो डोपामीन, जो गोल मारते समय जब बॉल बैट के बीच में आती है और सिक जाता है, वो जो डोपामीन होता है वो रियल डोपामीन है, जो बॉडी को चला रहा है,
1: बिल्कुल।
2: जो माइंड को और बॉडी को सही तरफ ड्राइव कर रहा है।
1: उसको क्या कर रहे हैं आजकल लोग, स्मार्टफोन या फिर टीवी पे उंगलियों से ऐसे बस
2: जी
1: कर दिया, वो स्क्रीन पे ही चला गया सिक्स,
2: चला गया,
1: उतने में खुश हो जा रहे हैं, क्या
2: वो
1: फायदा।
2: शॉर्ट डोपामिन हो गया सर।
1: शॉर्ट डोपामिन, बस आपकी उंगलियां हिल रही हैं और कुछ नहीं, बाकी तो आप बैठे हुए हैं चुप मार के, दिमाग में एक वर्चुअल बन गया। तो
2: जी
1: इसमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए।
2: जी
1: बाकी और क्या कर सकते हैं हम लोग आपके मुताबिक, जिंदगी की जो जिंदगी को मैनेज करने के लिए
2: जी
1: आपके हिसाब से? अभी तक तो आपने काफी कुछ बताया,
2: जी
1: आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे सभी साथियों को जो युवा हैं?
2: सर, मैं थिएटर के थ्रू एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे मैं रंगमंच करता हूँ, तो अगर मैं कोई करेक्टर निभा रहा होता हूँ, तो वो करेक्टर अगर उतनी सच्चाई से नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि एक इंसान केवल शब्द बोल रहा है। तो पहली चीज़ तो हमारी अपनी सच्चाई, खुद के प्रति ईमानदारी,
1: ईमानदारी।
2: और दूसरा बाकी सारी चीज़ें, जैसे थिएटर केवल एक्टर से और डायलॉग से नहीं बनता, उसमें सेट्स, लाइट्स, परफॉर्मिंग एक्टर क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या घट रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। और सर, मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मैं भी कभी कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मेरा मैसेज बस यही है कि खुद को जानो, खुद को समझो, अपने प्रति ईमानदार रहो, परिवार के साथ समय दो, और थोड़ा ठहरो। जल्दी से भागने वाली चीज़ें स्टेल हो जाती हैं, ठहरने वाली चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं, और उनको समझ पाते हो, देख पाते हो।
1: जी बिल्कुल। आपका आखिरी कमेंट क्या रहेगा अर्जुन जी?
0: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा ये संदेश ये रहेगा कि इस रंगमंच में इंसान को जो भूमिका मिली हुई है, तो वो यही है कि घर तक सीमित नहीं है, हमारे चारों तरफ हो रहे एनवायरनमेंट, वातावरण को लेके उसमें भी बड़ा तालमेल बैठाना चाहिए। जैसे हमें कि एनिमल के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है, किसी बड़े बुजुर्ग के प्रति है, तो हमें वो भी किरदार निभाना है, हम घर तक सीमित नहीं है।
1: अपनी ड्यूटी समझनी होगी
0: जी सर।
1: तभी हम,
0: हाँ, अपने कार्य को समझना है।
1: तभी हम अपने अपने ही साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी बेहतर कर
0: जी
1: सकेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के माध्यम से जो हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम श्रोताओं को, वो मैसेज पहुंचा होगा कि जिंदगी को अच्छे से मैनेज करिए और जो रंगमंच हमें मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, उस पे अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं और इस दुनिया को जो ईश्वर ने हमें इतनी बेहतरीन दुनिया दी है, इसको और भी बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप दोनों का।

0: यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर।
3: अभी आप सुन रहे थे जनमंच। आज का विषय था जिंदगी रंगमंच है। हमारे आज के प्रतिभागी थे स्पर्श पटेल और अर्जुन सैनी। आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।
4: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashwanibareli@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARELLY, akashwanibareli@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
5: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
6: साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो,
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार है पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: कोई मारे कोई किसे को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सा

0: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
1: हम आएंगे,
2: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
3: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप

राजस्थान के थे, श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है और

उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा,

और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल महेश्वरी प्रावलिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।

0: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
1: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
0: आने दिया जाए।
2: महाराणा की जय।
3: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
0: मंत्री जी,
1: अन्नदाता,
0: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
1: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
0: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
0: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
0: महामंत्री जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी।
4: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
4: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्य को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लो इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
5: जी। महाराज,
0: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
1: जी महाराणा।
0: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी

0: देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखला मी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा,
2: तारा आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे रे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
3: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
3: ना,
1: हाँ, ना। अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
3: सॉरी मेरे देवता।

0: ai pujar.
1: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है
2: तुम सचमुच सुंदर हो
1: नगर की राजकुमारी
2: बलपूर्वक विवाह करने के लिए चकोर
1: अपनी विशाल सेना
2: ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
1: नगर के राजा ने
0: स्वामी
1: हमारे महाराणा से
0: पागलपन
1: सहायता की प्रार्थना की है। महाराणा के
2: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूँ।
0: स्वामी
2: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ मुक्त हूँ।
0: सुना आपने स्वामी
2: प्रिय
0: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ।
2: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई।
0: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतम मैं
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं। कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी ना सका एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
3: रानी
0: प्रेम प्रेरणा देता है मोह विचलित करता है।
3: रानी
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
3: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं।
0: तो ठीक है स्वामी आप चूड़ियां पहनकर यहाँ बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
3: रानी ठहरो
0: आप इस पुष्प शैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
3: हूँ। ठहरो रानी
0: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है मैं जाती हूँ।
3: रानी ठहरो रानी सुनो तो
0: नहीं सामन नहीं मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधु सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत नहीं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
3: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
3: नहीं नहीं नहीं ठहरो रानी तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा।
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे यही मेरी शुभकामना है।
3: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
0: ना ना।
3: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा न कहिए प्रियतम यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई

0: ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए। मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका। क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
4: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ।
4: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर। तारा,
4: रानी जी,
2: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ पगली।

रोती है, शत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, दस्तानी ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है ला, ला तारा मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना और कहना कहना रानी ने ये विजय मार

0: तारा तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रणसिंह, ये क्या लाए हो?
3: हमारी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई

0: समझ गया जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
1: आड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों आगे बढ़ो,
2: विजय हमारी है, भवानी हमारे साथ है।
3: मुगल बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
1: सच रणसिंह, हम विजय हुए?
3: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजय हुए, हम विजय हुए।
0: मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
2: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
4: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
5: जी। सामंत,
4: रानी जी कहाँ है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
0: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। शाम के 4 बजे हैं, हम लेकर हाजिर हुए हैं आकाशवाणी के दीवाने। और आज हमारे आकाशवाणी के दीवाने हमारे श्रोता हैं आफताब हुसैन।
1: मधुर मधुर स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क को याद दिला रही हैं। मैं आफताब हुसैन लखनऊ से उस खुशनुमा माहौल और उस खुशगवार अवसर को याद कर रहा हूँ कि आज 90 साल आकाशवाणी को हो गए और यह सिलसिला बदस्तूर तब से और आज तक चल रहा है। ये खूबसूरत सा सफर हर एक को गीत और संगीत सुनने वालों को आनंद विभोर कर देता है। तो मेरी तो यही शुभकामना है कि यह जो सफर है ये इसी खूबसूरती के साथ चलता रहे, आप सब लोग इसका आनंद लेते रहें, लुत्फ लेते रहें और हम सभी इस सफर के जो गवाह बने हैं वो एक खुशगवार पल है। बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: तो आकाशवाणी के दीवाने में आज आपने सुना आफताब हुसैन के विचारों को कि वो कितने दीवाने हैं आकाशवाणी के। और आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
3: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashwanibareli@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARELLY akashwanibareli@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 4:05 हो चुके हैं और हम भी लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोता, इस कार्यक्रम के लिए

0: हम आपकी फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 2:30 पर। इसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 0581251720 पर। वहीं फेसबुक के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम में अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा फेसबुक पर, आकाशवाणी बरेली पेज को सर्च कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और आज के प्रश्न को लेकर आपका जो भी मानना है हमें लिख भेजिए और बस बन जाइए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। तो फिलहाल अब देखते हैं कि दिन में जो फोन कॉल्स हमें मिली और हमने उनको रिकॉर्ड किया, उसमें पहले हमारे श्रोता कौन हैं और क्या मानना है उनका आज के विषय को लेकर। हेलो
1: हेलो,
0: जी नाम बताइए।
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, चनेटा से, जो 57 बरेली।
0: जी सुनील कुमार जी, चनेटा बरेली से हमसे जुड़े हुए हैं। सुनील जी बताइए, क्या आप बिना मांगे सलाह देते फिरते हैं किसी को भी?
1: नहीं नहीं मैम, और देना भी नहीं चाहिए। जो सलाह खुद से पूछे, यहाँ सही रहेगी तो सलाह देना चाहिए,
0: अच्छा
1: सलाह नहीं देना चाहिए जिससे आदमी बोर हो जाए और आपके पास उठ के चला जाए।
0: अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना मांगे ही अपनी सलाह देते रहते हैं, तो उन व्यक्तियों की इमेज क्या रहती है?
1: उनकी इमेज यही है कि ये ज्यादा बात करते हैं, जहाँ पर बैठो तो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, तो यही लोग कहते हैं और हम भी यही कहते हैं कि बेवजह सलाह नहीं देना चाहिए।
0: बिल्कुल, उनके लिए एक बड़ा छोटा सा शब्द लोग अधिकांशतया यूज करते हैं, गप्पी, है ना? कि ये व्यक्ति गप्पी है।
1: ये जहाँ कहीं बैठते हैं तो गप्पे मारते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: चार का मंदिर का टाइटल सॉन्ग।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि अगर आपकी फोन कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई है तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आप फेसबुक के माध्यम से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि और कौन से श्रोता फोन लाइन पर है हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अनोखे लाल मौर्य बोल रहा हूँ, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली।
0: अनोखे लाल जी, कटरा चांदखा पुराना शहर से हमसे जुड़े हुए हैं और आप तो नियमित श्रोता हैं, आपके पत्र और कमेंट समय मिलते ही रहते हैं।
1: जी।
0: तो अनोखे लाल जी, ये बताइए कि क्या आप भी बिना मांगे सलाह दे देते हैं किसी को भी?
1: ऐसे कोई भी सलाह नहीं देते, कोई भी योजना आती है, कोई भी सरकारी योजना आती है तो कोई मांगता है तो हम दे सकते हैं, वैसे हम अपनी मर्जी से किसी को सलाह नहीं देते।
0: अच्छा, कोई अगर आपसे पूछता है किसी विषय के लिए जानकारी तब आप देते हैं?
1: जी जी
0: बिल्कुल, यही समझदारी है, क्योंकि आज के समय में अच्छा जो व्यक्ति बिना मांगे ही सलाह दे देते हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
1: उसके लिए जो है आपने लड़क को जोता, उसके लिए ज्यादा और क्या समझता है लड़क।
0: बिल्कुल, सामने वाले के मन में फिर आपके लिए यही इमेज बनती है जो आप बता रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे?
1: ये गांजा गाने सुन रहा
0: थी। बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो इस खूबसूरत गीत के बाद और कौन सा गीत आप तक पहुंच रहा है? और हाँ, आज के प्रश्न को लेकर हमारे श्रोताओं का क्या मानना है, जानते हैं। हेलो,
1: जी हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: मैडम मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ, सिंधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से।
0: जी इमरान शेख, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी बताइए कि क्या आप भी बिना मांगे सलाह दे देते हैं किसी को भी?
1: मैम अगर कोई अच्छा काम कोई बंदा कर रहा है और आप उसको और आगे अगर बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप सलाह दे सकते हो कोई अच्छे
0: बिल्कुल,
1: काम के लिए।
0: वो प्रेरित करना
1: और
0: हुआ है ना।
1: यस मैम, और
0: जी
1: अगर आप किसी गलत चीज की सलाह देते हो तो उन चीजों से बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, गलत चीजों की तो सलाह देनी ही नहीं चाहिए।
1: मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे कामों की देते भी हैं लेकिन जो गलत दिशा में ले जाते हैं तो उनकी भी सलाह दे देते हैं।
0: लेकिन हमारा मानना है, जब तक सामने वाले को जरूरत ना हो आपकी या उसका डिमांड ना हो कि हमें इस चीज में सलाह चाहिए, तब तक अपनी सलाह नहीं देनी चाहिए।
1: बिल्कुल मैम।
0: जी तो इमरान जी, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा और गाने के बोले हैं कसम खा के कहो।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: मेन मैं कुमार रेडियो क्लब सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: जी राजेश श्रीवास्तव, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जरा बताइए कि आप भी बिना मांगे किसी को भी सलाह दे देते हैं?
1: मैम देखिए, जब कोई अपना जिसे हम मानते हैं और हमें अगर ऐसा लगता है कि ये सलाह के लायक है या हमारी बात को मानेगा
0: जी,
1: तो उसे अच्छी बात बताने में या सलाह देने में कोई बुराई भी नहीं है। वरना तो आजकल जमाना ऐसा है कि खुद आप लोग इतने समझदार हैं कि वो दूसरों को ही सलाह देते हैं।
0: बिल्कुल, आपके मुताबिक जो आपके प्रिय हैं, आपके अपने हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, उन्हें सलाह देना एक तरह से मार्गदर्शन करना है उनका। लेकिन कोई और व्यक्ति है, अगर उनको सलाह आप देते हैं वो भी बिना मांगे बिना जरूरत के, तो आपके लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, गप्पी।
1: मेरे साथ भी है ऐसा, मेरे परिवार के लोग हैं या हमारे जो पड़ोस के हैं
0: जी,
1: तो कई बार जैसे चाहे वो पढ़ाई की अगर बात की जाए या कोई आर्थिक मजबूरी की बात की जाए, उन्होंने परेशान हमने देखा है और अपनी तरफ से अगर कोई बात बताई है उन्हें तो उन्होंने उस बात को फॉलो किया है, माना है, तो खुश होता है, अच्छा लगता है।
0: वरना तो सामने वाला यही समझता है कि अरे इस व्यक्ति के पास तो बस फालतू टाइम है बातें करने का, है ना। ठीक है, तो आज आप कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मेन फिल्म देवी का एक गीत है, शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो श्रोताओं, आप इस समय आकाशवाणी बरेली के साथ हैं और कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। देखते हैं और कौन श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं मिस सोनाली कठेरिया बोल रही हूँ, सुभाष नगर से, बरेली।
0: बिल्कुल, सोनाली कठेरिया सुभाष नगर बरेली से हमसे जुड़ी हुई हैं और हमें लगता है कि सोनाली कठेरिया, इससे पहले कि आपका फोन लगा है कार्यक्रम में।
1: नहीं मैम, मैंने फर्स्ट टाइम किया है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात
1: मैं
0: है
1: फेसबुक के माध्यम से मैं आपसे मिली थी।
0: जी। वहाँ कमेंट करती हैं आप?
1: जी, वहां मैं कमेंट करती हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल, तो बताइए जरा कि बिना पूछे ही बिना मांगे आप किसी को भी सलाह दे देती हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, पहले ऐसा हुआ करता था, पहले मैं बहुत ऐसा किया करती थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं राय तो देती थी, अपनी सलाह देती थी, लेकिन मानता कोई नहीं था। और मेरा नाम भी रख दिया गया था इस वजह से कि मुफ्त की सलाह देने वाली। उसके बाद
0: बिल्कुल।
1: थोड़े टाइम बाद मैंने खुद को चेंज किया, क्योंकि नाम कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, राय लेता नहीं था
0: अच्छा,
1: कोई। और इस वजह से
0: बिल्कुल,
1: जी मैंने फिर चेंज किया खुद को। और अब
0: हाँ
1: मैं चुप रहती हूँ, मैं राय नहीं देती हूँ,
0: अच्छा,
1: सलाह नहीं देती
0: लेकिन
1: है
0: जो
1: ऐसे।
0: मांगे उसे तो देनी चाहिए ना।
1: जी उसको तो देते हैं, लेकिन बिना मांगे नहीं देती मैम।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब आपको कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये मुफ्त की राय दे,
1: मुफ्त की सलाह देने वाली।
0: मुफ्त की
1: जी
0: सलाहकार। चलिए, तो आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे सोनाली?
1: मैं अपने दोस्तों को गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ, ये दोस्ती तेरे दम से है। और तीन मित्रों को मैं अपने करना चाहती हूँ, शिप्रा,
0: जी
1: कोमल शर्मा और साइमा खान।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं, आपके दोस्तों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। ओके, बाय।

0: तो श्रोताओं, आकाशवाणी 100.4 FM से आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और किन श्रोता की बात हो रही है आकाशवाणी के साथ, जानते हैं। हेलो।
1: हेलो जी, मैं उर्फी जावेद बात कर रही हूँ, बरेली पुराने शहर से।
0: उर्फी जावेद बरेली पुराने शहर से हमसे जुड़ी हुई हैं। उर्फी बताइए कि आप क्या बिना बताए बिना मांगे किसी को भी सलाह दे देती हैं किसी भी विषय पर?
1: जी वैसे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वैसे मैं किसी को भी सलाह देती नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम वो भी गलत काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं होता है कि इसमें हमारी अच्छाई है या बुराई है और काम करते चले जाते हैं, और अगर हम उनको कुछ भी बताएंगे तो उनको बुरा लगता है कि ये हमें देखो टोक रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपने फैमिली में जितनी सिस्टर है या फिर मेरी मम्मा है या फिर मेरा जूनियर ब्रदर है, उसको ही मैं ये एडवाइस देती हूँ कि बेटा ऐसा काम नहीं करते हैं, इसमें तुम्हारी अच्छाई है या नहीं है, या फिर ये आगे तुम्हें सक्सेसफुल हासिल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को एडवाइस देती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं देती हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपसे जो छोटे हैं, आपके जो फैमिली के मेंबर हैं, आप उन्हें ही एडवाइस देती हैं, उन्हें ही सलाह देती हैं और वो उस सलाह को फॉलो भी करते हैं, है ना?
1: जी, जरूर फॉलो करती हूँ।
0: बिल्कुल, तब तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको।
1: जी हाँ, और ऐसे अपने दिल को भी तसल्ली हो जाती है कि अरे हम मैं बड़ी हूँ तो मेरी ये सारी जो मेरी सिस्टर है, जो मेरा ब्रदर है और मेरी मम्मा है, ये मेरी बात को भी मानते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और गीत कौन सा सुनेंगी?
1: जी मैं, तो मूवी है इंडियन बाबू का, जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा।
0: ठीक है।

तो श्रोताओं ये तो थे वो कमेंट, माफ कीजिएगा वो कॉल्स जो हमें दिन में मिली और हमने उन्हें रिकॉर्ड किया और आप तक पहुंचाया। अब फेसबुक की ओर चलते हैं। वैसे आपके पास अभी भी मौका है कि आप फेसबुक पर हमें कमेंट करें कर सकते हैं और अभी भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि फेसबुक पर किन किन श्रोताओं के कमेंट्स हमें मिले हैं और आज के विषय को लेकर क्या मानना है इनका। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। ये लिखते हैं, बिना मांगे बिना कुछ कहे किसी को फ्री में राय नहीं देनी चाहिए। मैं कभी भी किसी को भी कभी भी बिना मांगे राय नहीं देता हूँ। 95% लोग बगैर मांगे फ्री में राय बांटने में सबसे आगे रहते हैं। बगैर मांगे फ्री में राय बांटने वाले अक्सर अपने आप को बहुत समझदार मानते होंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि किसी को भी फ्री में राय नहीं देनी चाहिए। और अब देखिए अंकुश अरोड़ा जी, इनके साथ में है तिलक राज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, देखिए ये हमारे संबंध पर निर्भर करता है। संबंध अच्छे हैं तो बिना मांगे भी राय दे सकते हैं, बशर्ते जो सलाह हम देने जा रहे हैं उस विषय पर हमको पूरी जानकारी हो। जानकारी नहीं है तो सलाह मांगने वाले से साफ मना कर देते हैं कि इस विषय पर हमको जानकारी नहीं है। हम जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उससे संबंधित हम कोई सलाह अगर

हमसे मांगता है तो हम साफ मना कर देते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। अपने व्यापार से संबंधित जानकारी देने पर भविष्य में नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी विषय पर गंगा सिंह रावत क्या लिखते हैं, आप रामपुर से हैं, हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड, माफ कीजिए रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल से हैं। और आज के विषय को लेकर लिखते हैं, बिना मांगे किसी को सलाह देना आज के समय में बहुत जोखिम का काम है। पहली बार कोई आपसे सलाह मांगता नहीं, फिर आप जबरदस्ती किसी को अगर सलाह देते हैं तो फिर वह आप पर गुस्सा हो जाता है। आप होते और कहता है कि आप होते कौन हैं उनसे सलाह उन्हें सलाह देने वाले। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हादसा हुआ है। गंगा सिंह रावत जी कहते हैं, बस में मैं हल्द्वानी से बरेली सफ़र कर रहा था। इज्जत नगर के पास एक सवारी दूसरी सवारी से किसी बात पर बहस कर रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पड़ गया और जो व्यक्ति जोर से बोल रहा था उन्हें सलाह देने लगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने काम से मतलब रखिए, हम दोनों दोस्त हैं और यह मामला हम आपस में निपटा लेंगे। और मैं अपना समूह लेकर बैठा रह गया। उस दिन के बाद से मैंने दूसरों को सलाह देने के लिए बस तौबा कर ली है। बहुत सुंदर। और रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल, नमन, गरीब भाई राम राठौर, प्रिया सिंह और परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर। आप लिखते हैं, देखिए ये हमारे संबंध पर निर्भर करता है। संबंध अच्छे हैं तो बिना मांगे भी राय दे देते हैं, बशर्ते जो सलाह हम देने जा रहे हैं उस विषय पर हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो सलाह मांगने वाले से साफ मना कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। और अब अपने इन श्रोताओं की पसंद पर आप तक पहुँचा रहे हैं शागिर्द फिल्म से ये गीत।

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिलबर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लबगर।

0: ऐसे ना बनो।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में बहुत अच्छे गीत का चयन हमारे श्रोताओं के द्वारा।
0: मालूम नहीं है।
1: और भी हमारे श्रोता हैं, आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं, आपके साथ हैं लालू अंसारी। और आप लिखते हैं, हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, आज का विषय बहुत खास है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना मांगे हर किसी को अपनी राय पेश करते हैं, और ऐसे राय पेश करना हमारे हिसाब से किसी को भी बिना मांगे कोई राय नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपनी अहमियत को खराब करता है। जिनकी अहमियत समाज में होती है उनके पास तो लोग राय लेने के लिए खुद चलकर चले जाते हैं और उनका पालन भी करते हैं, लेकिन बिना मांगे अगर किसी की आदत है राय देने की तो वो अपनी आदत को छोड़ दे, यही बेहतर है। टिकड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हासिम खान, अरहम बाबू और किशवा नूर क्या लिखते हैं, नहीं बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। इससे लोगों की नजर में आपकी अहमियत कम हो जाती है, लोग आपको फालतू समझते हैं। लोगों के बीच अपना मान सम्मान इज्जत बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपसे आमतौर पर कोई सलाह मांगता है तो उसको अच्छी सलाह देना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपनों से बड़ों की सलाह लेना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना काम स्वयं करें, जिम्मेदारी से करें। वारिस अली खान संजय नगर ऐशवाक लखनऊ से हैं, ये लिखते हैं, नमस्कार आपको भी। मैं बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता हूँ, सलाह उसी को देता हूँ जिसे मेरी सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि बिना मांगे अगर आप किसी को सलाह देंगे तो आपका जो महत्व है सामने वाले की नजर में कुछ नहीं रहेगा। बिना मांगे सलाह देना भी कभी कभी आपको मुसीबत में डाल सकता है। बिल्कुल। प्रवीण चौहान जी लिखते हैं, मैं बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देता, लेकिन प्रवीण चौहान जी आप कहाँ से हैं ये भी लिखना चाहिए था। चलिए, तो हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर अब चलते चलते सुन लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

और देखिए श्रोताओं, कॉल्स पर और फेसबुक पर आपसे रूबरू होते होते समय कब समाप्ति की ओर आ गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि बस ये सफर यूं ही चलता रहे, हम आपसे फेसबुक और कॉल्स के जरिए रूबरू होते रहें, आपके विचारों को जानते रहें। लेकिन क्या करें श्रोताओं, निश्चित समय सीमा हर चीज की है। हम सभी एक निश्चित समय सीमा में बंधे हुए हैं और इसी के चलते अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि हम अपने कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं। लेकिन हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, कोई बदलाव है, आप हमसे साझा कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाओं में। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे दो माध्यमों से साझा कर सकते हैं। पहला तो

मेल के जरिए और दूसरा पत्रों के माध्यम से। पत्रों से अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली। बरेली का पिन नंबर है 243001। वहीं ईमेल पर आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी सुझाव, आपकी शिकायतें हमें सुकून देती हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए तो हम इंतजार करते हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का। तो श्रोताओं, हमें रहेगा इंतजार आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का, और जरूर भेजिएगा। और अब कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

और अब श्रोताओं, आप भी अपनी घड़ी से हमारी घड़ी के साथ मिलान कर लीजिए समय का। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। और अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में 5:05 पर होगी भजन संध्या और आपकी फोन कॉल्स जो हमने दिन में रिकॉर्ड की उस आधार पर हेलो बरेली कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 5:30 पर। युवाणी का समय शाम 6 बजे का रहेगा। होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। किसानवाणी में 6:30 पर होगा आज की बात और आकाशवाणी गांव में किसान के साथ बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। ग्राम जगत में 7 बजे चर्चा का विषय रहेगा रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। 7:31 पर लेकर आएंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। और श्रोताओं, कल दिन होगा रविवार, तो रविवार की शुरुआत करेंगे सुबह 8:15 से बच्चों के साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर से, जिसमें ज्ञान की बात में जानेंगे बरेली जनपद का ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्व। एटीएम कार्ड के उपयोग में जरूरी है समझदारी, होंगे बाल गीत और बहुत कुछ सवाल जवाब। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन, जिसमें हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार, आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने, इस कार्यक्रम में हसमत अली को सुनिए सुबह 10 बजे। 10:05 का समय आपकी पसंद कार्यक्रम का रहेगा, जो कि सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम है। वहीं आपके सुझाव और शिकायतों के साथ आपका पत्र मिला कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 11 बजे। अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे दिन में 1 बजे। शाम 4 बजे पुनः आकाशवाणी के 90 वर्ष होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने हम लेकर आएंगे, जिसमें हमारे श्रोता रहेंगे एक राम वर्मा। शाम 4:05 का समय रहेगा आपकी बात आकाशवाणी के साथ का।

5:30 पर होगी भजन संध्या। 6 बजे होगा युववाणी, जिसमें होगा आज का सवाल बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में 6:30 पर चर्चा की जाएगी ऊर्जा की बचत और गंगा दशहरा पर, साथ ही होगा क्षेत्र संकेत कार्यक्रम। बरेली राउंड अप आप सुन सकेंगे 7 बजे।

7:31 का समय रहेगा जनमंच का, जिसमें विषय रहेगा उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी रहेंगे आदर्श कुमार और काजल गंगवार। मुझे याद है जरा जरा, इस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे रात्रि 8 बजे, जिसमें M.R. यदुवंशी से मिथिलेश श्रीवास्तव की भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित वरिले होने वाले कार्यक्रमों की, और आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। देश की बगिया का सबसे महत्ता पुष्प हिंदी। अपने देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दें। जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि जल का कोई विकल्प नहीं। आकाशवाणी बरेली से हम बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए 5:05 अब आपको ले चलते हैं भजन संध्या की ओर। भजन संध्या में पहला जो भजन आप तक आ रहा है, माटी कहे कुमार से तू क्यों रौंधे मोए, लक्ष्मी शंकर की आवाज में।

भजन संध्या आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। और अब भजन में आवाज है ओम व्यास की। सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।

कार्यक्रम में इस भजन के बाद लीजिए आप सुनिए ये भजन सुधीर व्यास राम की आवाज में। ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम ही से है।

सब कुछ सरकार तुम ही से है। इस भजन के बाद लीजिए अब सुनिए पंडित कुमार गंधर्व को, उड़ जाएगा हंस अकेला।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 5:30 और 9:10 हो गए। और अब प्रस्तुत है हेलो बरेली।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहाँ पर मिलता है आपको गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। हेलो बरेली लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो बरेली।
2: हेलो बरेली।
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब?
2: डॉक्टर आर जी सिंह बोल रहे हैं, थाने सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहां।
1: कैसे लग रहे हैं हमारे बरेली के कार्यक्रम आपको?
2: भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें खुशी हुई आपसे बात करके।
1: हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। आरबी सिंह जी, कैसा मौसम हो रहा है उधर?
2: सर गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और दोपहर में तो 11 बजे के 3 मिनट बाद चलना दुश्वार हो जाता है, भयंकर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 43 दिखा रहा है।
1: जी जी जी जी।
2: आपको बरेली में कैसा मौसम है सर?
1: बरेली में बहुत बढ़िया चल रहा है मौसम और सभी जगह वो गर्मी का नौतपा टाइप का ही है। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि मतलब बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी दोपहर में बाहर निकले, और जब भी निकले तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के निकले और साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकले। तो आरबी सिंह जी, आपने आज हमसे बात की है तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: एक मूवी आई थी दीवाना, उसका सुनवा दीजिए, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, कुमार समझी की आवाज में है।
1: जी, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म थी।
2: जी जी, ऋषि कपूर साहब की थी।
1: जी जी जी। तो सुनते हैं गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: नमस्कार, वंदे मातरम। प्रिय भाई देवों के इंद्र देवेंद्र रावत साहब का हमारे वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ सर, रामचंद माखीजा काफिर भाई।
0: रामचंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं उधर?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो रामचंद जी, कैसा मौसम हो रहा है आपकी तरफ?
1: यहाँ का मौसम तो ऐसा है सर, गर्मी तापक्रम इतना बढ़ गया है कि जैसे तवे पे रोटी रखी जाती है वैसे सिकाई हो रही है हम लोगों की। सूर्य देवता नाराज हो गए हैं।
0: सूर्य देव रुष्ट होकर चल रहे हैं ना?
1: जी जी जी।
0: रामचंद जी, कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
1: एक से बढ़कर एक सर, बढ़िया प्रोग्राम है बरेली के, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए और वाचन दृष्टि से भी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण रहता है आप उद्घोषकों का।
0: जी जी जी।
1: और जो शाम को प्रोग्राम होता है रिकॉर्डिंग, 2 घंटा बाद 4 बजे होता है, जो विचार बताते हैं ना आप,
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ, हाँ।
1: वो भी बढ़िया रहता है।
0: जी जी।
1: और अनुरोध गीत जो भी आप पेश करेंगे वो भी अच्छा रहेगा, सभी अच्छे प्रोग्राम है सर। क्या श्रोताओं का जो ध्यान दिया जा रहा है ना वो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया जा रहा है।
0: हमारे केंद्र के साथ काफी नए श्रोता भी जुड़ गए हैं और बड़ी दूर दूर के श्रोता जुड़ गए हैं ना।
1: जी जी जी।
0: मेरी आपसे एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि हमारा एक कार्यक्रम आता है, आपका पत्र मिला। तो उसमें अपने मेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखिएगा कि कौन से कार्यक्रम आपको अच्छा लगा और उसमें क्या अच्छा लगा। कुछ अगर आप सुझाव देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि आप कहोगे कि ये मैंने कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा, तो वो हमारा जो भी उद्घोषक या कंपेयर होगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, वो और दुगने जोश के साथ काम करेगा, है ना। तो रामचंद जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आप सुनेंगे सर, गर्मी जो बढ़ गई है तो मैं यही कहूँगा गर्मी में मिर्च मसाले वाले तेल वाले चीजें न खाएं, और ठंडे पेय जो है
0: जी
1: मटका का पानी पिए, फ्रिज व्रिज का न पिए, क्योंकि वो उसका तासीर जो है गर्म रहता है, जो अंदर नसें और अवयवों को

0: नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी जी
0: तो शुद्ध शीतल जल पिए मटके का, और बाहर गर्मी में निकले तो पानी वानी शरबत वरबत पी के निकले, नींबू पानी हो गए, शरबत जो भी अच्छा लगे हमें।
1: जी
0: तो सेहत के साथ खिलवाड़ न करें और अपने सेहत का ध्यान रखें। आप सुनाइएगा, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, इसको सुनाएंगे देवेंद्र साहब।
1: हाँ, तो सुनते हैं ये गीत आप और हम।

0: का पानी।
1: हेलो बरेली।
2: बरेली नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं भाई?
2: राजेंद्र गंगवार, कस्बा तोड़िया, तहसील नवाबगंज, चंदस्ती, बरेली से ही बोल रहे हैं सर जी। और आप कैसे हैं?
1: बस आपका प्यार है आशीर्वाद रहन भाई, कैसे हैं आप?
2: सब भी ठीक है और आपकी दुआएं हैं और आकाशवाणी पूरा टीम ठीक रहना चाहिए क्योंकि अधिक गर्मी पड़ रही है।
1: जी जी जी जी, हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं?
2: अरे अच्छे लग रहे हैं सर जी, लेकिन बस एक ही बात की परेशानी है कि सुबह के कार्यक्रम आपने बंद कर दिए सुबह 6 बजे से, वो ही प्रॉब्लम है। वैसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे जा रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं।
1: तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, तो हम आशा करेंगे कि हमारी तीसरी सभा जाती थी वो भी पुनः आरंभ होगी। तो राजेंद्र भाई, क्या करते हैं आप?
2: तो सच्ची अगर कोई जैसे थाली होते हैं तो हम तो जरी का काम करते हैं, वैसे तो हमें तो कोई काम कर ही नहीं मिलता क्योंकि पैर से थोड़े दिक्कत है।
1: चलिए कोई बात नहीं।

0: ऊपर वाला अगर दुख भी देता है तो सुख भी देगा, है ना? तो कभी अपने
1: अरे
0: को
1: तो
0: कम नहीं
1: सही,
0: समझना चाहिए रायन भाई। और आप जरी का काम करते हैं, जरी जरदोजी बरेली की कितनी फेमस है ना, विदेशों तक में बरेली का नाम जो पहुंच रहा है आप लोगों के काम की बदौलत ही तो पहुंच रहा है ना।
1: जी जरी का काम, हम जरी के नाम से ही हमारा बरेली जाना जाता है, और दूर दूर तक कहीं भी कोने में चले जाओ तो जरी के नाम से ही बरेली जाना जाता है।
0: जी रायन भाई, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो रायन भाई आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा हीरो नंबर वन का, कोई सा भी सॉन्ग चला देना, चाहे गर्मी वाला ही चला देना, जेठ की दोपहरी में इसी में सॉन्ग है।
0: जी, तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सर जीशान वार से बात कर रहा हूँ, ग्राम सनोली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से।
0: जीशान भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं सर एकदम ठीक ठाक हूँ सर। आप बताएं, आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। जीशान भाई, कैसा चल रहा काम धंधा?

0: सर काम धंधा एकदम ठीक ठाक है और आपके प्रोग्रामों का सर आनंद ले रहे हैं।
1: चलिए, हम तो चाहेंगे कि आप हमेशा ताज जिंदगी हमारे कार्यक्रमों का आनंद लें। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे?
0: सर कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं और आपकी प्रस्तुति लाजवाब रहती है, और इसी के साथ साथ मैं सभी सुनने वालों से और आकाशवाणी परिवार को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई पेश करता हूँ।
1: आपको भी मुबारक हो, और क्योंकि आप जो श्रोता होते हैं आकाशवाणी के पूरक होते हैं ना। जीशान भाई, आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: सर मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है राजा और गीत के बोले हैं आंख मिलाते डर लगता है। और सर मैं दो नाम लेना चाहूंगा,
1: जी बोलिए बोलिए।
0: मेरे बड़े भाई हैं करूला मुरादाबाद से अयुब खान और मेरा छोटा भाई है सिंधौली मीरगंज से इमरान शेख।
1: तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो बरेली।
1: हेलो बरेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, आप देश में मजला शाहजहांपुर से बोल रहे हैं। आप श्रीमान परम आदरणीय कुशल वरिष्ठ योगी विद्वान विद्वतवर श्रीमान देवेंद्र रावत भैया बात कर रहे हैं।
0: जी, आपने बहुत ही करेले को नीम पे चढ़ा दिया।
1: ऐसी बात रही है कि जो वास्तविकता है वो तो निकल ही जाती है। श्रीमान प्रवीण कुमार जी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत करवाया था, वो आपने प्रस्तुत किया था। 15 जून के लिए आया था, वो कार्यक्रम था मिथुन चक्रवर्ती जी के ऊपर। उनका जो है 1950 में जन्म हुआ था कोलकाता में,
0: जी,
1: और उनके दो बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, और उनका गौरांग चक्रवर्ती उनका बचपन का नाम था।
0: दो लड़के हैं उनके और एक लड़की है।
1: वो कार्यक्रम इतना पसंद आया, वो जीवन में कभी भी उस कार्यक्रम, इतने अच्छे कार्यक्रम को भुलाया नहीं जा सकते, नहीं कर
0: चलिए,
1: सकते।
0: आपको अच्छा लगा, हमें भी खुशी हुई उस सुन के। और वो मिथुन जी के जन्म दिवस के अवसर पे स्पेशल प्रोग्राम था वो।
1: चर्च वाला प्रोग्राम दिया था कि दो दो ढाई ढाई फुट की इसकी चर्च की दीवारें हैं, और क्या वायलिन रखा रहता था क्या?
0: हाँ, वो कैंट का हमारा जो चर्च है वहाँ पे एक वायलिन रखा हुआ है, और विदेश से आया था बकायदा, है ना?
1: आपके कार्यक्रम मन लगा के सुनते हैं, अब से नहीं, जब ओपनिंग नहीं हुई थी उससे पहले जब दिन भर गाने ही बजते रहते थे।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: पति पत्नी और तवायफ को कहना ना, ये ना, ये गाना आज
0: बहुत
1: से अभी से बस तेरा मैं तेरा कहना ना।
0: बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है, तो सुनते हैं ये गीत, आप और हम और साथी।

दोस्तों कहते हैं कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं, कुछ बातें सिर्फ कही नहीं जाती दिलों तक उतर जाती है। और जब बात हो युवाओं की, सपनों की, अपनी शहर की, अपने एहसासों की, तो हर धड़कन बन जाती है एक नई कहानी। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ में व्यस्त भी होंगे और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, व्यस्तता में आप हमें यानी कि आकाशवाणी बरेली को भी समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं, दोस्तों, मित्रों, देखिए मई जून की ये तपती दोपहरें, सड़क पर उड़ती धूल, चौराहों पर शिकंजी और गन्ने के रस की दुकानें और ऊपर से सूरज का एक ऐसा तेवर, लगता है जैसे पूरा बरेली तंदूर बन गया हो। लेकिन सच कहें, हर मौसम अपने साथ कुछ खास यादें भी लेकर आता है। किसी के लिए गर्मी मतलब छुट्टियां होती हैं, किसी के लिए आम और कुल्फी, तो किसी के लिए शाम की ठंडी हवा में दोस्तों संग घूमना। और अगर बात करें अपने बरेली शहर की, तो यहाँ की शामों का भी अलग ही मजा होता है। अब देख लो, चाहे सिविल लाइंस की रौनक हो, चौपला की भागदौड़ हो, कुतुब खाना की पुरानी यादें हैं और स्ट्रीट फूड की खुशबू, हर कोना अपने आप में एक कहानी सुनाता है। वैसे दोस्तों, गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, बरेली वालों का दिल हमेशा कूल कूल रहता है। कभी कभी सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कितनी तेजी से भाग रहे हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, करियर है, पढ़ाई है, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो हैं हम और हमारे अपने लोग। तो आज अगर मौका मिले तो शाम को छत पर जाइए, थोड़ी हवा खाइए, माँ के हाथ की ठंडी शिकंजी पीजिए और खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। दोस्तों, आपको पता है जब गर्मी आती है ना, तो याद आती है बचपन की, जब ना इतनी टेंशन थी, ना मोबाइल का चक्कर था, बस दोपहर में आम खाना, कार्टून देखना और शाम होते ही दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना। आज भी जब कहीं से कुल्फी वाले की घंटी आवाज़ सुनाई देती है तो दिल कुछ सेकंड के लिए फिर बच्चा बन जाता है। और हाँ, गर्मी में एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, वो है पानी। खुद को श्रोताओं हाइड्रेट रखिए, धूप में निकलते वक्त सावधानी रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। दोस्तों, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, शहर बनता है वहाँ रहने वाले लोगों से, उनकी मुस्कान से, उनकी आवाज़ों से, उनके सपनों से। और बरेली की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ अपनापन आज भी जिंदा है। अगर आप बाहर से भी यहाँ आते हैं तो कुछ ही दिनों में ये शहर आपको अपना बना लेता है, साथ ही में दीवाना भी। तो दोस्तों, कहते ना कि जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त हो, अपने शहर से, अपने

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सभी का आकाशवाणी बरेली में एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम कार्यक्रम में आपको प्रतिदिन एक युवा से रूबरू कराते हैं, और ये जो मौका है ये बड़ा खास है, क्योंकि आपको पता है कि आकाशवाणी अपने जो 90 साल है उसको मना रहा है, और एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है आकाशवाणी का, और उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी रही है हमारे श्रोताओं की। क्योंकि श्रोताओं, देखिए, चाहे आकाशवाणी का कोई भी केंद्र हो, श्रोता हर जगह हमसे जुड़े हुए होते हैं, अपनी बातें करते हैं। आकाशवाणी हर भाषा में काम करता है और हर भाषा में जो वहाँ के लोग हैं वो सुनते हैं। ऐसे हमारा केंद्र है आकाशवाणी बरेली।

0: और जो बरेली है वो हम सभी जानते हैं खास है, और इसको खास बनाता है आकाशवाणी, और आकाशवाणी को खास बनाते हैं उसके प्यारे प्यारे श्रोता। श्रोता, आपको पता है कि आकाशवाणी शुरुआत से ही सारे जो भी कार्यक्रम है वो पेश करता है, चाहे आपके महिलाओं के लिए हो, हमारे किसान साथियों के लिए हो, चाहे मनोरंजन के हो, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम आते हैं, और उसमें भी एक खास कार्यक्रम है युवाओं के लिए युववाणी। तो आज हम एक युवा के पास पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे कि आकाशवाणी बरेली उनके लिए कैसे खास है, क्या उन्हें जानने को मिला, क्या उनकी यादें हैं, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपका, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम भी बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए
1: जी
0: श्रोताओं
1: जी
0: को।
1: भैया जी, आपके लिए भी बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, जी ग्राम लखा और तहसील वीरगंज से हूँ। जी
0: तो
1: और
0: जी जी बताइए।
1: जी, ये बड़ा अच्छा है कि आज मतलब हमारे जो आकाशवाणी है उसके 90 वर्ष पूरे हुए, तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है।
0: जी, तो सतेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कब से रेडियो सुनना शुरू किया, कब से आप सुन रहे हैं?
1: सर, रेडियो जैसे मैंने बहुत ही बचपन जैसे बचपन से ही सुनना शुरू किया था, कि जब मेरे दादाजी अक्सर शाम के समय रेडियो को लेके बैठते थे और उस समय एक प्रोग्राम आता था कि
0: जी
1: किसान वाणी शायद,
0: हाँ, जी अभी भी आता है जी।
1: तो उसमें मतलब मैं अक्सर जब वो प्रोग्राम सुनते थे उसके बाद उसमें लोकगीत आते थे, तो वो हम अक्सर वो लोकगीत को सुना करते थे, तो वो हमें सुनवाते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर और भी प्रोग्राम जैसे मॉर्निंग में रामचरितमानस का आना, और
0: जी,
1: ये तो हम मॉर्निंग में और इवनिंग जब भी वक्त मिलता था तो हम रेडियो को सुनते थे और बड़ा अच्छा लगता था। आज भी जब भी
0: वाह।
1: हम रेडियो से सुनते हैं तो हमारे बचपन की यादें भी ताजा होती हैं।
0: तो यानी कि आप बचपन से ही रेडियो को सुन रहे हैं, आपने बताया दादाजी थे
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: खेती बाड़ी
1: बिल्कुल
0: का कार्यक्रम जो आते हैं किसान बाड़ी वो सुनते थे, और आप भी सुनते हैं आप कार्यक्रम, आप अभी कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली के कौन से खास लगते हैं आपको?
1: मुझे युववाणी बहुत अच्छा लगता है, उसका कार्यक्रम किसान
0: जी
1: वाणी,
0: जी
1: ये प्रोग्राम्स उसके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि इनसे
0: तो
1: हमें नॉलेज की बात भी होती है इनमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी बरेली की क्या भूमिका है बरेली के लिए, और देखिए 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं आकाशवाणी के, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से भागीदारी निभा रहा है वो?
1: नहीं, ये तो आकाशवाणी की मतलब देखा जाए तो बरेली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, कि वो एक मनोरंजन का साधन है बहुत बड़ा। एक तो आज की लाइफ में जिस समय व्यक्ति इतना बिजी हो गया, उसके साथ कम से कम उसके साथ अपना टाइम व्यतीत करके अपना मनोरंजन भी ले सकता है, और फिर उसके साथ अपने मतलब जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, इसे मतलब रेडियो से कनेक्ट होते हैं, तो हमें हर जगह की जानकारी भी मिलती है। जैसे
0: वो तो
1: समाचार का आना, तो उनसे हमें हर पल की खबर मिलती है कि इस समय क्या चल रहा है हमारे देश में। इस डिजिटल युग में जी, रेडियो का जो स्थान है वो अभी जल्दी कोई भी चीज नहीं ले सकता सर, मेरी नजर में तो, क्योंकि क्या मैं तो इसे बचपन से सुन के आ रहा हूँ, तो मेरा तो बहुत लगाव है इससे।
0: जी
1: कि जैसे क्या है कि आज के दौर में एक व्यक्ति एक टेम्परेरी टाइप का होता जा रहा है, कि अगर वो डिजिटल ऐसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से वो सॉन्ग सुनता है तो उसे बड़ा जल्दी वो उसमें मजे तुरंत डिलीट के मतलब दूसरा लगाता है, लेकिन
0: हाँ
1: रेडियो पे जब आप कहीं पर ओल्ड सॉन्ग सुनेंगे तो उसमें आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है और उसे बाकायदा सुनते हैं। तो एक तो मुझे ये चीज लगा कि हम उसके साथ एक स्थायित्व प्राप्त करते हैं अपना, जिसमें हमेशा हमारे
0: जी, मतलब ज्ञान भी मिलता है, मनोरंजन मिलता है, और होता क्या सतेंद्र जी, जैसे सोशल मीडिया है तो मान लो वहां तो देखिए हम जो बोल रहे हैं वही चल रहा है, लेकिन
1: जी
0: रेडियो
1: जी
0: एक ऐसी जगह है
1: बिल्कुल
0: जहां हम बात भी कर पाते हैं, है ना? देखिए अभी भी आप बात ही कर रहे हैं एक तरीके से, रेडियो से बात हो रही, तो सोशल मीडिया तो ये है कि सामने हम कितना भी कर लें लेकिन वो चीज तो नहीं आएगी, है ना, जो
1: नहीं
0: अपनी एक
1: आएगी बिल्कुल।
0: भावना
1: मैंने
0: होती
1: कहा
0: है।
1: कि एक तो ये क्या कि सोशल मीडिया जो है वो हमारे ऊपर मतलब हम उसमें केंद्र है, कि हम जैसा
0: जी
1: चाहेंगे वैसा सुनेंगे, लेकिन वहां पर जब हम रेडियो सुनते तो उसमें हम सबको सुनते हैं, ये
0: और थोड़ा
1: चीज है।
0: संयम भी आता है, ये बात तो आपने सही
1: ये
0: कही, क्योंकि
1: बिल्कुल जी, मैंने कहा नहीं कि यहाँ पर हम अपनी चीजों, क्योंकि यहाँ पर हमारा अधिकार होता तो हम बड़े जल्दी से हर चीज को चेंज करना शुरू कर देते हैं।
0: जी, तो आप जैसे ये बताइए सतेंद्र जी, आप खुद एक युवा हैं और मेरी आपसे बात हुई, आप बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, और इसके अलावा अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना टीचिंग का काम भी करते हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, है ना?
1: जी
0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम युववाणी है जैसे आता है आकाशवाणी से और भी आकाशवाणी के तमाम केंद्रों से प्रसारित होता है, तो युवाओं के लिए खास तौर से सिर्फ हम जानना चाहेंगे कैसे आकाशवाणी काम कर रहा है, कैसे फायदेमंद है, आपको जो श्रोता सुनना है उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे खास तौर से युवा
1: नहीं,
0: वालों के लिए? जी
1: युवाणी के लिए मेरे तो लिए इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम उसमें डे टू डे एक मतलब प्रतिदिन एक नए शख्स से रूबरू होते हैं जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं,
0: जी
1: तो उनसे हम सीखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में किस तरीके से कार्य

0: किया और इस मुकाम को हासिल किया उन्होंने, तो वो हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक होता है। ज्ञानवर्धक के साथ वो हमें एक ऊर्जावान भी साबित होता है कि हम इनके अकॉर्ड इनके अनुसार उस रास्ते पर चलें कि इन्होंने जो फॉलो किया, जो जो चीजें अनुसरण की, उससे हम भी अपनाएं कि शायद उस मंजिल को हम भी प्राप्त कर सकें। तो विभिन्न प्रकार के हस्तियों से मिलवाना ये एक बहुत अच्छा काम है जो हम पूरी सोसाइटी के लिए एक
1: जी
0: रास्ता दिखा दिखाती है।
1: जी जी बिल्कुल। और एक चीज और भी है सत्यन जी, जैसे ये वाणी में बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं हमारे सेगमेंट, जैसे
0: हाँ
1: चक्रव्यूह भी होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, रोजगार
0: हाँ
1: समाचार भी हम बताते हैं, है ना जी।
0: बिल्कुल, ये चीज जैसे उसमें डेली एक क्वेश्चन एक प्रश्न पूछना, तो
1: जी
0: ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे जो जीके क्वेश्चंस उस पे भी बढ़ोतरी हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये चीजें हैं कि
1: हाँ
0: हर फील्ड में, और फिर जैसे युवा वाणी है और भी कार्यक्रम है उसमें, किसान वाणी में किसानों के लिए बहुत अच्छी ज्ञान की चीजें बताई जाती हैं,
1: जी
0: युवा वाणी में
1: जी
0: युवाओं से रिलेटेड चीजें हम रखते हैं। तो ये कहीं से हम लोगों को कनेक्ट भी कर रहे हैं और उन्हें उनके क्षेत्र की
1: जी
0: ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान भी दे रहे हैं।
1: हाँ। और ये है कि एक जो हमारे मतलब युवा है उनके लिए एक मंच भी मिलता है, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में, तो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर चुके हैं तो
0: जी जी
1: क्षेत्रीय एक
0: बिल्कुल,
1: पहचान
0: इस
1: भी मिलती है, ये भी
0: पहचान
1: काम
0: मिलती है।
1: है।
0: जी बिल्कुल,
1: जी। तो सतेंद्र जी, आप कुछ ये चलते चलते अपनी यादें कुछ बताना चाहें रेडियो की, कुछ किस तरीके से आपके लिए खास रहा है तो।
0: जी रेडियो पे जैसे मैंने आपको बताया था कि उस समय जब मैं बचपन में था तो मेरे दादाजी
1: जी
0: एक लोकगीत उस समय आता था, जिससे हम अक्सर जब वो आता तो हम अक्सर सुनने लगते थे कि क्योंकि मेरे दादाजी उस समय बचपन में हुक्का पीते थे, तो उस समय एक
1: अच्छा
0: लोकगीत आता था कि बलम मेरे हुक्का छोड़ो।
1: हाँ जी जी जी
0: तो इस लोकगीत को अक्सर हम जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, दादी जी या
1: जी
0: फिर मदर्स वगैरह इस चीज को सुनती थी क्योंकि उनमें यह आदत थी, तो हम इस चीज को बड़ा सुनते थे। तब से मुझे वैसे किसान वाड़ी और बाड़ी से बड़ा आकर्षण रहा मेरा। और उसके बाद जैसे कभी कभी लोकल में उस समय इतना वो नहीं, तो हम रेडियो पे क्रिकेट भी बहुत सुनते थे कभी।
1: हाँ उस समय बहुत आता
0: जी
1: था
0: जी
1: रेडियो,
0: और
1: अभी भी
0: बहुत
1: आता है।
0: एक
1: हाँ
0: अलग मतलब वो लगता था कि जब वो उस पे रेडियो पे हम सुनते थे उसकी।
1: ये बात तो आपने सही करी, क्योंकि पहले देखिए टीवी तो हमारे पास ऐसे तो होते नहीं थे, आप बचपन की बात बता रहे होगे और खास तौर
0: जी,
1: से कई समय का बता रहे होगे, तो उस समय टीवी इतना होते नहीं थे बड़े बड़े, और कई कई घरों में
0: और
1: टीवी थे
0: मतलब
1: भी नहीं।
0: मेरे
1: जी
0: मेरे मोहल्ले के कई जैसे जो शौकीन थे क्रिकेट को सुनने के, वो रात में भी हम लोग एक जगह रेडियो रखते थे और फिर चारों तरफ उसे घेर के बैठ जाते थे। तो बड़ा वो दिन
1: हाँ
0: आज भी हम याद करते हैं तो बड़ा वो लगता है कि हम मतलब क्या क्या चीज करते देखते थे हम बचपन में, हुआ करती थी हमारे साथ, जो अब शायद उन चीजों को नहीं देख पाते।
1: बिल्कुल, ये बात आपने सही करी। और ये एहसास है, जो यादें हैं वो हमारे साथ हैं रेडियो की, क्योंकि आपने बताया आपने बचपन से ही इसको जा रहे हैं तो रेडियो सुन रहे हैं, स्कूल जाते थे तो सुबह घर में रेडियो बज रहा
0: सुबह
1: है
0: सुबह
1: सुना।
0: मुझे एक जब मैं स्कूल जाता था तो
1: जी
0: उस समय एक लाइन जो आज भी मेरे जहन में इतनी अच्छी मुझे लगती है, उसमें एक प्रोग्राम आता था कि
1: जी
0: स्कूल से, तो उसमें एक टू मतलब एक एड आता था जिसमें बोला जाता था स्कूल चले हम
1: हाँ
0: सुबह।
1: स्कूल चले हम
0: ये
1: जी
0: लाइन मुझे इतना वो लगती थी, इतनी फीलिंग पैदा करती थी, कि कितना बेहतरीन वो टाइम था कि जब ये सॉन्ग बजता था तो बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: था उसमें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही करी। और ये जो चीजें हैं जो अक्सर लोग आज के समय में कहते हैं कि जो रेडियो है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है और अब रेडियो कोई सुन नहीं रहा है, इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए बातें हैं बताने के लिए हैं कि कहीं रेडियो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी आपके साथ है ना
0: बिल्कुल,
1: कब। जी
0: मैंने कहा
1: तो
0: नहीं कि अभी भी रेडियो की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीजें जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग चलने वाली हैं, जबकि रेडियो हमें सबके अनुसार चलने वाली चीज है।
1: बिल्कुल, और एक ये रहता है कि आज देखिए सोशल मीडिया है तो उसकी कोई सत्यता की प्रामाणिकता नहीं होती है कि क्या वो न्यूज़ सत्य है या नहीं है, या कोई खबर है या कोई अपडेट है, लेकिन जो रेडियो है खास तौर से आकाशवाणी है तो वहां पर जो भी कार्यक्रम है वो बिल्कुल तैयार ऐसे किए जाते हैं कि उसमें सटीकता रहे, है ना, ये चीज भी है।
0: जी
1: तो सत्येंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत हमें अच्छे से बताया। कुछ चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहें जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके लिए।
0: जी मैं तो यही कहूंगा कि रेडियो को मतलब आप जरूर वक्त दें जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि रेडियो से आपको जितने मतलब ज्ञान आपको मिल सकता है वो
1: जी
0: आपको अक्सर बाहर से आपको उतना नहीं मिल सकता,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये वो
1: बिल्कुल
0: नॉलेज है जो आपको फ्री में देता है आपको बिना चार्ज के।
1: सही बात है। और अब तो रेडियो खरीदने की जरूरत भी नहीं है, चलो पहले तो हम
0: जी
1: मान सकते
0: बिल्कुल,
1: थे
0: आप
1: कि रेडियो
0: फोन पे ही
1: खरीदना
0: आप
1: पड़ता
0: उस
1: था।
0: ऐप को डाउनलोड कीजिए और सुनिएगा आप उससे।
1: बिल्कुल, अब तो आपके मोबाइल में आपके रेडियो है, अगर मोबाइल में रेडियो के एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR डाउनलोड कर सकते हैं, और अब तो ऐसा हो गया कि आप कहीं भी सुन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि
0: कहीं भी
1: आपको
0: जी।
1: एक परिधि में रहने की जरूरत है कि आप बरेली को सुन रहे हैं तो बरेली में रहने की जरूरत है, अब तो आप बरेली से बाहर भी हो तो भी अपने मनपसंद कार्यक्रम सुन सकते हैं।

0: जी
1: तो सत्येंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने बताया कैसे आप बचपन से रेडियो सुन रहे हैं, आपने दादाजी का जिक्र किया, आपने स्कूल का जिक्र किया, जब आप स्कूल जाते थे तो आप गाने सुन के जाते थे स्कूल चले हम, और बहुत खास पल थे वो, बहुत खास एहसास थे, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी।
0: सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें स्टूडियो में बोलने का मौका दिया।
1: जी, धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।

दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यवाणी अपने दोस्त वैभव के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि आज क्या खास है। दोस्तों, हर साल 23 मई को पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फेस्टुला डे मनाया जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वैभव, ये आखिर ऑब्स्टेटिक फेस्टुला है क्या? तो श्रोताओ, सरल शब्दों में कहें तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है जो ज्यादातर महिलाओं में कठिन और लंबे प्रसव के दौरान होती है। जब श्रोताओं सही समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है, तब शरीर में अंदरूनी चोट लग जाती है, जिससे महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं इलाज और जागरूकता की कमी के कारण इस समस्या से जूझ रही है। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है युवा साथियों, ये सम्मान, जागरूकता और महिलाओं के अधिकारों का भी सवाल है। जरा सोचिए, एक माँ सिर्फ जीवन नहीं देती, वो पूरे परिवार की उम्मीद होती है और उसकी सेहत हम सबकी जिम्मेदारी। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात करें। गाँव हो या शहर, हर महिला तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर सही समय पर इलाज और जागरूकता मिले तो इस बीमारी को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे आसपास कितनी

इतनी महिलाएं ऐसी होंगी जो अपनी तकलीफ किसी से कह भी नहीं पाती। कई बार शर्म, डर या जानकारी की कमी उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जरूरी है कि हम संवेदनशील बने और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाएं, क्योंकि याद रखिए, जहां एक ओर इंसानियत की बात है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति भी हमें पुकार रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का दूसरा खास विषय देखते हैं। दोस्तों, हर साल 23 मई को एक और खास दिन होता है, वो है वर्ल्ड टर्टल डे, यानी कि टर्टल्स, जी हाँ, कछुए, यानी कि कछुए का आज का दिन खास है। श्रोताओ, वही कछुए जो धीमी चाल, शांत स्वभाव और लंबी उम्र वाले जीव होते हैं। ये हमारी धरती की जैव विविधता का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज दुनिया में कई प्रजातियों के कछुए विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। कारण क्या है? अरे कारण वही है, प्लास्टिक प्रदूषण, पानी का गंदा होना, जंगलों की कटाई और इंसानी लापरवाही। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक अक्सर कछुओं की जान ले लेता है। कई बार वे प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं। और धरती पर सिर्फ, कहते हैं ना कि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, हर उस जीव की है जो बिना शिकायत हमारे साथ इस दुनिया को साझा करता है। दोस्तों, कछुए सिर्फ एक जीव नहीं है बल्कि पर्यावरण संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। अगर ये खत्म हो गए तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, नदियों और तालाबों को साफ रख सकते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें और लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। अगर हम चाहें तो एक पोस्ट, एक वीडियो या एक छोटी सी जानकारी के जरिए हजारों लोग तक जागरूकता फैला सकते हैं। आज सिर्फ ट्रेंडिंग रील बनाना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी ट्रेंडिंग अवेयरनेस भी जरूरी होती है। और सच कहें तो नेचर को बचाना आज का सबसे बड़ा ट्रेंड होना चाहिए। जब समाज संवेदनशील होता है तब महिलाएं सुरक्षित होती है, और जब इंसान प्रकृति से प्यार करता है तब धरती खूबसूरत बनती है। दोस्तों, आज का ये दिन हमें दो बातें सिखाता है। पहला, इंसानियत का मतलब है हर महिला के सम्मान और स्वास्थ्य की रक्षा, और दूसरा, प्रकृति का मतलब है सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि हर छोटा बड़ा जीव। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में ये जो दो अहम बातें थी वो हमने शेयर करी। सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

होने लगी है। मौसम में अब तपिश तो रहेगी ही अब अगले कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक, तो हमें अपनी कमर कस लेनी है, हमें अपनी सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, और खास तौर से श्रोताओं अपना ध्यान तो रखेंगे ही, हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का भी ध्यान रखेंगे। बाकी हम आपका ध्यान रखते रहेंगे, ऐसी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। सुनते रहिए 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। बाय बाय, नमस्कार, टाटा।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 6:30 और 20 सेकंड हुए हैं। समय हो चला है किसान वाणी का।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आवो आवो कृष्णपाल भैया, राम राम।
2: राम राम हेडलपाल भैया, राम राम। और साथ ही साथ कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सब किसान भैया बहनों को भी हम दोनों भैया की
1: राम राम। कैसे हाल चाल है आपके
2: भैया? हाल चाल तो बढ़िया है, लेकिन देख रहे हो गर्मी भैया बहुत पड़ रही है।
1: वो तो भैया सबके लिए ही पड़ रही है, आपको का निराली है?
2: निराली ना है, लेकिन भैया ऐसी गर्मी में जो खेती बाड़ी काम है बहुत तो करनी पड़ रहा है। हमारे किसान भैया बहन है उन्हें काम करने पड़ रहा है, और जो हमने पशु पाले भैया उनकी भी बड़ा देखभाल करने पड़ रही, नहलवाने पड़ रहा है।
1: बिल्कुल भैया, दिन में 3 बार कम से कम नहलवाओ करो पशुओं के लिए। और बात रही आपकी गर्मी की, तो गाँव में पकड़ियाँ होंगी, नीम के वृक्ष होंगे, उनके नीचे खटिया डार और लेटो।
2: जब बात तो भैया सही कह रहे, देखो जो पकड़िया और आपने नीम की बात कही, तो भैया वहाँ पर हम तो खटिया की बात ना कर रहे हैं, हम तो भैया पल्ली बिछाते हैं और बाई पे अपने दोपहर में खाना उन्होंने खाओ और जाकर दोपहर ही भैया वहीं कटती है। और हमारे और जो भैया बहन हैं पास पड़ोस के भी, वो भैया अपने वहीं पर आए गए और वहीं अपने आराम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बतला रहे हैं एक दूसरे से।
1: बिल्कुल सही बात है। और खान पान में भैया दही की लस्सी है, बात पिए रहे हो और लू लगेगी ना?
2: दही की लस्सी है भैया, भैंसिया दूध दे रही है, मठा है, दही है और दूध तो है ही भैया, और देसी की चलिए रहो। और अब तो सतुआ जो है ना आपकी,
1: हाँ
2: तो बेहू भैया थोड़े से बनवा लाए उनको अपने भुजवाए के सही तरीका से बेहू को उकू मार देते हैं भैया।
1: तो फिर अब लू की बात ही खत्म है गई हैगी, तो हमारे जो भैया बहन है हमारी और आपकी बात को सुन रहे हैं, बेहू जरूर अपने आहार में सत्तू लेंगे और दही और मठा की लस्सी पियेंगे, तो लू से बचे रहेंगे। और आज ये बताओ कोई सवाल वगैरह लेके ना आए?
2: अरे हम तो जा तो बात भैया बहुत देर से सोच रहे हैं कि हेडलपाल भैया बात है करण लिख रहे हैं, और भैया जो झोला है जो लेके आए हैं हम देख रहे हैं ओंचा ओंचा सब रखो वो है, तो जो सवाल की बात की भैया, तो कहो तो अपने भैया बहनों के बीच रख दें निकाल के।
1: बिल्कुल भैया।
2: तो भैया बहनों देखो, आज जो सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं वो सवाल है, बरसात से पहले पशुओं को टीकाकरण कराना क्यों आवश्यक है?
1: तो सवाल को उत्तर हमारे जो भैया बहन है वो कार्यक्रम सुनने के साथ साथ तलाश के रखेंगे, और कार्यक्रम के अंत में हम मिलान करवा देंगे जैसे सवाल के उत्तर से। और ये बताओ भैया, एक योजना है ई नाम, जागो का मतलब है?
2: अरे भैया देखो, जो हमारी सरकार है हम ग्रामीण भैया बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजना चला रही है।
1: अच्छा।
2: जिन योजनाओं को लाभ लेकर हम अपने विकास कर रहे हैं, और जो योजनाएं हैं वे हमारी खेती बाड़ी में भी कारगर हैं, हमारे साथ जो गांव विकास के लिए हैं वो योजना चलाई जा रही है, तो उनमें हम अपने विकास कर रहे हैं, अपने परिवार को विकास कर रहे हैं। और जो आपने कही भैया ई नाम जो योजना आपने बताई भैया, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है भारत सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पहल है।
1: अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
2: हाँ भैया,
1: ये भारत सरकार द्वारा उत्पादों और यानी कि फसलों के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
2: हाँ भैया, और जामा

0: महिका की जो या कुछ मुख्य उद्देश्य है वो कृषि मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफार्म पर जोड़ना है ताकि किसान अपनी फसल यानी जो उपज है उनकी सीधे देश भर में खरीदारों को बेच सकें और उन्हें अपनी उपज को बेहतर दाम मिल सके। जाके साथ साथ भैया ऑनलाइन पारदर्शी बोली के माध्यम से किसानों को जो बिचौलिया होते हैं ना बीच में आ जाते हैं कि भैया ले कितू रहे बेच कितू में रहे जाए कर
1: समझ रहे हैं
0: तो
1: तुम्हारी बात
0: वो उनकी जो उचित जो उपज को लाभ होता है मूल्य होता है वो नहीं मिल पाते तो इस योजना के तहत उनको उपज को उचित मूल्य भी मिल जाए वो।
1: और दूसरी बात यह है कि किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे भावों की तुलना भी कर सकते हैं और अपनी फसल सबसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया, और बोली लगाने और भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होता है जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है। जाके साथ साथ ये योजना एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को निर्माण करता है। और जाके लिए भैया जैसे जो हमारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं कि हेटलपाल और कृष्णपाल भैया बता रहे हैं कि भैया इनाम योजना, तो देखो जाके लिए जो पात्रता के लिए जो दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड है, बैंक के खाते की पासबुक है, जमीन की जो खसरा खतौनी होता है उनकी जरूरत पड़ता है और पासपोर्ट जो साइज का जो फोटो होता है वो जो है वहाँ पे लगता है।
1: अच्छा, पंजीकरण कैसे कर सकते हैं?
0: देखो भैया पंजीकरण जाको जो लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप पंजीकरण करेंगे तभी जाको भैया लाभ ले सकते हैं। जाके जो वेबसाइट है ई नाम पोर्टल पर जाके सीधे अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हमारे किसान साथी कर सकते हैं और किसान इनाम मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी फसलों की कीमतों की जानकारी और व्यापार संबंधी कार्य हमारे किसान साथी कर सकते हैं।
1: और निकटवर्ती जो स्थानीय मंडी है अपनी, आप अपने स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति में जाकर के वहाँ के अधिकारियों से ई नाम पंजीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।
0: तो बड़ी कल्याणकारी योजना है क्योंकि हमारे किसान साथी अपनों पसीना बहा के अपने खेतों में फसल उगाते हैं और जो उपज उनको प्राप्त होती है तो दुख भैया उस समय होते हैं कि हमारे जब खेत में फसल आती है और हम सोच रहे हैं कि भाव अच्छे मिले लेकिन जो बिचौलिया होते हैं और वे भैया पौने के पौने भाव में ले चले जाते हैं तब बड़ा दुख होता है।
1: बिल्कुल सही बात है। कृष्ण भैया जे बताओ इन्हीं सब बातों में उलझे रहे हो, आज शनिवार को दिन भी तो है।
0: अरे अरे हेडल पालो ये हम समझ गए क्योंकि आज दिन है शनिवार को और किसान वाड़ी गांव में किसानों के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अपने किसी न किसी गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ के जो किसान भैया बहन है उनसे बातचीत करते हैं, गाँव के हालचाल जानते हैं, खेती बाड़ी कैसे हो रही है, पशुपालन कैसे हो रहा है, ये सब बातें होती हैं भैया।
1: तो चले किसी गांव की तरफ।
0: हाँ बिल्कुल भैया, तो जो आज गांव है वो गांव तो बताए दो, कौन से गांव में चल रहे हैं?
1: देखो भैया अभी कुछ पता ना है। अच्छा? हमारे भैया बहन कार्यक्रम सुने पता लग जाएगी कौन से गांव में हम पहुंच रहे हैं।
0: चलो भैया, लेकिन अपने भैया बहनों को बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की, तो आओ भैया बहनों चले गाँव की ओर।

0: किसान भाइयों, प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के लिए हम किसी न किसी गांव में पहुंचते हैं और वहां के जो अन्नदाता किसान भाई होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों के विषय में, उनके गांव के विषय में। तो आज भी हम एक गांव पहुंचे हैं और वो गांव कौन सा है, यहाँ पर हम जब निकल करके जा रहे हैं तो सड़क के किनारे एक गाँव है और यहाँ पर एक मंदिर है वो हमको दिखाई दिया और मंदिर के सामने ही एक बहुत ही अच्छा पाकड़ का पेड़ है जहाँ पर बहुत अच्छी घनी छांव है और जहाँ पर हमारे गांव के किसान भाई हैं, अन्नदाता किसान भाई हैं, वो इस तपती दोपहरी में जो लू है वो काफी गर्म चल रही है और ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं वो पाकड़ की छांव में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। कौन सा गाँव है ये?
1: किशन सिंहपुर।
0: ये कौन से ब्लॉक का गाँव है?
1: मझगवा।
0: कितनी दूर पड़ता है मझगवा?
1: लगभग 6 किलोमीटर।
0: अच्छा, ये जो रास्ता जा रहा है, ये रोड गुजर रहा है, ये कहाँ से कहाँ को जाता है?
1: ये गैनी से बरेली।
0: तो जाना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है?
1: रक्षपाल कश्यप।
0: जी क्या करते हैं?
1: खेती करते हैं सर।
0: कितने समय से खेती कर रहे होंगे?
1: लगभग कम से कम 15 साल से। मैं शादी हुई है, बालक किया है मेरे माँ बाप ने। हाँ। तब से मैं खेती करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो खेती में खास तौर से आप अपने गाँव में कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं?
1: गन्ना होता था पहले, अब गन्ना नहीं होता है
0: जी।
1: गेहूं, धान, अब की मक्का ज्यादा हुई है।
0: अच्छा, मक्का की खेती देखने में भी आया, इधर काफी मात्रा में लगी हुई है। तो ये बताइए, इस समय क्या काम धंधे चल रहे हैं आपके?
1: यही काम धंधे ये चल रहा है कि मक्का में दवाइयाँ लगा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: मगर सूढ़ी ज्यादा पैदा हो गई अभी मक्का में
0: जी। देखिए, जब गेहूं की फसल से खेत खाली होते हैं तो जो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारी अन्य फसलों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल तो कट जाती है, तो कीड़े मकोड़ों को तो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। इस कारण से जो

0: मक्का की फसल में इन दिनों कीड़े ज्यादा लगते हैं। अब ये जानना चाहेंगे आगे जो खेत खाली पड़े उनमें क्या करेंगे?
1: धान की खेती होगी।
0: अच्छा, तो धान की पौध डालने का समय तो आने वाला है
1: जी? लगभग कम से कम अभी तो 15 दिन मान के चलो, 15 दिन में पौध पड़ेगी।
0: अच्छा, तो कौन सा धान आप अपने खेतों में उगाते हैं?
1: हम तो BH21
0: जी
1: 999 खाने के लिए।
0: अच्छा,
1: ये धान हमारे ज्यादा ही होता है।
0: ज्यादा होते हैं तो मोटे धान भी करते हैं और बारीक धान भी।
1: हाँ,
0: तो अधिकतर पैदावार कौन से धान से ज्यादा मिलती है?
1: अब इस टाइम तो पैदावार हमारी
0: मोटे धान जो BH21 बता रहे हैं,
1: ये जहाँ 21 पैदावार अच्छी है
0: जी,
1: और 26 की पैदावार ज्यादा है
0: जी। अच्छी वैरायटियां हैं जो आप उगाते हैं। तो धान की पौध डालते समय आप खास तौर से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं?
1: वो तो हम तो पौध डालने से पहले उसको परहेते हैं खेत के लिए।
0: अच्छा।
1: फिर कीटनाशक दवा डालते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: उसमें जिसमें हमारा कीड़ा ना लगे।
0: हाँ, पौध में।
1: पौध में उसके जब हम तीसरे दिन जब लाते हैं तो घास की दवाई डालते हैं उसमें।
0: अच्छा,
1: फिर घास नहीं होती है।
0: तो जब पौध डालते हैं तो उस समय खेत किस तरीके से तैयार होता है?
1: पहले जोतते हैं उसे हम।
0: अच्छा,
1: जोतने के बाद में कम से कम एक हफ्ता बाद उसके लिए हम उसको परहते हैं दोबारा, कि जिससे कि उसमें सर्दी बनी रहे
0: जी,
1: जो लू चल रही है इस टाइम उसका लू का प्रकोप नहीं होता है उसको।
0: जी, खेत की कैसे माप करते हैं, कितने बीच में कितने खेत की पौध डालनी है?
1: 1 बीघा में 1 किलो पौध डालते हैं धान।
0: अच्छा,
1: 1 बीघा खेत के लिए 1 किलो धान की पौध डालते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, 10 अगर 10 किलो हमारा 10 बीघा खेत है, 2 से 10 किलो धान डालते हैं
0: पौध। तो जो जगह है वो कैसे निर्धारित करते हैं?
1: कम से कम 10 किलो धान हम 10 से खेत तैयार करते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: यानी 1 बीघा खेत के लिए 1 बिस्वा जमीन होनी चाहिए
1: जी,
0: है इस तरीके से खेत की आप माप करते हैं और उसके बाद धान की पौध डालते हैं। क्या जो बीज होता है उसको भी शोधन करते हैं
1: जी? उस पहले धान हम सामग्री बोते हैं, फिर उसमें सुबह को हम निचोड़ के
0: जी
1: उसको हम ढक देते हैं,
0: जबई
1: बना देते हैं। जब थोड़ा कल्ला होता है तो तीसरे दिन उसको हम खेत में डालते हैं
0: जी। बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, इसको कुछ हमारे किसान भाई हैं वो नमक के घोल में भी भिगोते हैं धान को?
1: नहीं सर, हमने नहीं भगोया, हम भगोते हैं।
0: हाँ, नमक के घोल में भिगोने से एक फायदा हो जाता है, वो ये होता है कि जो धान आपके हल्के होते हैं, खराब धान होते हैं, वो ऊपर तैर जाते हैं।
1: हाँ, तैर जाते हैं।
0: और जो अच्छे धान होंगे, अच्छे बीज होंगे, वो
1: जमीन नीचे बैठ जाते हैं,
0: तली में नीचे बैठ जाएंगे और उन्हीं की हमें पौध डालनी चाहिए। रक्षपाल जी, खेती के साथ पशुपालन करते हैं?
1: बिल्कुल करते हैं सर।
0: अच्छा, कौन कौन से पशु हैं?
1: इस टाइम हमारे पास 2 भैंस है, 1 भैंसा है।
0: अच्छा,
1: पड्डा
0: है। तो खेती के काम में क्या क्या लाभ मिलता है पशुपालन से?
1: उसको जो पहले हम जो गल्ला होता है, अनाज होता है हमारे खाने के लिए होता है, और उसको जो प्यार और भूसा होता है वो हमारे जानवरों के लिए खाने के लिए होता है, और उसका जो गोबर होता है फिर हम उसको खेत में डालते हैं, उसका हमें दूध मिलता है खाने के लिए, उसका घी भी मिलता है, मट्ठा भी उसका हमें खाने के लिए मिलता है,
0: और उसके बाद जो गोबर की सड़ी खाद है वो खेतों में
1: डाल देते हैं
0: जी। यही सबसे बड़ा फायदा है पशुपालन से
1: जी।
0: और कहते हैं गांव में पूछ नहीं तो कुछ नहीं है, तो पशु पालना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी?
1: सुविधा तो सर हम कुछ नहीं है, वैसे तो न हमारे गांव में वैसे डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर है
0: जी।
1: जब दुख तकलीफ होती है तो हम या सरकारी अस्पताल में जाएं मजंगवा
0: जी,
1: ज्यादा अगर गंभीर हालत है तो बरेली जाना पड़ता है
0: जी। रक्षपाल जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी जो सरकार है वो भी काफी अधिक प्रयासरत है कि हमारे किसान भाइयों का किसी न किसी तरीके से कल्याण हो, उनकी खेतीबाड़ी अच्छी हो, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। तो जैसे किसान सम्मान निधि की एक योजना है, उज्ज्वला योजना है जिसमें घर घर सिलेंडर भी मिलते हैं, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी सरकार ने करके दी है, सभी ग्रामवासियों के लिए घर में स्वच्छ शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब किसान भाइयों के लिए मकान भी मिले हैं। तो कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है?
1: हमें तो शौचालय का लाभ मिला था।
0: अच्छा, शौचालय घर में बना। अब पहले लोग बाहर जाते थे डिब्बा लेकर के, क्या आज भी जाते हैं?
1: नहीं, आज कम से कम 95% में से 5% लोग जाते हैं, 95% घर पे ही
0: इस्तेमाल करते हैं। तो फिर भी एक देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने, स्वच्छ सुलभ शौचालय घर घर बनवा करके, इसमें महिलाओं को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा फायदा
1: हुआ है।
0: रक्षपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमारी बातचीत हुई। और भी हमारे किसान साथी हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमसे भी कुछ ना कुछ पूछा जाए, और युवा किसान साथी हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से अपनी खेती बाड़ी कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका?
2: चिरौंजी लाल
0: जी, हमारी और आपकी कौन से गाँव में बातचीत हुई?
2: किशन सिंहपुर।
0: यहाँ से बरेली की दूरी क्या है?
2: 20 किलोमीटर।
0: अच्छा, तो विशेष ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जानना चाहेंगे क्या कर रहे हैं आजकल?
2: कुछ ना कर रहे हैं, खेती।

0: बाड़ी है छोटी मोटी।
1: अच्छा, तो खेती बाड़ी में क्या क्या फसलें उगा रहे हैं?
0: धान गेहूं।
1: अच्छा, क्या क्या साधन है आपके पास?
0: साधन कुछ ना है, बस ऐसी पैदल यात्रा है। कहा है
1: साधन की बात करें तो जैसे सिंचाई के हेतु पंप सेट है, खेती के लिए ट्रैक्टर है, डल्लब है ना?
0: हाँ, डल्लम वगैरह है, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल।
1: अच्छा, ये सारी चीजें हैं। तो खेती बाड़ी सही चल रही है?
0: हाँ, सब सही है, मालिक की दुआ है
1: जी। ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव में अधिकतर किस तरीके के लोग रहते हैं?
0: किसान लोग ज्यादा हैं।
1: किसान ही अधिकतर हैं? तो कितना बड़ा गांव होगा आपका?
0: गांव तो ज्यादा ना है, ऐसी बोट होंगे ज्यादा 1200 बोट है।
1: 1200, यानी लगभग 3-4 हजार की आबादी का गांव है, छोटा सा। तो ब्लाक अपना कहाँ लगता है?
0: मझगवा ब्लाक
1: लगता है। तो खेती बाड़ी के साथ साथ और कुछ धंधा करते हैं?
0: और खेती मजदूरी बाहर चले जाते हैं लोग
1: जी।
0: हाँ, वो भी करते हैं
1: जी। जानना चाहेंगे कि आपके जो पशु हैं बीमार हो जाते हैं, क्या करते हैं?
0: ब्लाक फोन करते हैं, सरकारी डॉक्टर के पास।
1: अच्छा,
0: आता है वो भी
1: जी। इस समय ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कि आने वाला समय भी बरसात का आ रहा है, और बरसात के दिनों में अधिकतर हमारे पशु हैं वो बीमार पड़ते हैं। गला घोंटू, खुरपका, मुंहपका, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं पशुओं को। तो ऐसे में इन दिनों में हमारे पशुपालकों के लिए टीके लगवाना चाहिए। क्या आपके गांव में टीके लग रहे हैं?
0: हाँ, लगते हैं। अच्छा, बीज कुछ लगते हैं।
1: कहाँ से आते हैं डॉक्टर साहब?
0: मझगवा ब्लाक से आते हैं
1: जी। तो ये बताइए, अगर आपके पास पशु हैं?
0: हाँ है।
1: टीके लगवाए उनको?
0: अभी नहीं लगे हैं, जल्दी में।
1: अच्छा, देखिए आप जल्दी से जल्दी चाहे तो आप डॉक्टर साहब को स्वयं बुलाइए, या फिर पशुओं को, अपने जो पशु हैं उनको ब्लाक लेकर के जाइए। व्यवस्था कीजिए कि आपके पशुओं को टीके लग जाएं, बीमारियां ना हों।
0: ठीक।
1: क्योंकि एक बार जब टीका लग जाता है तो लगभग 6 महीने तक पशु हमारे स्वस्थ रहते हैं। ये बताइए, खेती बाड़ी में क्या क्या फसलें हैं?
0: खेती बाड़ी में धान, गेहूं और छोटी मोटी मक्का चालू हो गई है यहाँ पुरानी
1: जी।
0: गन्ना तो हो ही नहीं रहा, खत्म हो गया।
1: अच्छा, हमारे जो किसान भाई है सब्जी वाली खेती नहीं करते?
0: नहीं, होती है, लौकी, तुरैया, सब चीज हो रही है।
1: अच्छा,
0: गोभी है
1: जी,
0: सब चीज हो रही है।
1: हम देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी तेज
1: है ना, और आपके काफी ग्रामवासी हैं जो एक पाकड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तो खास तौर से इन दिनों में हमें लू ना लगे, हम बीमार ना पड़े, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: या छाई पौड़े के नीचे बैठो
1: जी,
0: तरी में
1: जी। खान पान में क्या लें?
0: खान पान में अच्छी चीज खाओ, क्या है, लौकी, तुरैया है,
1: हरी सब्जी है।
0: हाँ।
1: ज्यादा से ज्यादा खाएं दही मट्ठा
0: जिसके पास है वही तो खाएगा दही मट्ठा।
1: देखा जाए ग्रामीण एरिया में तो लगभग सभी किसान भाई, हमारे अन्नदाता भाई, पशु पालते हैं, हैं? तो सबके यहाँ दही मट्ठा तो
0: होता है, पालना है उनके पास है
1: जी। चिरंजी लाल जी, देखिए आपके गांव में अधिकतर मैंने देखा जब आते हुए तो पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है आपके क्षेत्र में।
0: देहात में क्या पेड़ों की संख्या होना भी चाहिए
1: जी। और जब हम अपने खेतों पे पेड़ लगा देते हैं, चाहे वो यूकलिप्टस के हों, पॉपुलर के हों, या अन्य किसी तरीके के पौधे हों, एक मुश्त पैसा भी मिल जाता है।
0: हाँ, मिलता है,
1: हैं?
0: हो जाते हैं तैयार तो पैसा ही मिलता है
1: जी। आपने लगाए अपने खेतों पर
0: पौधे?
1: अच्छा, किस चीज के पौधे लगे?
0: लिप्सट के हैं।
1: अच्छा, यूकलिप्टस के पौधे लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या फायदा मिलता है पौधों को लगाने
0: इनमें? क्या 2-4 साल या 5 साल के बाद
1: जी,
0: अगर तुम्हारे 100 पौधे हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए मिल जाता है
1: जी। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए भी अपने खेतों पे पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है ना, और हमें भी एक मुश्त पैसा मिल जाता है। अच्छा, एक चीज हमें देखने में आ रही है, आजकल हम जब भी किसी गांव में जाते हैं, हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो रासायनिक खाद है, जैसे यूरिया है, DAP है, NPK है, इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ज्यादा इस्तेमाल करने से फायदा है या नुकसान?
0: नुकसान है इससे।
1: अच्छा, नुकसान है, क्या नुकसान है?
0: जो अपने पशु पालो की वो है उससे ज्यादा आराम,
1: देसी खाद होती है उससे ज्यादा फायदा,
0: उससे ज्यादा फायदा,
1: जो हमारी भूमि है उसकी उर्वरता भी गिरती है ना। चिरंजी लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने खेती बाड़ी के विषय में अपनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बुजुर्ग किसान साथी हमारे साथ में है, आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम है अपना?
2: मेरा नाम नन्नेलाल कश्यप।
1: नन्नेलाल कश्यप जी, हमारी आपकी कहाँ बातचीत हो रही है?
2: गांव किशन सिंहपुर गांव।
1: अच्छा, तो ये बताइए कितनी उम्र होगी अपनी?
2: हमारी उम्र है करीब 63 साल।
1: अच्छा, तो आपके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, पेंशन आ रही है?
2: पेंशन नहीं आ रही है अभी।
1: बनवाई नहीं आपने 60 साल?
2: 60 साल अभी, उसमें हमारी आधार कार्ड में उम्र 60 साल से 2 साल कम है।
1: अच्छा, यानी आधार कार्ड में थोड़ी उम्र कम है?
2: उसने गैप कर दिया उसमें।
1: जी जी जी जी। अब ये जानना चाहेंगे, किसान सम्मान निधि मिल रही है?
2: हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है।
1: कितने रुपए आते हैं?
2: 2000 रुपए, 4 महीने बाद।
1: यानी 500 रुपए महीना। तो ये बताइए किसान

0: निधि जो आपकी आ रही है उससे क्या फायदा मिलता है आपको?
1: अब यही फायदा मिलता है जब आ जाते हैं तो अपने खर्चा पानी खेती बाड़ी में लगाने के लिए कामयाब कर लेते हैं
0: जी। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा हमारे पास नहीं और खेती मांग रही है।
1: हाँ, मांग रही है तो
0: और आगे किसान सम्मान निधि
1: तो उसी से निकाला, तुरंत अपनी कामयाबी कर ली,
0: खेती बाड़ी परेशान नहीं रही। तो इससे समय पे पैसा मिल जाता है। अब अच्छा, पहले जमाने में किसान भाइयों के पास पैसा नहीं होता था, महाजन लोगों के पास जाते थे, अमीर लोगों के पास जाते थे, ब्याज पे पैसा लाते थे, हैं? पैसा ब्याज पे उठाते थे, उन लोगों के पास जाना
1: वहीं से कर्ज पे देते पैसा, उस जो बच्चों कुछ हो तो उन्हीं को दे दो, कुछ नहीं अगले बढ़ पाते,
0: कुछ नहीं बचता था, यानी कि उनको ब्याज ही खत्म ना होता। यहाँ तक कि लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते,
1: बहुत परेशान, इतने रहते परेशान कि आज तक घर बनाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते थे, शादी करने के लिए हर समय कर्ज में ही डूबे रहते थे
0: जी। अब उस चीज से छुटकारा मिलेगा।
1: हाँ, जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से बहुत सुधार हुआ है
0: जी। ये बात तो आपकी सही है, और विकास भी हुआ है,
1: विकास हुआ है, बहुत रोड बहुत बढ़िया, चैंपियन हो गया, कोई डर नहीं है
0: जी।
1: जानवर हमारे मैदान में बंधे हुए, कोई छूने वाला नहीं है
0: जी। अब ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना गांव, लगभग आप 63 साल की उम्र बता रहे हैं, तो 60 साल से तो होश में देखा
1: है। खूब खूब अच्छी तरह।
0: पहले कैसा था आपका गांव?
1: पहले गांव में बहुत बड़ी गरीबाई थी
0: जी,
1: मिट्टी की दीवारें थी
0: जी,
1: एक घर में आग लग जाती पूरा गांव भस्म हो जाता था।
0: हाँ।
1: आंधी आ जाती, खाना नहीं मिलता था
0: जी,
1: भूखे ही सोते थे
0: जी।
1: अब कोई दिक्कत नहीं है
0: जी। अब गांव की बात करें तो गांव में सड़कें कैसी हैं आपके?
1: सड़कें बहुत अच्छी हो रही हैं, और कमी जो है वो आगे बारे में सुधार में वो भी पूरी हो जाएगी
0: जी। बात करें गांव में, हमारे गांव वालों को कुछ सुविधाएं चाहिए।
1: हाँ।
0: जैसे पीने के लिए पानी।
1: हाँ।
0: रहने के लिए घर, और प्रकाश के लिए बिजली।
1: हाँ।
0: इन चीजों की सुविधा है यदि हमारे गाँव में है।
1: हाँ,
0: तो समझिए सब कुछ है। तो बात करें थोड़ी सी बिजली की, आपके गांव में बिजली है?
1: बिजली है,
0: आती है?
1: आती है।
0: कितने घंटे आती होगी लगभग?
1: अब लगभग आ रही है करीब 12-13 घंटा, ज्यादा नहीं आ रही
0: जी। पिछले दिनों बहुत तेज आंधी आई थी।
1: तब से रोटेशन बिगड़ गई है उसकी
0: जी। कुछ जगह लाइनें खराब हैं।
1: हाँ।
0: वो सही हो रही है।
1: हाँ।
0: उसके बाद बिजली जो है सुचारू रूप से आने लगेगी।
1: हाँ।
0: बात सही है। तो रूप से आने गाँव सब्जी, गेहूँ, बाजरा और कुछ हमारे किसान भाई सब्जी वाली फसलें, दोनों में अंतर क्या है?
1: अंतर ये है, हमारी गेहूं की धान की खेती की तोल है
0: जी,
1: पैसा, हाँ, आना, पैसा आना चालू हो गया, और किसी तरीका की हमें प्रॉब्लम नहीं है फिर
0: जी। थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा होती है।
1: मेहनत यार उसमें जा है, जिस दिन से लग जाते हैं जब तक खत्म नहीं होती उसमें लगे रहते हैं,
0: लगे रहते,
1: उसी में लगे रहते।
0: अच्छा, ये होना भी चाहिए।
1: हाँ।
0: फिर तो अगर हम ठलुआ रहेंगे तो आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर।
1: पैसा घर पर होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा भी होगा घर में, बच्चे भी परेशान रहेंगे, अपना भी दुखी रहेंगे।
0: अधिकतर गांव में हमने देखा है कि कुछ लोगों की मानसिकता होती है नशा आदि करने की।
1: हाँ हाँ।
0: है तो ऐसा तो गांव में नहीं है कुछ?
1: ऐसा हमारे गांव में मात्र एक आध कोई खास गांव, हमारा बहुत शुद्ध है इस बात,
0: सुलझा हुआ गांव। हाँ। है और शुद्ध गांव है। हाँ। इसमें लोग नशा आदि का सेवन नहीं करते।
1: हाँ।
0: बहुत बढ़िया बात है। और ये घर में केवल कलह के अलावा
1: हाँ,
0: और कुछ नहीं देते,
1: कुछ नहीं, कुछ नहीं
0: है ये, इसलिए हमें नशा आदि से तो बहुत दूर रहना चाहिए।
1: हमारी उम्र इतनी हुई, आज तक हमने किसी चीज की सेवन नहीं किया है नशे वाले।
0: नन्हेलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने गांव के विषय में बहुत सारी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बातचीत करते करते समय भी काफी हो चला है, और अब समय हो रहा है कि हम पुनः लौटे आकाशवाणी की ओर। तो इन्हीं सब बातों के साथ कभी ना कभी फिर आपके गांव में आएंगे, और सभी अन्नदाता किसान भाई से दोबारा से मुलाकात करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सभी किसान भाइयों को हमारी राम राम,
2: राम राम, राम राम, राम।
3: तो भैया बहनों, देखो अभी आप सुन रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में किसानों के साथ, और आज को हमारा सफर रहो जिला बरेली के विकास खंड मजगवा के गांव किशन सिंहपुर में, और जिसमें प्रतिभागी है रक्षपाल, चिरौंजी लाल और नन्हेलाल। प्रस्तुति सहयोग हो हेडलपाल सिंह और आपके भैया कृष्णपाल को, और प्रस्तुति ही गौरव सक्सेना जी की।
0: अब जी बताओ कृष्णपाल भैया, अब का सुनवा रहे हो?
3: अरे भैया आपने ऐसी बात कर दी, अब हमें यह लग रही है कि आप लोगों को मन जो है गौने बजने को कह रहे हो।
0: बिल्कुल सही बात है।
3: हुँ?
0: बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप सुन लेते जी मधुर लोग।
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया।

0: सरोता कहाँ भूले आए प्यारे नंदुइया।
1: बहुत ही मधुर लोकगीत सुनवाओ आपने।
0: बिल्कुल, और मधुर लोकगीत के संग संग हम तो यह देख रहे हैं कि भैया जो आप कह रहे हैं ना कि गौने बजने की वाली बात, तो थकान तो आपकी दूर होगी होगी।
1: बिल्कुल है गई। और कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल पूछो, अब भैया बहनों को बहू को मिलान करवा।
0: बिल्कुल, बारी आ चुकी तो सवाल हो, बरसात से पहले पशुओं को टीकाकरण कराना क्यों आवश्यक है?
1: तो भैया जवाब बता दें।
0: बिल्कुल भैया,
1: पशुओं में होने वाली संक्रामक जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचाव के लिए जो जैसे कि खुरपका है, मुंहपका है, गला घोटू है, इनसे बचाव हेतु जो टीकाकरण का अभियान है वो चलता है। वो इसलिए जो हमें अपने पशुओं को बरसात से पहले टीके लगवाने बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल भैया, और जब हम टीका लगवा लेंगे तो निश्चित है कि हम अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं। और बात करें भैया, देखो आज के कार्यक्रम की नसीहत की कि कार्यक्रम से हम सबको क्या नसीहत मिली, तो भैया कार्यक्रम से हम सबको जय नसीहत मिली कि जो किसान भाई हैं हमारे, लू देख रहे हो भैया, चलिए रहिए, गर्मी तेज पड़ी रही है, तो ऐसे में चलती लू में अपने साथ साथ जो अपने खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उनको भी भैया लू से बचावें और अपनी फसलों में पर्याप्त नमी बनाए के रखें।
1: और दूसरी बात यह है कि अपने जो पशु हैं उनके लिए भी बचा करके रखें। दिन में जब गर्म हवा चलती है तो ऐसे स्थान पर बांधें जहाँ हवा दीवार से रुक रही हो और वहाँ छाया हो।
0: बिल्कुल भैया, और जहाँ तक हमारे किसान भाइयों की बात है तो देखो अपने खेतों में हरी सब्जियाँ लगी हुई हैं, खीरा है, तुरई है, लौकी है, कदुआ है, जाके साथ साथ भैया फल खूब चल रहे हैं, तरबूज है, खरबूज है, जैसे फलन को इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों को इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक भैया पानी को प्रयोग करें।
1: हाँ, और शाम के

0: में जब खाना खाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद को सेवन करें, वहाँ में खीरा है, ककड़ी है, हरी मिर्च है, नींबू है, प्याज है।
1: बिल्कुल, और हम तो जय कहेंगे, देखो भैया टाइम तो ज़्यादा है ना, लेकिन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जो काम हैं उनमें व्यस्त रहें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में हम आपके बीच दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा
0: और अपने भैया हेडलपाल सिंह को देव अनुमति करो स्वीकार, हम दोनों की
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: एक बार फिर ज्ञान जगत कार्यक्रम में सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। किशोर भैया, आजकल आप एक बात जरूर देख रहे होंगे।
1: कौन सी भैया?
0: हमारे जो भैया बहन हैं गांव में खेती बाड़ी करते हैं, तो एक जो बात है वो जरूर आपने देखी होगी कि अपने खेतन में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं।
1: जब आप तो भैया सही कह रहे हो, क्योंकि अगर कहूँ बराबर में नथुलाल चाचा अपने खेत में खाद लगाया है तो शामलाल चाचो पीछे रहनवाए ना है।
0: बिल्कुल सही।
1: अरे नथू तो कल खाद लगाएगा, आओ चला जाओ कट्टा लेगा तुम्हू और तुम्हू जाएगा अपने खाद लगा के आओ।
0: बिल्कुल सही बात है। जामे खुद का है बर्बादी और अपने खेतन को नुकसान।
1: देखा दूनी अगर तुम लगा रहे हो खाद तो भैया पैसों जा रहे हो। जहाँ से बढ़िया है कि भैया मिट्टी की जाँच करा लो।
0: सबसे बढ़िया
1: कौन से पोषक तत्व की कमी है आपको खुद पता लग जाएगी। आप जरूरत ना है तू आप खेत में ले जाके डाल रहे हो। और जाई के पीछे भैया आपने देखी हुई, पहले आप देखते खेतन में तुतली खूब उड़ती, कछुआ होते, मेंढक होते, जो किसान मित्र जो कीड़े हैं वे आज देखने ही नहीं मिल रहा है।
0: वो जाई बात से देखने को ना मिल रहा है कि हमारे जो भैया बहन हैं वो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक जो दवाएं हैं उनको अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं।
1: और जाको कहीं ना कहीं प्रभाव भैया अपने शरीर पर पड़ रहा हुआ।
0: बिल्कुल भैया, आजकल औसतन आयु है वो भी हमारी और आपकी घटत जा रही है, साथ ही साथ विभिन्न तरीका की जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में पनप रही हैं।
1: तो आज हमें इस बात को गौर करने पड़ा है कि भैया जैसे हम पहले जैविक खेती करते हैं, खूब चना उगाते, लोबिया वगैरह सब खेतों में होते ही, तो आज भी हमें पहले की तरह ट्राली से डल्लब से ले जाएगा भैया देसी खाद अपने खेतों में डालनी पड़ेगी, जैविक खेती करनी पड़ेगी, तभी हमको शुद्ध उत्पादन मिल पाएगा।
0: अगर देसी खाद ना है तो हरी खाद अपने खेतों में उगा सकते हैं।
1: जैसे ढेंचा है, लोबिया है, पटसन है, जो अपने बो देते हैं पहले, वैसे भैया अब भी बोए कर और अपने खेतों में पलटाई करें।
0: अच्छा जी बताओ, आज कहूँ क्षेत्र भ्रमण के लिए ना गए
1: भैया? गए क्योंकि जो गांव में हम जाते हैं तो आपको मालूम है कि जो हमारी माताएं बहने हैं, भैया बहन है, ग्रामीण भैया बहन है, जो काम धंधो करते मिल जाते हैं भैया, तो उनसे हमारी बातचीत होती है। तो आज हम गांव है एक जिला बरेली को विकासखंड नवाबगंज को गांव है गरेम।
0: अच्छा
1: हाँ, वहाँ पर एक महिला उद्यमी है रेखा देवी।
0: अच्छा, क्या कर रही है?
1: अचार वगैरह बनाती हैं, जेली है, सॉस वगैरह ये बनाती हैं। तो वे भैया उनके पास पहुँचे तो बड़ो अच्छे लोगों उनसे भैया बातचीत करके कि भाई किस तरीके से बनाती हूँ, बता रहे हैं कि भैया जब ब्याह होकर आए तो लोग कहते हैं अरे जे तो जब का करती है इन काका बातें उनने सब बताई हैं।
0: अच्छा तो काका बात है भैया, आप सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल भैया जी, आपको नाम का है?
2: मेरा नाम रेखा।
1: जिस गाँव में हम बैठे हैं आपसे बातचीत हो रही है, कौन सा गाँव है? जो
2: जी हमारा गाँव है गरेम।
1: और जाकू ब्लाक कहाँ लगता है?
2: ब्लाक नवाबगंज जिला बरेली
1: जी। तो कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक भई है?
2: मैंने एमए कर रखो है।
1: अच्छा, आप तो गांव की बहू होंगी?
2: हाँ, इस गांव की बहू हूँ।
1: और मैको आपको कहाँ पे है?
2: मैको बोहरनंगला है।
1: अच्छा, तो शादी को लगभग कितने साल हो चुकी हुई?
2: शादी को 13 साल हो गई, 14 साल 5 मई से लग गई।
1: अच्छा अच्छा, जो बताओ 13 साल पहले आप जगाओं में आई बहू
2: जी
1: के रूप में, तो उस समय जो गांव कैसे हो?
2: इस गांव में पहले से आज में बहुत अंतर है। पहले हम लोग गांव में महिलाएं डर डर के मतलब निकलते थे, बाहर निकलना नहीं। शुरू शुरू में हमें भी दिक्कत थी, जब हम घर से बाहर निकले तो सब लोग गांव के तरह तरह की बातें करना कि बहू होके ये सब काम, लेकिन मैंने उन सब की परवाह ना कर करके अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ खेती में भी हाथ

0: हटाया और अपने घर पे अपना मतलब छोटा छोटा काम में, एक काम से कोई हो नहीं सकता आज की महंगाई में कुछ भी।
1: जी जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने अपने पति के साथ में खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। और हमने आपके बारे में सुनी कि एक आप महिला उद्यमी हैं और घर पे आप डिटर्जेंट, हैंड वॉश और अचार, मुरब्बा, सॉस, ये चीजें बनाती हैं।
0: हाँ, बनाती हूँ।
1: अच्छा, तो अगर हम बात करें अचार की, तो अचार आप किस किस चीज को बनाती हैं?
0: अचार नींबू का, आम का मिक्स।
1: अच्छा, और काय काय चीज के अचार बनाती हैं?
0: नींबू का बनाते हैं, आम का, हरी मिर्च, लाल मिर्च, मुरब्बा, जैम, जेली, जैसे अमरूद है, घर पे पेड़ है अमरूद है तो उसकी जेली बना ली, और सॉस, टमाटो सॉस, जैसे टमाटर ज्यादा हैं और सस्ते होते हैं तो हम सॉस भी बना लेते हैं, क्योंकि जब 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, हम उसको 100 रुपए किलो में बेचेंगे तो हमारे लिए उसमें कितना मुनाफा होता है, इसलिए। और हमारी सब्जी भी मतलब सुरक्षित रहती है।
1: लेकिन ये बताओ रेखा रानी, जो आप बनाती हैं, सॉस बनाती हैं, अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं, जेली बता रही हैं, आप बता रही हैं, तो ये सब कुछ आपने सीखो कहाँ से, कैसे समझ में आई आपके कि साहब हम ये काम करें?
0: जे हमने पहले तो एक समूह का गठन किया था सन 2015 में, तो उसके माध्यम से हमें लगा कि समूह बनाने के बाद हम घर पे खाली बैठे हैं, दो पैसे का कोई काम नहीं इससे जुड़ने के बाद हम कुछ करें, तो दिमाग में आया। फिर हमारी कृषि विज्ञान केंद्र IVRI वहाँ के वैज्ञानिकों से जान पहचान हुई, वो हमारे गांव में आए ऐसी।
1: अच्छा,
0: तो उन लोगों ने हमें निशुल्क यहाँ से ट्रेनिंग दिलाई।
1: अच्छा, प्रशिक्षण मिला आपके लिए?
0: प्रशिक्षण उन्हीं ने सिखाया हमें।
1: अच्छा अच्छा,
0: वहीं पे हम सब प्रशिक्षण सीखे, अचार बनाना, डिटर्जेंट बनाना, हैंड वॉश बनाना। वो लोग भी हमारी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करते हैं, विशेषज्ञ वहाँ के बहुत अच्छे हैं।
1: जी, इन्हें जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी मदद करते रहते हैं?
0: बहुत मदद करते हैं।
1: आपके पास उनके मोबाइल नंबर भी होंगे?
0: हाँ।
1: जब कोई समस्या आती होगी आप उनके लिए फोन कर लेते होंगे?
0: हाँ,
1: और वो आपको बता देते हैं?
0: बता देते हैं।
1: तो उन्होंने आपकी अचार बनाने में, सॉस बनाने में, जेली बनाने में पूरी मदद करी है?
0: बनाने में, और मोमबत्तियाँ भी।
1: अच्छा,
0: मोमबत्तियाँ भी बनाती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, मोमबत्ती बनाती हैं।
0: हाँ।
1: तो जैसे दीपावली का समय होता है, उस समय मोमबत्ती काफी खपत होती है?
0: हाँ, 1.5 से 2 क्विंटल तक की सेलिंग कर देती हूँ मैं अकेले अपने आप बना के।
1: अच्छा,
0: खुद? हाँ।
1: चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो कुछ बताओ रेखा रानी, मोमबत्ती जो बनाती है वो कैसे बनाती है, क्या करने पड़ता है?
0: मोमबत्ती के फरमा आते हैं और मोम मिलता है बरेली, तो वहीं से मंगाना पड़ता है हमारे लिए।
1: यानी कच्चा माल आपको बरेली से आता है?
0: बरेली से। हाँ, 450 रुपए से काम किया तो उसमें मैंने 1600 रुपए कमाए, मुझे अच्छा लगा।
1: 450 की लागत लगाई आपने
0: और 1600 रुपए की मेरी बचत हुई।
1: अच्छा अच्छा,
0: लागत निकाल के,
1: लागत अलग निकाल दी, 1600 रुपए की आपकी बचत हुई।
0: हाँ।
1: अच्छा, फिर वहाँ से आपको उत्साह बड़ो हुए कि भी बचत सही है?
0: बचत अच्छी है, काम कर मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो मैंने फिर दोबारा फिर बनाई अगली साल। अब तो ऐसा है कि हमेशा ये नहीं कि केवल सीजनली बाय सीजनली काम करें, हमेशा बना के रखते हैं, क्योंकि कभी भी सबको पता है तो सब यहाँ पर आके ले जाते हैं।
1: क्योंकि आप अब काफी समय से ये काम कर रही हैं और अचार बना रही हैं, मुरब्बा है, जेली है, डिटर्जेंट है, तो जी आप बना रही हैं, तो अब जो लोग हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं और आपके घर से ही माल उठा के ले चले जाते हैं, आपको कहीं बाहर ले जाने की जरूरत
0: नहीं
1: पड़ती?
0: मुझे नहीं
1: है?
0: ना।
1: तो ये तो बढ़िया बात है।
0: और वहाँ के वैज्ञानिकों ने नेपियर, एक हरा चारा होता है जानवर,
1: नेपियर घास होती है,
0: मैं जानवर भी पालती हूँ, 10,000 रुपए की कटिंग अपने आप से, सिर्फ 1 बीघा खेते में नेपियर लगा के रखी, 10,000 की नेपियर कटिंग वहाँ भेजी मैंने
1: अपने यहाँ से।
0: अपने यहाँ से।
1: अच्छा, तो उससे भी अच्छा फायदा?
0: बहुत बहुत अच्छा।
1: तो देखिए, आप एक जागरूक महिला हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आप काम कर रही हैं, एक उद्यमी महिला हैं, और आप खुद बता रही हैं कि आपने जो यहाँ से जो नेपियर घास है उसको भी एटा भेजो और वहाँ से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इसके साथ साथ आप जो है घर पे जो अपने जेली है, सॉस है, इसका उत्पादन करती हैं, इसको बनाती हैं, और जो फल संरक्षण है उनका भी संरक्षण करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जोखिम रहता है कि साहब अरे हम पैसा लगा रहे हैं, जैसे अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, किसी कारणवश अगर बिक्री ना हो पा रहा हो, ऐसे भी कभी मन में ख्याल आता है?
0: हाँ, ख्याल आता है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। जितना भी काम मैंने मतलब किया है मन लगा के कि मैंने अचार इतना, मान लो 50 किलो अचार मैंने मिक्स डाला और 50 किलो मिर्च डाला, सोचते हैं हो सकता कहीं नहीं बिक पाया तो क्या करेंगे, लेकिन बिक जाता है, फिर पूरे साल में और बिक जाता है, कम भी पड़ जाता है जो भी बनाते हैं।
1: तो मतलब बिक्री की कोई दिक्कत
0: नहीं आती है मुझे।
1: अच्छा, हमने कई बार ये देखी है कि जो अचार डालते हैं घर में जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनमें कभी कभी फफूंदी ऐसी आ जाती है।
0: हाँ, फफूंदी आ
1: लेकिन
0: जाती।
1: आप कैसे सुरक्षित रखती हैं अचार के लिए?
0: हम तो सर, हम इसमें कोई रोक वाला मसाला हो या कुछ नहीं डालते, तेल भी ज्यादा नहीं डालते।

0: जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्वाद क्या है और मार्केट में जो बिकता है उसका स्वाद क्या है
1: जी।
0: क्योंकि एक घर वाले में और एक बाहर से बहुत अंतर होता है। हमारा अचार खराब नहीं होता है। सबसे मेन बात यह है कि सबसे पहले गर्म पानी उबालने के बाद हम उसे हल्का धूप दिखा देते हैं बस। अच्छा। उसके बाद नमक मिला के कम से कम 2 से 3 दिन ऐसे ही रख देते हैं, फिर मसाला डालते हैं, तो पूरी साल अचार खराब ही नहीं होता है
1: जी। आप बता रहे हैं कि इसके साथ साथ आप खेती बाड़ी में भी सहयोग करती हैं। हाँ। तो कुछ जो समय निकलते हुए तो खेत में जाती होंगी आप। फसलें क्या क्या लगाए रखी है खेत में?
0: इस समय हमारे पास काली तरोई, लौकी, खीरा, करेला लगा रखे हैं
1: जी। तो खेती बाड़ी काम धंधे आप करते होंगे, निराई गुड़ाई काम है।
0: निराई गुड़ाई, हाँ।
1: खाद पानी अपने बाम लगाने।
0: हाँ, हाँ।
1: अच्छा, जब आप खेतों पे जाते होंगे तो जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं कि अरे साहब जी मोहल्ला की बहू है, गांव की बहू है, जी खेत पे जा रही हैं, इस तरीके की बातें होती है?
0: हाँ, कहते हैं, लेकिन हम उन लोगों की परवाह नहीं करते। हमें अपने काम से काम है बस
1: जी।
0: हम अपना टाइम निकाल के अपनी खेती का काम करते हैं
1: जी। पति जो आपके हैं आपको पूरा सहयोग करते हैं?
0: हाँ, वो पूरा सहयोग करते हैं हमारे।
1: जैसे आपको अचार बनाने हैं तो कभी आम काटने भी पड़ते होंगे, है ना, मिर्च की सफाई भी करने पड़ती होगी।
0: हाँ।
1: तो वो भी सहयोग करते होंगे?
0: सहयोग करते हैं, बच्चे भी साथ में लग जाते हैं दोनों।
1: तो खेती बाड़ी भी आप कर रही हैं और आप जो है एक उद्यमी के रूप में जो है ये प्रोडक्ट अपने तैयार कर रही हैं और बिक्री कर रही हैं, एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रही हैं। उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो हमारी और माताएं बहनें हैं आपकी तरह अपने स्वयं पर निर्भर हों। रेखा रानी जी, आपसे बातचीत भई और आपने बहुत सारी बातें हमें और हमारे सुनने वाले सभी साथियों को बताई हैं, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वास्तव में किश्वर भैया, रेखा रानी बहुत अच्छी उद्यमी हैं, अपने खेतों पे भी बहुत सारी चीज़ें इनकम की लगा रखी हैं और साथ ही साथ जो घर पर अचार बनाने का काम है वो भी अच्छे चल रहा है वो। और ऐसे ही जो महिलाएं हैं उनको कोई ना कोई उद्यम जरूर करना चाहिए।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कृष्णा भैया, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पर स्टूडियो में भी देखो काफी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है हम देख रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और गर्मी को तो मौसम है, लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है भैया। देखी हुई कि ऐसी गर्मी में भैया जो हमारे कुछ भैया बहनों शिमला निकल जाते हैं, कुछ भैया नैनीताल निकल गए, कुछ श्रीनगर निकल गए। भैया
2: आपको कहने मतलब का है?
1: अरे भैया एक ऐसी गीत है।
2: अच्छा,
1: तो आप सुन रहे हैं?

0: बहुत ही मधुर लोकगीत सुनवाओ आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, मर गई गर्मी से ले चल शिमले बाबू। तो अब बताओ गर्मी कुछ कम भाई?
0: देखो भैया गर्मी तो खैर कम ना है भाई, लेकिन कुछ पेय पदार्थ पियेंगे या बाहर चल गए तभी गर्मी कम होगी, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है कार्यक्रम।
1: हाँ बिल्कुल भैया, तो अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ अपने भैया बहनों से फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णपाल
0: और अपने भैया हेडलपाल सिंह को देवोन्नति करो स्वीकार। हम दोनों की राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। खोए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं राहुल पुत्र पप्पू, आप गुलाबबाग कस्बा थाना बिसौली जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 4 इंच, ये हिंदी भाषा जानते हैं। इकहरा जिस्म, चेहरा लंबा व रंग गेहुआ है। ये 16 मार्च 2026 से लापता हैं। इन्होंने सफेद टी शर्ट पजामा पहना हुआ है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। इसी क्रम में ये नाम है बिमलेश पुत्र अनगपाल का। आप कस्बा थाना उसावा जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 6 इंच, ये हिंदी भाषा जानते हैं। इकहरा जिस्म, गोल चेहरा व रंग गेहुआ है। इन्होंने लाल शर्ट व नीली जीन्स पहनी हुई है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। समय मिला ये 7:17 और 42 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर

0: बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
1: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:31 हुए हैं। लीजिए अब प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन प्रस्तुत है।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
5: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच।
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर। थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
4: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD।
2: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
7: श्रोताओं।

0: आप सभी को और पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
1: जी डॉक्टर साहब, और आज हम बात करेंगे समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के बारे में, उनकी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी बात करेंगे, साथ ही जो गंभीर बीमारियों के इलाज में वेंटिलेटर और मशीनों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में भी आपसे जरूर जानेंगे
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे किसी श्रोता की फोन कॉल आए, देखिए कॉल आने की बात हम कर रहे थे और कॉल आ गई है, इनकी समस्या सुन लीजिए।
0: हेलो
2: हेलो, आकाशवाणी बरेली।
0: यस,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या नाम है, कहाँ से फोन किया है?
2: हम मुन्ना लाल बोल रहे हैं, ग्राम डाकपुर, जिला बरेली से।
1: जी बताइए मुन्ना लाल जी, आज क्या प्रश्न पूछने वाले हैं आप? डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ।
2: सर हमारा एक बच्चा है जो कि अभी 7 माह का पैदा हुआ है बच्चा
0: जी,
2: जिसका वजन 1 किलो 600 ग्राम है, जो कि माँ का दूध फेंकने में असमर्थ है
0: जी,
2: और बच्चे की पतली भी तेज चल रही है, सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, दूध पी नहीं पा रहा है, बुखार भी लग रहा है उसको, तो हम क्या कर सकते हैं सर?
0: कितने दिन का बच्चा है पहले ये बताइए?
2: 7 माह का बच्चा है।
0: 7 माह का मतलब पैदा हुआ था, और आज पैदा हुए कितने दिन हो गए उसको?
2: अभी तो बच्चे को 2 दिन ही हुए।
0: और 2 दिन में क्या क्या परेशानी आना शुरू हुई?
2: एक तो बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है
0: जी,
2: बच्चा तिना रहा है और सांस भी तेज चल रही है और पैर उसके नीले पड़ रहे हैं।
0: अच्छा, ये किनाना कब शुरू किया उसने? पैदा होने के कितनी देर बाद किनाना शुरू किया था?
2: पैदा होने के करीब 1 घंटे के बाद किनाना शुरू कर दिया बच्चे ने।
0: अच्छा, और ये बताइए बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, ऑपरेशन से पैदा हुआ है?
2: बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था, मगर टाइम लगा था पैदा होने में बच्चे को।
0: देखिए जैसे मुन्नालाल आपने बताया कि आपके बच्चे को इसको पैदा होने में समय लगा और बच्चे ने किनाना शुरू कर दिया, तो देखिए जो समय से पूर्व बच्चे पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है उनको जो अक्सर परेशानियां होती हैं, वो एक तो ये कि ये बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो इनके लंग्स भी प्रीमेच्योर होते हैं, मतलब लंग्स भी उतने डेवलप नहीं हो पाते जितने नॉर्मल डेवलप होने चाहिए, तो कई बार इन बच्चों में सर्फेक्टेंट की कमी होती है जिसकी वजह से सांस लेने में बच्चों को परेशानी होती है, बच्चों की पसली चलने लगती है और बच्चा किनाना शुरू करता है। दूसरी तकलीफ होती है इनमें बच्चों में सेप्सिस, सेप्सिस में ये कि बच्चे को बुखार आना शुरू करता है, बच्चा किनाना शुरू करता है, दूध कम पीता है, दूध नहीं पी पाता है, बच्चा नीला पड़ने लगता है, कई बार उसको दौरे पड़ने लगते हैं और बच्चे का पेट फूलने लगता है या बच्चा दूध नहीं पी पाता। जो बच्चे समय से पूर्व पैदा होते हैं उनको अक्सर दूध पीने में परेशानी होती है क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो माँ का दूध खींच पाए और माँ का दूध पी पाए, तो जो बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं उनको कई बार नली से दूध पिलाना पड़ता है, और जैसे बताया आपने आपके बच्चे को सांस में तकलीफ है, तो इस बच्चे को हो सकता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो, और या फिर ये कि उसको कंजेनाइटल निमोनिया हो, या तीसरी चीज ये कि बच्चे को सेप्सिस हो रही हो जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, तो इन बच्चों के इलाज के लिए जरूरी है कि आप ऐसी सेंटर पे इलाज कराएं जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि वेंटिलेटर है, एबीजी है और आपका इन्फ्यूजन पंप्स हो, अवेलेबल हो, और अगर सर्फेक्टेंट की कमी है तो उसको सर्फेक्टेंट डालना पड़ सकता है बच्चे को, और स्पेशली इस माँ को ये बताइए, ये किसी लेडी डॉक्टर को दिखा रहे थे तो अब एंटीनेटल स्टीरॉइड यानी डेक्सोना या बीटामेथासोन इंजेक्शन माँ को लगे हैं, अगर जैसे माँ को एंटीनेटल स्टीरॉइड लगे हुए होते हैं तो उन बच्चों में हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज की जो इंसिडेंस है, जो चांस है वो कम हो जाता है। इंजेक्शन नहीं लगे तो आप इस बच्चे को तुरंत दिखाइए एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, और जहाँ पे कि इसके इलाज की सारी सुविधाएं हो, NICU हो जहाँ पे इनका इलाज किया जा सके।
1: और कोई प्रश्न है मुन्ना लाल जी आपका? जी धन्यवाद फोन करने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बात आप हमारे श्रोताओं के लिए उठाते हैं जो हमेशा ही कुछ न कुछ अर्थ होता है उसका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए,
2: हमारा भी आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही और बहुत ऐसी समस्या उठाई जो कई बार होती है बच्चों के साथ और समझ नहीं पाते माता पिता, उसके बाद पछताना पड़ता है। आपने भी डॉक्टर साहब कहा कि हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है, कुछ इंजेक्शन की बात की, थोड़ा स्पष्ट कीजिए ताकि हमारे श्रोता समझ पाए कि क्या कहना चाह रहे थे आप, कौन से वो इंजेक्शन है जो माता को अगर लग जाए तो उस बीमारी की संभावना कम हो जाती है?
0: जो गायनकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो लेडी डॉक्टर है, उसके ट्रीटमेंट में अगर माँ है और उनको ये लगता है कि इस माँ की डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, समय से पूर्व ये बच्चा पैदा हो सकता है, तो एंटीनेटल स्टीरॉयड इन माँ को लगाया जाता है जिसमें कि इंजेक्शन डेक्सोना लगता है माँ को, और वो आप अपने लेडी डॉक्टर से बात करके ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसके कई फायदे हैं, जिसमें से एक फायदा ये है कि हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होने के चांस कम हो जाते हैं, दूसरा आपका और परेशानियां जैसे कि नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस है।

0: या और इस तरह की जो परेशानी है वो भी कम हो जाती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है उसके भी चांस कम हो जाते हैं।
1: जी जी जी, यानी जो डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन इंजेक्शन है
0: जी,
1: ये खास परिस्थितियों में यदि गर्भवती माता को लग जाते हैं
0: जी,
1: तो बच्चों की कई बीमारियों से रक्षा हो जाती है।
0: हाँ, नवजात शिशु की कुछ बीमारियों से,
1: कुछ बीमारियां हैं बचाव हो जाता है।
0: तो अगर लेडी डॉक्टर को या मतलब जो माँ का इलाज कर रही है डॉक्टर, वो अगर एंटीनेटल स्टेरॉइड, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर जो हम एंटीनेटल स्टेरॉइड यूज करते हैं वो डेक्सोना यूज करते हैं, क्योंकि बेटनिसोल का वो सॉल्ट जो कि यूज किया जाना चाहिए, जो कि एक्चुअली अगर ट्रीटिंग डॉक्टर को ये पता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो माँ को डॉक्टर इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिसके एंटीनेटल स्टेरॉइड, जिसमें कि डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन इंजेक्शन, इनमें से कोई एक इंजेक्शन माँ को लगता है
1: जी।
0: और उसका एक कोर्स है, उस कोर्स को पूरा किया जाता है। हिंदुस्तान में अक्सर जो हम लोग यूज करते हैं वो डेक्सामेथासोन यूज करते हैं, क्योंकि बीटामेथासोन का वो सॉल्ट जो कि लगाया जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो ट्रीटिंग डॉक्टर माँ को एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी डेक्सोना या डेक्सामेथासोन लगा।
1: तो ये डॉक्टर को ही तय करना है कि किस परिस्थिति में लगाना है और कितना लगाना है।
0: अगर हाँ डॉक्टर ये उसको ये लग रहा है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो जाएगा और इसको परेशानी हो सकती है, खासतौर से अगर 27 वीक्स या 34 की वीक्स गर्भ काल का जो पीरियड है उसमें अगर डिलीवरी होने के चांस हैं, तो ये माँ को इंजेक्शन लगाने से कई फायदे मिल जाते हैं, जिसमें कि IVH यानी इंट्राव्रेनल हेमरेज कम होता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कम होती है, और सबसे बड़ी चीज जो है हाइलाइन मेमरी डिजीज, जिसको कि अब न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, उसके होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे श्रोताओं को ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इलाज वाली बात आपने बताई है, बड़ा सोच समझ कर कराना है। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। बात डॉक्टर साहब आज की ये है कि जो समय से पूर्व बच्चे पैदा होते हैं उनकी समस्याएं हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी हो सकते हैं, इलाज जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब, समय से पूर्व पैदा होने का क्या तात्पर्य है, और जो बच्चे समय से पूर्व पैदा हो रहे हैं उनमें किस तरह की समस्याएं होती हैं?
0: ये समय से पूर्व पैदा होने का तात्पर्य, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो 37 वीक्स के बाद होती है
1: जी, जी।
0: तो अगर 37 वीक्स से पहले बच्चा पैदा हो रहा है तो वो समय से पूर्व पैदा हुआ।
1: हम अपनी बात जारी रखेंगे, एक और श्रोता लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी समस्या सुन लेते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
2: मैं योगेंद्र सिंह गंगवार
1: जी,
2: CSC कुआडांडा से बोल रहा हूँ
1: जी। क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है कि सर, जो समय से पहले के बच्चे होते हैं
1: जी,
2: क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
1: डॉक्टर साहब प्रश्न इनका बार फिर वही है, क्या समस्याएं आ सकती हैं?
0: देखिए, समय से पूर्व जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें देखिए परेशानियां जो आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि हमारा जो समय से पूर्व बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, जो ऑर्गन्स इतने बन जाने चाहिए थे कि, लेकिन वो समय से पूर्व बच्चा पैदा हो गया तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरह की बीमारियां आती हैं। जैसे कि अगर सांस में बच्चे को परेशानी होती है तो सबसे कॉमन बीमारी है जो, जैसे कि अभी मुन्नालाल जी ने पूछा था, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, जिसको कि हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें सर्फेक्टेंट एक सब्सटेंस होता है जो लंग्स में कम होता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उस सर्फेक्टेंट आप बाहर से बच्चे के फेफड़ों में डाल सकते हैं। दूसरी जो परेशानी आती है वो बच्चों की, कई बार जब बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने के चांस बहुत होते हैं। तीसरी जो परेशानी आती है इन बच्चों को, इनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, तो इनको सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। चौथी चीज जो है कि ये बच्चे टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये मशीनों में रखे जाते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर है या कुछ जैसे और मशीन है जिनको कि ओमनी बेड या जिराफ बोलते हैं, जिसमें कि डुअल पर्पस कर सकते हैं आप, एज ए ओपन सिस्टम यूज कर सकते हैं और क्लोज सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो और इसी तरह से उनके हाथों की दिक्कतें आती हैं, दूध पचाने में परेशानी आती है। दूसरा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइट, वो होने का बहुत डर रहता है। चौथी चीज, इन बच्चों को कई बार जब ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94-95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेचुरेशन लेवल आप 88 से और 94 के बीच में मेंटेन करना चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन देने पर इन बच्चों को आरओपी होने का डर रहता है। आरओपी बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। आरओपी में बच्चे के जो विजन है, जो आंखों की देखने की ताकत है, वो कम हो सकती है या देखने की ताकत जा सकती है। तो आरओपी हुआ, IVH हुआ, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हुआ,

0: आइलैंड मेम्ब्रेन डिजीज हुई या फिर सेप्सिस हुई, और लास्ट में ये कि कई बार इनको गुर्दे भी इनके मेच्योर नहीं होते तो गुर्दे भी कम काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती
1: जी,
0: है।
1: और कोई प्रश्न है आपका?
2: और सर जी, हमारा जो बच्चे जैसे हैं फॉलोअप में सर क्या देखना चाहिए?
0: फॉलोअप में देखिए, बच्चा अगर एक बार पैदा होने के बाद ठीक हो गया है, आपके यहाँ से छुट्टी हो रहा है, तो उससे पहले इनकी बच्चों की कुछ जांच करके ही भेजना चाहिए,
1: जी
0: जिसमें कि जैसे कि उनके हियरिंग स्क्रीन करना चाहिए, हियरिंग स्क्रीन सुनने की क्षमता कैसी है, और दूसरी चीज इनका आरओपी चेक कराना चाहिए, आरओपी डेवलप तो नहीं हो रही है ना, और तीसरी चीज इनका वेट गेन का पैटर्न क्या है, और जब बच्चा आप डिस्चार्ज करें तो वजन इतना होना चाहिए कि बच्चा अपने आप दूध पी रहा हो उसमें बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए, ये ना हो कि आपने बच्चा डिस्चार्ज किया और घर जाके उसका वजन कम हो गया। और इन बच्चों के पेरेंट्स को अच्छे से हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, जब बच्चे को छुए तो हमेशा से हाथों को धो के किसी साबुन से या किसी सैनिटाइजर यूज करके बच्चे को छुए, और ज्यादा लोग बच्चे के कॉन्टेक्ट में ना आए, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी को घर में सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो बच्चे से बिल्कुल दूर रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन बच्चों को आप माँ का ही दूध दें, ऊपर का दूध ना दें। माँ के दूध देने पे इनको GIT इन्फेक्शन भी कम होते हैं और इनको नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर भी कम रहता है।
1: और कोई प्रश्न है आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पर हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
3: मैं हुकुम सिंह बोल रहा हूँ
1: जी,
3: और मैं CHO में सकती हूँ, गुलाब मलिंगा में।
0: अच्छा,
3: डिलीवरी होती है स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे प्रीमैच्योर बच्चों की डिलीवरी होती है,
0: जी
3: तो मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको कैसे मैनेज करें उसके लिए थोड़ा जानकारी।
0: देखिए, जब भी कोई प्रीमेच्योर बच्चा हो तो उसके लिए एक तो ये जरूरी है कि बच्चा का ठंडा ना होने पाए, उसको हाइपोथर्मिया ना हो, तो उसको पैदा होने के तुरंत बाद आप उसको ड्राई कर दें, और उसका सांस कैसी है उसको ध्यान रखें। अगर उसकी सांस खराब है तो उसको जल्दी जल्दी एक ऐसे सेंटर पे रेफर करें जहाँ पे की सारी फैसिलिटीज हो, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों को बहुत सारी की परेशानियां होती है, और जैसे कि हाइपोथर्मिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर HMD है या फिर बच्चे का दूध नहीं पी पाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए कि आप बच्चे को अच्छे से कॉटन में रैप करके, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे, लेकिन ऑक्सीजन देते समय ये भी ध्यान रखें कि ऑक्सीजन ज्यादा ना दी जाए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देने से भी इन बच्चों को नुकसान होता है। ठीक है,
1: और कुछ जानना चाहते हैं रुकुम सिंह जी?
3: हाँ सर, यही जानना था, ऑक्सीजन का अगर उसमें सिलेंडर सर हमारे पास बड़ा ही होता है।
0: नहीं, सिलेंडर बड़ा होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनको इतना ऑक्सीजन देना है कि उनका सेचुरेशन आपको 88 और 93 या 94 तक रखना है, सेचुरेशन उनका 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा उनका सेचुरेशन 88 से कम भी नहीं जाना चाहिए। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप उनका सेचुरेशन देखते रहिए, उस हिसाब से उनको ऑक्सीजन दीजिए, और दूसरा उनका टेम्परेचर चेक करते रहिए जिससे हाइपोथर्मिया ना हो, तीसरा उनका ब्लड शुगर चेक लीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ठीक है
1: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो अंग विकसित नहीं होते हैं, खास तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो बच्चे के स्वास्थ्य को, वो कौन से अंग हैं जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमारे फेफड़े अच्छे से काम करें। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारी ऑक्सीजन सप्लाई माँ से मिलती है, सारे न्यूट्रिशन सप्लाई माँ से मिलती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद दो तरह की चीजों को जरूरी है कि एक तो उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, दूसरा उसका टेम्परेचर कंट्रोल का, और तीसरा उस बच्चे की सांस कैसी है। वो अपनी सांस उसको इस तरह से लेना चाहिए कि उसको सांस लेने में कोई किनहाना नहीं चाहिए बच्चा, और बच्चे का सांस बहुत तेज नहीं चलनी चाहिए, बच्चा नीला नहीं पड़ना चाहिए, और बच्चे का सेचुरेशन अगर आप नाप सकें तो सेचुरेशन उसको 88 से 94 के बीच में मेंटेन करना चाहिए।
1: सेचुरेशन से क्या तात्पर्य है?
0: ये देखिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन होती है जिससे कि हम ऑक्सीजन लेवल नापते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और दूसरा उसमें और भी मॉनिटर में चीजें होती हैं, जैसे कि हार्ट रेट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, टेम्परेचर वाले भी मॉनिटर्स होते हैं, टेम्परेचर भी आप उनसे नाप सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट नाप सकते हैं, और कोई भी बच्चा जो किन्हा रहा है, जिसका तापमान कम है, उसको आप जल्दी से जल्दी ऐसे सेंटर पे रेफर करने की जहाँ पे सारी सुविधाएं इसके मिल सके
1: बच्चे। बिल्कुल, लाइफ सपोर्ट जिसे कहा जाता है वो मिल सके। चूंकि डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बता रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए, लेकिन फिर भी कई बार कुछ न कुछ गलतियां हो जाते। डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया कि गुर्दे जिन बच्चों के पूर्णतः विकसित नहीं होते उनमें गुर्दे कमजोर ही रह जाते हैं, इसके अलावा और भी कई ऑर्गन्स के आपने नाम लिए थे, तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता जान लें जो प्रीमेच

0: जो बच्चे हैं उनमें फेफड़ों के अलावा और कौन कौन से अंग हैं जो कमजोर रह जाते हैं और जिनका गलत प्रभाव बच्चों के जीवन पर आगे पड़ सकता है?
1: देखिए, प्रीमेच्योर बच्चों में एक प्रॉब्लम लंग्स की तो होती है, दूसरी जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो कई बार ये होता है कि बच्चे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तीसरा यह दिक्कत आती है वो कि आपका दूध पीने में, दूध डाइजेस्ट करने में परेशानी आती है। चौथा, ब्रेन के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने में इन चांस रहते हैं, ज्यादा IVH होने के चांस रहते हैं। और इन बच्चों में फिर कई बार आरओपी, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी देखा जाती है। सेप्सिस होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन बच्चे के शरीर में हो जाना। तो और प्रीमेच्योर बच्चों में सेप्सिस, बैक्टीरियल सेप्सिस तो होती है और कई बार फंगल सेप्सिस होने का भी बहुत डर रहता है। और प्रीमेच्योर बच्चों में फिर बाद में आपको फॉलोअप भी करना होता है कि उनका इंटैक्ट जो सर्वाइवल है वो या नहीं, जैसे कि किसी अंग में कोई कमी तो नहीं आ गई है, तो वो चीजों के लिए आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी होती है, देखना होता है कि भविष्य में आने वाले समय में कि बच्चे के ब्रेन पे कोई बुरा असर तो नहीं आया, आंखों पे तो कोई बुरा असर नहीं आया, कानों पे तो कोई बुरा असर नहीं आया। तो उन बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अच्छे से फॉलोअप करना होता है, बच्चे का वेट गेन कैसा हो रहा है, बच्चे के माइलस्टोन्स कैसे हैं, बच्चे ने कब गर्दन संभालना शुरू किया, कब बच्चे ने बैठना शुरू किया, कब बच्चे ने चलना शुरू किया, कब बच्चे ने बोलना शुरू किया, उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। बच्चे का वेट गेन का पैटर्न कितना है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब बच्चा पांच से छह महीने का होता है तो उसका वजन दूना हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और जब बच्चा एक साल का होता है वजन तीन गुना हो जाता है। तो वो मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है और फिर आपको माइलस्टोन देखने पड़ते हैं और समय समय पर आपको हियरिंग देखनी पड़ती है और हियरिंग मतलब उसका सुनने की क्षमता किस तरह से प्रभावित तो नहीं हुई है। और आंखों में अगर ऑक्सीजन लगी है प्रीमेच्योर बच्चों को तो आंखों की जांच होना बहुत जरूरी है कि आरओपी होना, और इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। और इन बच्चों को जो दूध देना चाहिए वो सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, क्योंकि ऊपर दूध देने में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, ये जो समस्याएं आपने बताई हैं इन समस्याओं के नियंत्रण के लिए खास तरह की मशीनें भी जरूर है आज, चूंकि चिकित्सा विज्ञान में बहुत कुछ नया हो चुका है, तो ये भी बताइएगा किस तरह की मशीनों की ऐसे बच्चों के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ती है और वेंटिलेटर का कहां कहां उपयोग है, क्योंकि वेंटिलेटर की बात हमारे कार्यक्रम में कई बार कही जाती है कि बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर की जरूरत कब है, तो क्या बताएंगे?
1: देखिए, प्रीमेच्योर बच्चों का जो हम देखभाल शुरू करते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करते समय ये ध्यान रखें कि बच्चा ठंडा ना हो जाए, फिर उसको हम या तो इंक्यूबेटर जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें रखते हैं अगर बच्चे का वजन बहुत कम है, खासतौर से अगर बच्चे का 1.5 किलो से कम वजन है, या फिर दूसरे सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम, लेडेंट बार्मर्स बोलते हैं इनको, उनको बच्चे अंडर रख के उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, उनका हमें सांस का, उनके ऑक्सीजन लेवल को लगातार मॉनिटर करना होता है। तीसरा, अगर उनको सांस बच्चे का रोक रहा है या बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बच्चा किना रहा है, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा, तो इन बच्चों को कई बार सर्फेक्टेंट देने के साथ में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। फिर इन बच्चों को आपको लगातार ये भी मॉनिटरिंग करना होता है कि बच्चे का यूरिन कितना हो रहा है, पेशाब पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। और फिर जब आप फीड देना शुरू करते हैं तो फीड देते समय आपको ये देखना पड़ता है कि बच्चे का फीड डाइजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे को हाथों में इन्फेक्शन या फिर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस की परेशानी तो नहीं आ रही है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, इन सब के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो किस स्तर की मशीनें होती हैं?
1: देखिए, मशीनें जो हैं न्यूनेट्स के लिए, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के लिए जो मशीनें यूज की जाती हैं वो एक तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड मशीनें होती हैं।
0: डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रखेंगे, एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो रेडियो जी, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: सर, मैं मिलक से बोल रहा हूँ।
1: बताइए
2: सर, मेरे बच्चे के लिए एक दौड़ा पड़ा था और ये चलते चलते सर ये थोड़े दिनों के बाद में चलते चलते अपने आप गिरता है।
1: कितना बड़ा बच्चा है आपका ये?
2: 7 साल का।
0: क्योंकि बात तो डॉक्टर प्रीमेच्योर बच्चों की हो रही है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या शायद इसी से जुड़ी हुई।
1: बच्चे को पहली बार दौरा कब पड़ा था?
2: ये सर हो गए लगभग 3 महीने करीब होगा सर।
1: अच्छा, इसको बचपन में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी पैदा होने के बाद?
2: नहीं सर, कोई परेशानी भी नहीं हुई थी।
1: कभी सिर में चोट वगैरह लगी?
2: सर मेरे सामने तो कई सर।
1: अच्छा, घर में किसी और को दौरे तो नहीं पड़ते?
2: सर मेरे बहू के लिए पड़ते थे।
1: अच्छा, तो देखिए बच्चे की माँ के साथ भी दौरे की समस्या, तो आपके बच्चे को जैसे आप बता रहे हैं दौरे पड़ते हैं और ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी की तकलीफ है, और तो आप इसमें कुछ जांचें करा के ये तय कर सकते हैं हम लोग कि इसको सेकेंडरी एपिलेप्सी है प्राइमरी एपिलेप्सी है, जिसमें कि जैसे ब्रेन की जांच है, MRI ब्रेन करवा सकते हैं, और जिससे कि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई अंदर किसी तरह की कोई गांठ है वो सिस्ट वगैरह तो नहीं है।

0: कुछ बाकी आपको इनको दौरे की दवाई लगातार देनी पड़ेगी जिससे कि दौरे ना पड़े।
1: अच्छा
0: तीसरी चीज,
1: सर, ये चलते चलते अपने आप गिर भी जाता है सर, ये अपने आप गिर जाता है?
0: ये जो गिर जाता है ये भी हो सकता है हल्का दौरे का असर होता हो उस समय ही गिर जाते हो। कई बार
1: अच्छा
0: जब
1: सर,
0: दौरा हमें मालूम पड़ता है तब तो हम देख लेते हैं कि दौरा है। अगर दौरे का बहुत हल्का सा असर हुआ तो कई बार बच्चे गिर जाते हैं या बच्चा बैठा हुआ तो लुढ़क जाता है बच्चा, तो वो एक तरह से हल्का दौरे का संकेत है।
1: अच्छा
2: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका डॉक्टर साहब। मशीनों की बात हमने की, बीमारियों के विषय में आपने बताया, और विशेष तौर से जो समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे हैं उनकी गंभीर बीमारियों की गंभीर स्थितियों के विषय में आपने जानकारी दी। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इन सभी समस्याओं के उपचार में, इलाज में जिन मशीनों की जरूरत होती है, क्या वो मशीनें बरेली या आसपास के क्षेत्र में कहीं उपलब्ध हैं?
0: जी बिल्कुल, एक इंटेंसिव केयर देने के लिए न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जिसपे की डिफरेंट मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे की इंक्यूबेटर्स हैं, वार्मर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, या फिर सीपैप मशीन्स हैं, या फिर एचएफएनसी है, और आपका फिर को इन सब चीजों को देखने के लिए कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, आपको फिर और जो मशीन है मॉनिटरिंग है, मॉनिटर्स हैं,
2: जी
0: और फिर पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, फिर आपका एबीजी मशीन है, आरटीओ ब्लड गैस एनालिसिस है, या फिर बेड साइड आपको इको करने पड़ते हैं, या बेड साइड आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है लंग्स का या ब्रेन का, जिससे कि आपको बच्चे के बारे में पता चलता रहे। दूसरी चीज ये कि हर माता पिता को ये जानना जरूरी कि कोई भी नवजात शिशु है उसमें खतरनाक लक्षण कौन से हैं। और तीसरी चीज, ये प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं इनमें हमने ये सब बातें तो की है, साथ में इनको काफी एक और समस्या होती है, वो न्यूनेटल जॉन्डिस, क्योंकि इन बच्चों को पीलिया होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, अक्सर तीसरे दिन चौथे दिन अक्सर पीलिया हो ही जाता है,
2: जी
0: तो उसको तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, लेकिन एक पीलिया एक लिमिट से ज्यादा होता है तो ब्रेन को नुकसान करता
2: जी
0: है,
2: जी बिल्कुल
0: तो हमें ये भी चेक करना होता है कि पीलिया कितना है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा पीलिया हो रहा है तो उसको फोटोथेरेपी शुरू करते हैं, अगर पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको जो थेरेपी करते हैं वो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब पूरा ब्लड बच्चे का बदला जाता है,
2: पूरा खून बदलना पड़ता है।
0: जी जी जी तो जो मशीनें हैं वो आपको बेड साइड इको है, बेड साइड आपका अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, आरटीओ ब्लड गैस एनालिसिस है, वार्मर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, और आपको जब नर्सरी एक अच्छे स्टैंडर्ड की नर्सरी चलानी होती है तो जो बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोते हैं जिसको हम लोग हाइपोक्सिक इश्मिक इंजरी कहते हैं, होती है उस बर्थ एस्फिक्सिया बर्थ एनोक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो लेटेस्ट थेरेपी है वो है होल बॉडी हाइपोथर्मिया या थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, तो उसके लिए भी मशीन उपलब्ध है, हमारे शहर में भी उपलब्ध है, मेरे यहाँ भी उपलब्ध है, तो वो करना है। और कई बार कुछ बच्चों को जो बच्चे गंदा पानी सांस में ले लेते हैं और देर से होते हैं, उनको एक और कंडीशन बहुत कॉमन होती है पीपीएचएन, जिसको कहते हैं परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो उसके लिए जो दवाइयां भी दी जाती हैं, दवाइयों से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक थेरेपी है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड देने की भी सुविधा मेरे अस्पताल में उपलब्ध है और वो कभी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है।
2: डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारे कार्यक्रम का सीमित है और अभी भी बहुत से हमारे श्रोता ऐसे हैं जिनकी शायद समस्याएं हम तक नहीं पहुंच पाई हैं, जिनकी कॉल हम तक नहीं पहुंच पाई किसी वजह से, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, अगर समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की जो समस्याएं आपने बताई हैं, जो दिक्कतें बताई हैं, उनका समय पर निदान ना हो, समय पर इलाज ना हो, तो उन बच्चों का आगे का जीवन कितना किस तरह प्रभावित हो सकता है?
0: देखिए, अगर समय से इलाज ना हो तो दो चीजें, एक तो आगे का जीवन अफेक्टेड होगा ही होगा, उस समय जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें बच्चे का जीवन खतरे में हो सकता है,
2: जी
0: बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है अगर बच्चा हम लोगों के पास लेट पहुंचता है। दूसरी चीज, उसका समय से और जो इलाज होना चाहिए वो इलाज मिलना चाहिए उसको, है ना, ऐसे सेंटर पे इलाज होना चाहिए जहाँ पे देखभाल उचित हो, दूसरी मशीनें उपलब्ध हो, तीसरी चीज उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, है ना। किसी भी नवजात शिशु का इलाज करना वो नहीं है कि आप ऑक्सीजन लगा दीजिए और उसको वार्मर में लिटा दीजिए, ना उसकी प्रॉपर जांच होना, उसके मॉनिटरिंग होना, और उसके ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, उसका आउटपुट कितना हो रहा है, उसका हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्या स्टेटस है, वो सब चीजें मेंटेन करना जरूरी है, उनको मॉनिटर करना जरूरी है।
2: जी, जी।
0: तो ये तो हुआ एक्यूट स्टेज में, जब अगर बच्चा आपने उस समय बचा लिया
2: जी,
0: तो बाद में जो आपको देखना हुआ होता है कि हमारे बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या कोई कमी ना रह जाए,
2: अच्छा,
0: तो उस कमी के लिए भी आपको मॉनिटर करना होता है और आपको समय समय पर देखना पड़ता है। तो

0: बाद में जो कमी होने का डर रहता है उसमें सबसे बड़ी एक जो कमी है वो है सेरेब्रल पैल्सी होने का डर,
1: अच्छा
0: जिसको कि आम भाषा में कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बच्चा कमजोर हो जाना
1: जी
0: या शारीरिक रूप से बच्चे में कुछ अपंगता आ जाना।
1: जी जी
0: तो फिर इन अगर इस तरह से कुछ होता है तो फिर बच्चे देर से बैठते हैं, देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं, और उनका जो शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। कई बार बच्चे पढ़ने लिखने में अक्षम होते हैं, इनको कई बार बाद में दौरे भी पड़ते हैं, और इन बच्चों को फिर पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है, माँ बाप उसमें लगातार फंसे रहते हैं।
1: जी। तो जरूरी है श्रोताओं कि समय से पूर्व बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी अगर कोई भी गंभीर समस्या है तो उनका उचित समय पर, उचित तरीके से, उचित स्थान पर और एक अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ के निर्देशन में इलाज हो, तभी बच्चे और उनका जीवन स्वस्थ रह पाएगा। डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका के विषय में, उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें,
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जांच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर एचएफओ ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए सीएफएम, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल ओपीडी,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
6: अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के अंक में आपको एक काव्य पाठ सुनवाते हैं जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सौरभ वर्मा।
1: पहली कविता का शीर्षक है बेटियां। इस पर कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चहक रही

है चांदनी, शीतल है मुस्कान, बेटी घर की रोशनी, बेटी है अभिमान। और इसी क्रम में मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है नारी। नारी रूप आदि शक्ति सृष्टा है मानव की, नारियों की हालत है ये आज कैसी हो गई। हर युग होता रहा है सम्मान नारियों का, किंतु कली काल में वो भावना ही सो गई। मानवीय गुण सभी हो गए हैं गौण आज, बस स्वार्थ ही चित्त वृत्ति सारी रह गई। इसीलिए प्रेम बना वासना का रूप आज, इसीलिए प्रेम बना वासना का रूप आज, बच्ची क्या किशोरी हर रूप में छली गई। और वास्तव में नारियां हैं क्या, ये सबको जानना चाहिए कि राधे बिन श्याम, आधे सिया बिन

काम आधे नारी बिना नर की तो कल्पना ही व्यर्थ है। नर जितने भी करे नारी की उपेक्षा, यहाँ जाने अनजाने करे बड़ा वो अनर्थ है। भक्ति बिना शक्ति नहीं, शक्ति बिना शिव नहीं, शक्तिहीन भक्तिहीन जीवन तो व्यर्थ है। और सृष्टि का समस्त भार धारण करती जो माँ, सृष्टि का समस्त भार धारण करती जो माँ, सृष्टि को अकेले ही चलाने में समर्थ है। और इसी कड़ी में मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है शब्द, कि मर जाते हैं मानो किंतु शब्द कभी ना मरता है। बुरा न बोलो बंधु मेरे, ये घाव कभी ना भरता है। वाणी तो अनमोल है बंधु, सोच समझ के बोलो तुम। मिस्री को बातों में घोलो, तोल तोल के बोलो तुम। बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा ही मन हो जाता है। मन अच्छा है धन अच्छा, जीने की राह दिखाता है। बातें अच्छी अच्छा दर्शन जीवन सुगम बनाता है। वाणी हो कोयल के जैसी, कानों में रस घोल दे जो। दृश्य मोर के नृत्य के जैसा, सबके मन को मोह ले जो। देखो अच्छा सुनो भी अच्छा, अच्छा अच्छा बोलो तुम। वाणी तो अनमोल है बंधु, तोल तोल के बोलो तुम। वाणी तो अनमोल है बंधु, तोल तोल के बोलो तुम। और इसी क्रम में मेरी अगली कविता परिवेश, कि मेरा गांव भी अब शहर हो रहा है। मेरा गांव भी अब शहर हो रहा है, हवाओं का देखो असर हो रहा है। नम हो गई आंखें, नजारा ये कैसा, मेरे गांव ये क्या हसर हो रहा है। गलियों का सोंधापन कम हो रहा है, खेतों में ट्रैक्टर का घर हो रहा है। बैलों की घुंघरू न जाने कहाँ है, मेरे गांव ये क्या असर हो रहा है। कुल्हड़ सुराही खत्म हो गए सब, पिंजरों में सबका बसर हो रहा है। चहूर खामोशियों का नजारा, चहूर खामोशियों का नजारा, मेरे गांव ये क्या हसर हो रहा है। वो कुआं वो पनघट खत्म हो रहा है, वो पीपल वो बरगद खत्म हो रहा है। खत्म हो गया दिल से दिल का मिलन अब, खत्म हो गया दिल से दिल का मिलन अब, मेरे गांव ये क्या हसर हो रहा है, मेरे गांव ये क्या हसर हो रहा है। और इसी क्रम में मेरी अगली कविता है, इसका शीर्षक ही कविता है कि कविता होनी कैसी चाहिए, कि बुद्धि से ज्यादा हृदय मुखर हो, शब्द से ज्यादा भाव प्रखर हो, सृजन में बेपरवाह उमंग हो, तब कविता कहलाती है। चित्त को फूल सा कोमल कर दे, मन में दृढ़ता को जो भर दे, दृष्टि में नया प्रकाश जब भर दे, तब कविता कहलाती है। निर्निमेश ही पढ़ा जो जाए, मैं का भान ही रह ना जाए, शिखर पे चढ़ती ही जब जाए, तब कविता कहलाती है। जिसमें विचारों का तेज धार हो, गहराई में जाने का पहाड़ हो, पढ़कर मन में चढ़ा कुमार हो, तब कविता कहलाती है। प्रेम संग प्राकट्य भरा हो, सौंदर्य संग लालित्य भरा हो, ज्ञान पूर्ण प्रबोध सार हो, तब कविता कहलाती है। हृदय में अंगार भरे जब, हृदय में अंगार भरे जब, मन को भाव विभोर करे जब, जीवन में उल्लास भरे जब, तब कविता कहलाती है। जीवन में उल्लास भरे जब, तब कविता कहलाती है। इसी क्रम में वतन को समर्पित मेरा एक मुक्तक, ये भाव

काम ऐसा वतन के लिए हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम या सिख और ईसाई, चाहे हिंदू हो मुस्लिम या सिख और ईसाई, मरो तो तिरंगा कफन के लिए हो। जीवन में माता पिता का बहुत बड़ा महत्व होता है। आजकल के बच्चों को चाहिए कि उनका सम्मान जरूर करें। इसी पर एक छंद श्रोताओं सुनिएगा कि माता पिता का कभी सम्मान नहीं करते जो उनके महत्व का आभास होना चाहिए। माता पिता का कभी सम्मान नहीं करते जो उनके महत्व का आभास होना चाहिए। राम श्याम साथ साथ श्रवण कुमार जैसी चित्त वृत्ति आचरण खास होना चाहिए। जन्म के जो हेतु और जीवन के सेतु उन्हें, जन्म के जो हेतु और जीवन के सेतु उन्हें, दूर नहीं अपनों के पास होना चाहिए। और जीवन पर्यंत सदा ढाल बने रहते जो, जीवन पर्यंत सदा ढाल बने रहते जो, उनका आशीष सदा साथ होना चाहिए, उनका आशीष सदा साथ होना चाहिए। माता पिता को एक और कविता समर्पित है। कलम

0: पिरोता हूँ कलम को साध कर शब्दों की माला, मैं पिरोता हूँ उसी की वंदना करता, उसी के साथ सोता हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं ईश्वर की कृपा से, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं ईश्वर की कृपा से, इसी कारण मैं अपने भाग्य को सौभाग्य कहता हूँ, इसी कारण मैं अपने भाग्य को सौभाग्य कहता हूँ। और माता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, तुसी पर एक मुक्तक और है। मैंने कुछ सोचा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है, मैंने कुछ सोचा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है, ढाई आखर का नहीं प्रेम बस फसाना है, मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान कर दे, मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान कर दे, मेरी माँ की दुआओं का भी एक तराना है, मेरी माँ की दुआओं का भी एक तराना है।
1: ये काव्य पाठ अभी प्रस्तुत कर रहे थे श्री सौरभ वर्मा। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी लखनऊ है।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर के गाए भजन।

जब हमारा अंतरतम भक्ति में सराबोर होता है, तब एक पत्थर का टुकड़ा भी ईश्वर बन जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म प्रेम रोग के इस गीत से। आवाज सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की है।

लम्हे फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण को। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमरीका

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेंसर यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।

0: मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म गुड न्यूज़ से, आवाज़ें बादशाह हार्डी संधु, लीसा मिश्रा और असीस कौर की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची के और संगीत भी इनका ही था।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली शाह।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थीं। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे आर्यमन और मौर्य हैं।

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माई फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म

सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आई।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्यालय की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का

किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में 2 दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया

0: तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज Changanasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashvani and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Sri Umayal Puram K. Shivaraman, Sri Sri Mushnam Raja Rao, and Sri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याण।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं।

0: इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
0: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।